मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948, श्रावण माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, आप सभी को आकाशवाणी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ध्यान मग्न रहते सदा पर्वत पर है वास, सबकी भोले नाथ जी करते पूरी आस।

पवन पुत्र कहे जाने वाले रामदूत को, जो बल बुद्धि विद्या में अगाध भक्ति के प्रतीक हैं, उनकी महिमा का गान करने से भय रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं, तो ऐसे की हम क्यों ना करें आराधना, क्यों ना गाएं उनकी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भगवान श्री राम की महिमा अपरंपार है। सनातन धर्म में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, विष्णु का सातवां अवतार और जगत का आधार माना गया। राम नाम का प्रभाव और स्वरूप सभी वेदों, पुराणों और ग्रंथों में सर्वोपरि बताया गया है। तो ऐसे प्रभु की हम भक्ति क्यों न करें।

गोस्वामी तुलसीदास ने राम के आदर्श चरित्र का गुणगान किया। कलयुग में राम नाम को भवसागर से पार पाने का सबसे सरल माध्यम बताया गया। कड़कड़ में घट घट में बसने वाले राम, राम की कृपा हम क्यों न पाएं।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में सुनिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार।
1: अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार की स्थापना की। 21 अक्टूबर को सिंगापुर में एक समारोह हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अस्थाई सरकार को भारत की जनता का ही सद्भाव नहीं प्राप्त है, बल्कि ब्रिटिश भारतीय सेना की भी सहानुभूति हमारे साथ है। जब तक हम सीमा पार कर भारतवर्ष में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा देते, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। सुभाष बाबू ने इस अवसर पर जो शपथ ग्रहण की वो इस प्रकार है, ईश्वर के नाम पर मैं ये पवित्र शपथ ग्रहण करता हूं कि भारत और अपने 38 करोड़ देशवासियों की मुक्ति के लिए मैं सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन की अंतिम सांस तक स्वतंत्रता का पवित्र युद्ध चलाता रहूंगा। मैं सदैव भारत का एक सेवक बना रहूंगा और अपने 38 करोड़ भारतीय भाइयों के हित साधन को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता रहूंगा। स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी भारत की स्वतंत्रता की रक्षा में अपने रक्त की अंतिम बूंद तक चढ़ाने को तैयार रहूंगा। सुभाष बाबू ने एक घोषणा में कहा, अस्थाई सरकार प्रत्येक भारतीय की वफादारी पाने की अधिकारिणी है और वो प्रत्येक भारतीय की निष्ठा का दावा करती है। वो अपने समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, समानाधिकार तथा समान सुविधाएं देने की गारंटी करती है। सुभाष बाबू सदैव जनता से दान मांगा करते थे। 25 अक्टूबर 1943 को उन्होंने मलाया के व्यापारियों की एक सभा में बोलते हुए कहा, कानून की दृष्टि से कहें तो जब एक देश युद्ध की स्थिति में हो, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रह जाती। यदि आप सोचते हैं कि आपका धन और संपत्ति आपकी अपनी वस्तुएं हैं, तो आप भ्रम में रह रहे हैं। अब आपको जीवन और आपकी संपत्ति आपकी अपनी नहीं है।

0: वे भारत की, केवल भारत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस सरल सत्य को समझते हैं कि हमें किसी भी उपाय से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और हम अब एक ऐसे मुक्त राष्ट्र हैं जो युद्ध की स्थिति में हैं, तब आप ये सहज ही समझ जाएंगे कि कुछ भी आपका नहीं है और आपका जीवन, धन, संपत्ति, कोई भी चीज़ आपकी नहीं है। यदि आप ये सरल सत्य समझने को तैयार नहीं हैं, तब आपके लिए स्पष्टता दूसरा रास्ता खुला हुआ है, वही रास्ता जो अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था। वे कभी यहाँ शासकों की तरह रहते थे, किंतु आज उनके लिए यहाँ सिर्फ एक ही जगह है, जेल। यदि आप वैसा रास्ता चुनते हैं तो आप जेल जा सकते हैं और वहाँ अंग्रेजों का साथ दे सकते हैं, किंतु इसे याद रखिए, जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी और भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो आपके लिए स्वतंत्र भारत में कोई स्थान न रहेगा। मुझे तो भारत को मुक्त करना है और मैं भारत को हर उपाय से और हर कीमत पर स्वतंत्र करूंगा। आजाद हिंद की अस्थाई सरकार के बारे में उन्होंने कहा था, एक बार जहां हमारे शत्रु भारत से निकाल बाहर किए गए और वहां शांति तथा व्यवस्था स्थापित हो गई, अस्थाई सरकार का कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद किस प्रकार की सरकार वहां स्थापित की जाए और कौन लोग उसे अपने हाथ में लें, ये सब निर्णय स्वयं भारतीय जनता करेगी।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए यतीन्द्र कुमार से मनोज कुमार सिंह की बातचीत। विषय है शाक सब्जियों की खेती में सावधानियां।

0: पंचो देखे कहा जाता है ना कि खान पान में साग सब्जी का बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं, और कौने ढंग से साग सब्जी का खेती किया जाए, कौने ढंग से ओकर तैयारी किया जाए, कौन कौन सावधानी रखा जाए, यह विषय में जानकारी देवे बदे आज अपने बीच आए हैं भैया, उपस्थित हैं डॉक्टर यतीन्द्र कुमार भैया, वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ में। तो भैया डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहब ना कि सेहत बरे सब्जी का महत्व का बा।
1: नमस्कार किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सब्जियों का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है कि इनसे हमको जो पोषक तत्व मिलता है ये हमको हर तरीके से रोगों से लड़ने में हमको सहायता प्रदान करता है, और साथ ही साथ हर तरीके से हमको जो पोषक तत्व मिलता है इस पोषक तत्व से हमको जैसे हमारा जो जीवन चक्र है
0: बिल्कुल
1: पूरा होता है।
0: बिल्कुल भाई, देखा यही लिए कहा जाता है कि साग सब्जी का बड़ा महत्व बा। अगर सेहत के बढ़िया रखे के बाद संतुलित अगर भोजन लेवे के बाद, आहार लेवे के बाद, तो ओके काफ़ी पूर्णता प्रदान करता है ये सब्जी।
1: जी
0: भैया देखा ये जौन समय चलत बा, यह समय में कौन कौन सब्जी का बुआई का समय बा, और ओकरी बड़े खेत का तैयारी कौने ढंग से किया जाए, कौने ढंग से किसान फसल का अच्छी तैयार कर पावे अपन फसल, आप बतावे करी बारे।
1: जी किसान भाइयों, इस समय जो ये जुलाई का अंतिम और अगस्त का प्रथम जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ते में हम अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में बेल वाली सब्जियों में करेला है, लौकी है, नेनुआ है, कद्दू है, खीरा है, और अगर हम द्विवर्षीय सब्जियों की बात करें तो इसमें हमारा परवल है, और ये जो खिस्ता है वो आता है, कुंदरू है, ये आते हैं,
0: अच्छा,
1: और हरी सब्जियों में हमारा ये इस समय जैसे टमाटर बैंगन इनकी नर्सरी पड़ने का समय है। दूसरा इस समय जड़ वाली सब्जियों में मूली गाजर का बहुत ही शलजम का ये समय है, और गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी की इस समय अगेती फूल गोभी की रुपाई का समय है जिसके लिए नर्सरी तैयार की जा रही है।

0: चाहिए, पत्तेदार सब्जियों में पालक और धनिया है।
1: अच्छा अच्छा
0: और बात अगर की जाए खेत की तैयारी की, तो ये खेत की तैयारी बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि अगर खेत की तैयारी हमें सब्जी को लगाने से पहले नहीं अच्छी की है, तो इसका उत्पादन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। गहरी
1: अच्छा
0: जुताई
1: अच्छा
0: के लिए हमको 2 से 3 बार कम से कम कल्टीवेटर से जुताई करें, और उसके बाद में पाटा लगा के उसको भुरभुरा बना लें। अंतोगत्वा उसमें गोबर की खाद लास्ट जुताई के समय हमको 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लेनी चाहिए, और जल निकास की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए।
1: हाँ, कहें कि भाई देखा बुढ़ी बरसात का समय हो तो उसे जल भराव भी हो जाते
0: जी,
1: हैं।
0: और उसके साथ ही साथ जैसे ऊंची जो क्यारियां हैं, हमको हमेशा इस गर्म जो बरसात की सब्जियां होती हैं, इनको हमेशा हमको रेज्ड बेड पे, हमको थोड़ा सा ऊंची हुई जो क्यारियां हैं उनमें हमको बुवाई करना चाहिए। और उर्वरकों को हमको, चूंकि हम लोग जो फॉलियर स्प्रे में स्प्रे करते हैं तो वो उर्वरक पौधों को नहीं मिलता है, तो हमको वेसल में उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी में मिला
1: अच्छा
0: कर।
1: अच्छा भैया देखें, एक चीज़ कहा जाता है ना कि खेती किसानी लाभप्रद फायदेमंद तब्बे हुई जब होकर लागत कम हुई। तो भैया कम लागत में अधिक उत्पादन हो के और साथे साथे अपन जो फसल है पैदावार है ओमन गुणवत्ता ज़्यादा होके, तो कौन कौन भैया तकनीक अपनावे किसान भाई जोने से कि लागत उनकर कम हो सके।
0: जी, किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर वो अच्छी जो गुणवत्ता युक्त सब्जियों को चाहते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ ऐसी तकनीकियां अपनानी चाहिए, जिनको जिनमें सबसे पहली तकनीकी की बात करें तो मृदा का परीक्षण। ये
1: अच्छा
0: मिट्टी का
1: अच्छा
0: परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर किसान भाई मिट्टी का परीक्षण करा लेते हैं, तो उससे उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल जाता है। उसके आधार पर जब उसमें पोषक तत्व का वो प्रयोग करते हैं, तो हमारी फसल बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात, एक महत्व है कि आप बीज का चयन, किस तरह के आप बीज का चयन कर रहे हैं, क्योंकि सब्जियों में बहुत सी प्रकार के बीज आते हैं, लेकिन आपको अपने सब खेत के अनुसार और आपको समय के अनुकूल ही सब्जियों की प्रजातियों का चयन करना है।
1: जी
0: तो दूसरी बात एक और है कि उसमें सब्जियों में जब हमको क्या क्या प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जियां हम ऐसी हैं कि हम डायरेक्ट इनको खाते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको धुलने के बाद में हम डायरेक्ट खा लेते हैं, काटते हैं, सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमें प्रयोग रसायन को कम से कम जैविक खाद का प्रयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हमको
1: हाँ
0: हमेशा जैविक खाद का प्रयोग करना है, जिसके लिए 8 से 10 टन जो है सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और हमेशा पोषक तत्वों को मृदा परीक्षण के आधार पर एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी एक तकनीक है कि आपको हमेशा जब भी सब्जियां लगानी है, तो सब्जियां लगाने के लिए हमको जल निकास के साथ में हमको रेज्ड बेड, उठी हुई क्यारियों का प्रयोग करना है।
1: अच्छा,
0: उठी
1: मतलब
0: हुई,
1: तैसे उचास पर रहेगा
0: हाँ,
1: जमीन।
0: हल्का सा उठी हुई क्यारियां जब हम प्रयोग में जब उनमें सब्जियां लगाते हैं, तो हमारी सब्जियों की जो नर्सरी है उसमें जल भराव की स्थिति नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पौधे का अच्छा विकास होता है। और साथ ही साथ हमको इसमें रेज्ड बेड के साथ में एक मल्चिंग तकनीकी है, जिसमें उठी हुई क्यारियों को हम मल्चिंग करते हैं, उनकी क्यारियों के ऊपर हम पूरी एक पॉलीथीन से या कोई जैविक जैसे हमारा पुआल है, इससे हम उसको कवर करते हैं, मल्च कर देते हैं, ताकि हमारे खरपतवार ना हो गए, हमारे पोषक तत्वों का ह्रास ना हो और नमी का भी किसी तरीके से ह्रास ना हो। साथ ही साथ हमको पोषक तत्व प्रबंधन में सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी बहुत विशेष ध्यान देना होता है।
1: हाँ, बिल्कुल भैया। तो भैया हम कहीं कि देखा अगर यह तरीके से लोग तकनीक का ध्यान दें तो निश्चित रूप से उनकर पैदावार बढ़िया हुई और लागत भी कम हुई। भैया प्रमुख किस्म कौन कौन बाज उनसे कि ज़्यादा उत्पादन होते हैं।
0: जी, इस समय खास तौर से अगर बात की जाए, तो ये जो समय चल रहा है, ये फूल गोभी की नर्सरी डालने का समय चल रहा है, तो अगेती फूल गोभी की अगर प्रजाति की बात करें, तो इसमें पूसा दीपाली है, पूसा मेघना है, पूसा शरद है, पूसा कार्तिकी है, पूसा और ये अगहनी है, पंत गोभी 3 है, पूसा सिंथेटिक है, और ये समर क्वीन है, पूसा स्नोवाल के वन है। ये प्रजाति ऐसी है पूसा स्नोवाल की, ये अगर धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियां अपने से इसके कर्ड को कवर कर लेती हैं। और
1: अच्छा,
0: इसके साथ में अगर बात, चूंकि नर्सरी इस समय टमाटर की भी पड़ रही है, तो नर्सरी की बात की जाए, तो इस समय टमाटर की प्रजातियों में काशी विशेष है, लालिमा है, पंत टमाटर 3 है, और काशी अमृत है, पूषा रूबी है, पंत बहार है, अर्का सौरभ है, अर्का विकास है। ये प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं, जो देसी प्रजातियाँ हैं।

0: अच्छा
1: और
0: जी बिल्कुल भैया, हम कहें कि देखा अगर ये प्रजाति का लोग चयन करिए तो निश्चित रूप से उनका पैदावार बढ़िया हुई। सबसे जरूरी होता है रोग और कीट का नियंत्रण। तो भैया कौन कौन एहमन रोग लग सकते हैं, कौन कौन कीट का, और कौन ढंग से होकर उपचार करें, बचाव करें, का सावधानी रखें किसान भाई?
1: ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो क्या होता है कि बहुत से रोग एवं कीट हमारी किसान की फसल पर अपना प्रकोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको विशेष ध्यान देना है कि हमको रोग और कीटों से पहले से सावधानी रखनी है। इसके लिए जैसे रोगों की बात करें तो सब्जियों में और इस बरसात की सब्जियों में खास तौर से एक रोग आता है डैम्पिंग ऑफ, जो
0: अच्छा
1: नर्सरी
0: अच्छा
1: का गलन बोलते हैं, पौध गलन, और ये बहुत ही ज़्यादातर नर्सरी में ही आ जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमको हमेशा थोड़ा सा मृदा का शोधन करके ही नर्सरी को डालना चाहिए। दूसरा रोग एक झुलसा भी आता है इसमें, जो झुलसा खास तौर से ये सोलेनेसी जो फैमिली के पौधे होते हैं, जैसे ये आपका टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, इनकी जब नर्सरी में बड़े हो जाते हैं, जब पौधा मेन फसल में लगाते हैं, तो वहाँ ये झुलसे का प्रकोप भी आता है, तो इसका भी बचाव रखना होता है। दूसरा एक पाउडरी मिल्ड्यू भी इस फसल में आता है, इस सीजन की फसलों में, और डाउनी मिल्ड्यू है, जीवाणु झुलसा भी आता है, कुछ वायरस रोग भी आ जाते हैं। साथ ही साथ कीटों में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सफ़ेद मक्खी है और माहू आ जाता है। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण को बहुत ही
0: बिल्कुल भैया,
1: ध्यान
0: देखा
1: रखना
0: काफ़ी जो
1: चाहिए।
0: है कि नुकसानदायक होता है। भैया डॉक्टर यतेंद्र कुमार आप आएन और साग सब्जी का खेती कोने ढंग से किया जाए, कोने ढंग से तैयारी किया जाए, ये विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपके जानकारी के बदले बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे यतीन्द्र कुमार से मनोज कुमार सिंह की बातचीत। विषय था साग सब्जियों की खेती में सावधानियां। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अश्क वैस को। विषय है कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार।
1: डॉग बाइट। एक कुत्ते को अक्सर सबसे वफादार पशु और मानव के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाता है। कुत्तों के अनुकूल प्रकृति के बावजूद कुछ कुत्ते कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं और व्यक्ति को काटते हैं। शोध में कहा जाता है कि कुत्ते का काटना सबसे आम है, पूरे विश्व में 90% से अधिक है। एक कुत्ते के काटने में बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण होते हैं जो मानव ऊतकों के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया जो कुत्ते के काटने से संक्रमण में शामिल होते हैं उनमें स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और पाश्चरल शामिल हैं। हालांकि अगर कुत्ते के काटने का कारण चिंतित है तो कोई भी पूरी चीज़ कुत्तों पर दोष नहीं दे सकते। यह देखा गया है कि हाल में कुत्तों के काटने में वृद्धि मनुष्यों के हिस्से में गड़बड़ी का कारण है। मनुष्य पर उन्हें क्रोधित और आक्रामक बनाने के लिए, लोगों को खाने और चढ़ाने के दौरान कुत्तों को परेशान करने के लिए देखा जाता है। यह ज़्यादातर सड़क के मामले में होता है, जबकि घर में पालतू जानवर के रूप में रखे कुत्तों को लोगों पर हमला करने के लिए दुर्लभ पाया जाता है, क्योंकि वे कुछ भी खराब या जोखिम भरा काम नहीं करते हैं। कुत्ते के काटने के लक्षण। कभी कभी डॉग बाइट को हम हल्के में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते का विष खतरनाक होता है, यहाँ तक कि कुत्ते का लार भी। इसलिए प्राथमिक उपचार के साथ डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। कुत्ते के काटने के बाद इन्फेक्टेड जगह पर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। काटी हुई जगह पर दर्द होना, रेडनेस या स्वेलिंग, लालपन या सूजाना, मवाद या पसका आना, बुखार। कुत्ते के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है? कुत्ते के काटने पर क्या करना चाहिए? आमतौर पर रेबीज के बारे में लोगों को केवल दो ही बातें मालूम हैं, कि यह कुत्ते के काटने से होता है तथा ढेर सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत से तथ्य हैं जिनकी जानकारी सबको होना आवश्यक है। कुत्ते के अलावा अगर अन्य स्तनधारी जानवर भी काट लें तो उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रेबीज केवल कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि किसी भी

स्तनधारी जानवर जैसे बिल्ली, बंदर आदि के काटने से भी हो सकता है। रेबीज़ एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए जानवर के काटने पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। रेबीज के लक्षण अस्पष्ट होते हैं, रेबीज को डायग्नोस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जानवर के काटने के बाद डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक कुत्ते के काटने से हमेशा पीड़ित के शहर में रेबीज का संक्रमण परिणाम नहीं होता है। यह निर्भर करता है कि कुत्ते के रक्त में रेबीज संक्रमण है या नहीं। हालांकि कुत्ते के काटने से सुरक्षित रहने के लिए आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि अज्ञात कुत्तों के नज़दीक न जाएं। इसके साथ

0: के परामर्श से सुरक्षित और जोखिम मुक्त कार्य करना होगा। कुत्ता काटने के प्राथमिक उपचार में क्या करना है? रेबीज के संक्रमण से खतरों को कम करने के लिए प्राथमिक उपचार करना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए अगर किसी को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले इन्फेक्टेड जगह की सफाई करें, क्योंकि कुत्ते के सलाइवा में लाखों बैक्टीरिया होते हैं। सफाई करते समय विशेष सावधानी और निम्न बातों का ध्यान रखें। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के काट लेने पर 15 मिनट तक लगातार पानी साबुन से धोएं। घाव पर पिसी मिर्च, मिट्टी का तेल, चूना, नीम की पत्ती, एसिड आदि ना लगाएं। घाव धोने के बाद कोई एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन, स्प्रिट, बेटाडीन आदि लगाएं। घाव को खुला छोड़ें। खून ज़्यादा निकलने की दशा में केवल पट्टी बांधें। घाव पर टाके ना लगाएं। केवल कुत्ता या बिल्ली के काटने पर उसे 10 दिन देखें।
1: कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अश्क वैस को। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

दिल्ली केंद्र से प्रसारित 7 बजे सुनिए लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण। रात 8 बजे सुनिए लखनऊ केंद्र से प्रसारित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश और रात 10 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम होगा। 10:30 पर हमारे संग्रहालय से सुनिए स्वतंत्रता सेनानी रघुवंश लाल अवस्थी से कुमकुम ज्योतिषी की भेंट वार्ता। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम सुनेगा दिन में 11 बजे। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सिद्धार्थ मिश्र का ख्याल गायन सुनेगा राग शुद्ध सारंग।

दिवस के अवसर पर नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

1:15 पर पनघट कार्यक्रम में शैल कुमारी के गाए लोकगीत के साथ सुनिए डॉक्टर निहारिका तिवारी की वार्ता। विषय है स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायक और नायिका। दोपहर 2:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम होगा और शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम सुनेगा। 5:15 पर युवजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में अरविंद कुमार सिंह के गाए लोकगीत के साथ सुनिए परिवार कल्याण की बातचीत। 7:31 पर सुनिए स्वतंत्रता

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सुसंस्कृतस्य समृद्धस्य च राष्ट्रस्य व्यापकं दर्शनम् उपस्थापितम्। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् एते रवाः राष्ट्रयज्ञे नागरिक आहुत्यै दिव्यम् आह्वानं सन्ति। देशः अद्य अशीतितमं स्वातन्त्र्यदिवसम् आचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिके रक्तदुर्गे समारोहस्यास्य नेतृत्वं करोति। समारोहस्य अन्तर्गतं भारतीय वायुसेनायाः द्वे MI-17 इत्येते विमाने आयोजनस्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रियध्वजारोहणम् एकविंशति भुशुण्डिकानां निनादेन सह समन्वितं भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रशासनेन दूरदर्शनवाहिनीनां कृते 12-निमेषपरिमितां विज्ञापनावधिसीमां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्य आवश्यकता अनुभूता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको ला चलते हैं जहाँ से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रही हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चलें।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्रनायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्रनायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: नए दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की इस सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है, जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है, उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है, तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई रहे हैं यहां से।
0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर

0: तापमान है और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की मंद बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है, लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था, वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहाँ जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहाँ पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ शामिल हैं, प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कण कण में यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं और इन्होंने जो अधिसंख्या हैं बहुसंख्यक हैं उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज़्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस बार इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
1: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहाँ से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक बेहद खूबसूरत यहाँ से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं, वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है, कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है, साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है, अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक

0: है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत, माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में

लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गर्द का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है। कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

साउथ कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान कर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व में

अंडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है माँ भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया माँ भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत की स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से माँ भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर।

0: नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे। इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है, लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी, तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था, तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर रमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी, जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की

0: एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज।

0: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी, और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी, और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी लेने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है।

हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है।

हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीर

गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की

गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है।

इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर

2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है। और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने

पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है, और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए

2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है, और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है, और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई

नई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूड हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए।

हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिफ्ट आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आयोग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवन भारत में क्यों ना हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन सात शक्तियां, सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को

जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने, नौजवानों को

नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है, भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ...2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है, मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है, स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है, करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी

इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विश्राम रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा।
पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप

जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आगे करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग

रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका एक या दो घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये एक दो घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है।

हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा, और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए, और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय

0: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में, और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें, और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें, तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है, 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का, बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते जाते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल

0: भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है। और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली, जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं। और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए। और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया

0: के बड़े नेताओं को देते हैं और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमा में मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। और अब नया लक्ष्य है हमारे सामने, विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है, इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम

0: संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूं। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1455।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: पे जा रही हूँ।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन

चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में।

0: ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को नो गो एरिया को तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्र तट पे समुन्द्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर

0: प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, इन सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने चार दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए

0: 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। ये श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप newsonair और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की है। शीर्षक दिया है, तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहाँ 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और

0: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। नेशन सेलिब्रेट्स इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होइस्ट नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। एड्रेसिंग द नेशन, प्राइम मिनिस्टर अनवेल्स 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
2: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है? पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
2: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदर पूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पास करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
2: आज भारत ने भी एक बहुत

0: बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना, और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
0: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: Desh azad hone ke baad विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महत्व हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज अपना 80वां यौमे आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान तेजी से तरक्की की है, जिनमें डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और समाजी बहबूद के शोबों में पेशरफ्त काबिल जिक्र है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने 78 बहादुरी इनामात को मंजूरी दी है, जिनमें दिफाई और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस अहलकारों के 13 बादअज़मर्ग इनामात भी शामिल हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से गाले में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 80वां यौमे आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौमे आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वज़ीर आज़म की लाल किला आमद पर पहली मरतबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वज़ीर आज़म ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया। परचम कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की पंखुड़ियाँ निछावर की गईं। इस साल की यौमे आज़ादी तकरीबात साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर में यंग इंडिया के तावुन के इतराफ के तौर पर युवा शक्ति को भी तस्लीम करती है। लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा लाल किले की फसील से वंदे मातरम गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सैलाब और चट्टाने खिसकने के वाकयात हुए हैं, जिससे कई कुनबे मुतासिर हुए। वजीर आजम ने सभी मुतासिर कुनबों को यकीन दिलाया कि मुल्क उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 वर्षों में मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने मुसम्मम इरादे और लगन के साथ मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के सबब 25 करोड़ अफराद ने गरीबी से निजात हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत जो कभी 5 कमज़ोर मईशतों में शामिल था, आज दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बन चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक बड़ा हदफ अपने सामने रखा है और वो है साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि खादी और देही सनत की पैदावार में 5 गुना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7 गुना, जदीद रेलवे कोच की मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना और मोबाइल फ़ोन तैयार करने में 33 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सारिफिन की तादाद में भी तकरीबन 4 गुना, जबकि डिजिटल माली लेन देन में जबरदस्त 100

0: फीसद इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद और बुनियादी जरूरियात के तई यकसां संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हजारों जाब्ता जाति तामीली तकाजों और सैकड़ों फरसुदा कवानीन को मनसूख करके तर्ज हुक्मरानी में भी गैर मामूली तब्दीलियां की हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: वजीर आजम ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन होते हुए कई गैर मुतवक्के बहरानों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कोविड-19 वबा और यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजों के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन बहरानों के दौरान टीकों, ईंधन, गैस, डीजल और फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों के दरमियान खौफ फैलाने की खातिर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत की मंसूबाबंद पॉलिसियों, तैयारियों और बरवक्त इकदामात से मुल्क ने इन चैलेंजों का बखूबी सामना किया। वजीर आजम ने कहा कि नागरिक देवोभवा के नजरिए को सामने रखते हुए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि पिछली दहाई के दौरान किए गए इंतजाम बहरान के वक्त में मुअसर साबित हों। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के पास गैस, पेट्रोल और यूरिया की अच्छी सप्लाई मौजूद है और मुल्क अपनी सलाहियतों की ताकत की बुनियाद पर इतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कई मौकों पर मुल्क वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि वो अपनी महदूद सोच की वजह से रुक जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत को खाम तेल पर मुनहसर होना पड़ रहा है और ये भी महदूद सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साहिली इलाकों के 99% को खोल दिया है जहां पहले कोई नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत समंदर की गहराइयों में नए वसाइल तलाश कर रही है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा वक्त की अहम जरूरत है और हुकूमत ने इस समत कई ठोस इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई मुल्क की तवानाई फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम जरिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत 2047 तक न्यूक्लियर बिजली की सलाहियत 100 गीगावाट के हदफ को हासिल करने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत इस दहाई के दौरान 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का हदफ रखता है।
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आज़ाद तजारती समझौते किए हैं जिससे भारत के ताजिरों और बरामदकारों के लिए वसी मवाक़े पैदा हुए हैं। वजीर आजम ने मुल्क की बहुत छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों MSMEs से कहा कि वो इन मवाक़े का भरपूर इस्तेमाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत का सामान पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचे। वजीर आजम ने कहा कि आज हर भारतीय मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की लगन के साथ काम कर रहा है।
1: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
0: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के अवाम से सप्त धारा के नाम से ताकत और कुव्वत की 7 धाराओं पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में मुल्क वो सब हासिल कर लेगा जो पिछली 5 से 7 दहाइयों में हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की ताकत और सलाहियत के साथ हुकूमत मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगी और मुल्क को नए हदफ हासिल करने के काबिल बनाएगी। वजीर आजम ने

0: पहली धारा को मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की दूसरी ताकत ज़राअत और ग़िज़ाई पैदावार है, तीसरी टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, चौथी गतिशक्ति, पांचवी दिफाई सलाहियतें, छठी ताकत सब्ज़ मईशत और समंदरी मईशत है और सप्त धारा की सातवीं धारा भारत का सकाफती विरसा है।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को एआई हुनरमंदी की तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरबियत उन नौजवानों को मस्नूई जहानत के आलमी शोबे में क्यादत के काबिल बनाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को 3 चीजों, कीमत, मेयार और हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज करना होगी।
1: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: वजीर आजम ने कहा कि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सलाहियतों को पहचानने के लिए गांव, शहरों और स्कूलों में खसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुनर की शिनाख्त की जाएगी और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए खसूसी तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज खेलों की दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत साल 2030 में दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर कल शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदामात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बादज़मर्ग दिए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
3: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के जश्न और सदर जमहूरिया के यौम आज़ादी से कबल कल शाम कौम से खिताब को अपनी चेसुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप की चेसुर्खी है, सदर जमहूरिया के बयान पर मबनी है युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी दौलत, सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत आज अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज 7 निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The nation celebrates its 80th Independence Day today.
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना के साथ धूमधाम से मना रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय है वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदान की महान परंपरा को जगाने वाले क्रांतिकारियों को नमन किया।
4: देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा, अपने तप त्याग और बलिदान आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वतंत्र सेनानियों को, बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
3: श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम गूंज रहा है, ये देश के लिए उत्तम अवसर है।
4: सबके लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त

0: लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: इस बीच प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा भवन के सामने आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल शाम एक बधाई संदेश में कहा कि स्वतंत्रता का ये पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करने की अपील की। उधर प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया गया और विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
2: स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। उन्होंने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी गई है।
2: पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है।
2: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। यह युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जिलों में कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विविध आयोजन किए गए। इस दौरान देश के विभाजन की त्रासदी को इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर कल लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्याय में एक है। उन्होंने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा।
3: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारत

0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है, इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीडी सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इनमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल हैं। मुंबई के घाटकोपर में बारिश के दौरान कल मकान पर पेड़ और पत्थर गिरने से जौनपुर जिले के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार बदलापुर तहसील क्षेत्र के इनामीपुर गांव का रहने वाला था। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल, कहा विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनिए पन्ना लाल यादव और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

पन्नालाल यादव और साथी के गाए। इस लोकगीत के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे संग्रहालय से स्वतंत्रता संग्राम के वे दिन, स्वतंत्रता सेनानी रघुवंश लाल अवस्थी से कुसुम ज्योति की भेंट वार्ता।
1: स्वतंत्रता संग्राम के वे दिन।

0: आज अपने इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी श्री रघुवंश लाल अवस्थी से की गई भेंट वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं। श्री अवस्थी उन्नाव जिले के रहने वाले हैं और इन दिनों वाराणसी में निवास कर रहे हैं। श्री रघुवंश लाल अवस्थी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े रहे, पोर्ट ब्लेयर और रंगून तथा लाल किले के कारागारों में बंदी बनाए गए। दो बार इन्हें मृत्युदंड भी दिया गया। आज के इस प्रोग्राम में आइए सुने उनकी आपबीती। आपसे भेंट की है कुसुम जुत्सी ने। आज इस प्रोग्राम में हम इस भेंट वार्ता का पहला भाग प्रसारित कर रहे हैं।
1: अवस्थी जी, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में पधारे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आप पोर्ट ब्लेयर में रहे, INA में थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो हैं ही, तो हम आपसे विशेष करके कुछ बातें INA और यानी आज़ाद हिंद फौज और पोर्ट ब्लेयर के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप पहले तो हमें ये बताएं कि आप पोर्ट ब्लेयर कैसे पहुँचे और कब पहुँचे?
2: सबसे बड़ी बात तो यह है कि शायद मैं भारतवर्ष में आज अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अंडमान की जेल में भी राजनीतिक बंदी के रूप में कुछ दिन व्यतीत किए और उसके अलावा अंग्रेज़ों के भी लाल किले की जेल में एक सेल के अंदर बंद रहते हुए भी मैंने कई महीने व्यतीत किए। तो ये तो मेरा परम सौभाग्य, शायद भारतवर्ष में एक मेरे मित्र थे, वो अब नहीं है, उनके अलावा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दोनों ही जेलों में, जो आज आपके राष्ट्रीय स्मारक बन चुके हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स बन चुके हैं, दोनों में राजनीतिक बंदी रहा हो और साथ ही साथ दोनों ही जगह उसको एक प्रकार से मृत्यु दंड मिला हो।
1: वो किस संदर्भ में हुआ ये कुछ है?
2: हाँ, मैं बताऊंगा आपको। मैं 1940 में कलकत्ते गया था वायरलेस ट्रेनिंग में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। तो वहाँ पर फोर्ट विलियम में कलकत्ता में ही मैं वायरलेस विभाग में काम करता था कि जब जैसे ही जापानी युद्ध छेड़ने को हुआ और तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने मुझे पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफ़र कर दिया और वो भी हवाई जहाज से ले गए कलकत्ते से पोर्ट ब्लेयर रंगून होते हुए। वहाँ हम दिसंबर में पहुँचे होंगे और 23 मार्च को, जैसे आपको मालूम है, जापानियों ने सब तरफ घेर करके 20 से अधिक जहाज़ लाकर उन्होंने घेरा था हमारे आइलैंड को। और उस समय वह वहाँ के ट्रांसमिटिंग स्टेशन पर ही ड्यूटी पर था 23 मार्च की 1942 की रात को। हम लोगों ने, जैसे ही जापानियों ने घेर लिया, हमारे जो अलेक्जेंडर लूटी थे, हमारे इंजीनियर साहब इंचार्ज थे वायर स्टेशन के, उन्होंने डायनेमाइट से वो उड़ा दिया। उनके उड़ा देने से इतने ज़ोर का धमाका हुआ कि जापानियों ने पहले सोचा कि उन पर कोई हमला हुआ, लेकिन सत्य ये था कि एक भी गोली नहीं चली। जापानियों ने कूद करके सारा आइलैंड घेर लिया और बिना एक गोली चलाए उन्होंने 23 को ही उस पर पूरा कब्जा कर लिया। तो वायरलेस के सब लोग गिरफ्तार हो ही गए, साथ ही साथ सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे जापानियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और मैं भी उन गिरफ्तार लोगों में एक था। दिन भर हम लोग बैठे रहे। योशीमुरा साहब, लेफ्टिनेंट योशीमुरा, जापानी जल सेना के जो अध्यक्ष थे उस समय, वो कमांडर थे जिन्होंने के पोर्ट ब्लेयर पर जापानियों का झंडा फहराया था।

0: फिर उन्होंने किस जेल में आपको रखा?
1: उसमें उन्होंने हम लोगों को जेल में नहीं रखा, उसमें उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया एक मैदान में, सारे हथियार इकट्ठे किए, सारे जितने भी कर्मचारी थे सबको पकड़ मंगाया और फिर शाम को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, दिन भर बिठाल करके सुबह से शाम तक। जिन्होंने कहा हम यूरोपियन हैं वो अलग, जिन्होंने कहा हम भारतवासी हैं वो अलग। हमारे कुछ एंग्लो इंडियन साथी थे जो हिंदुस्तानी थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम यूरोपियन हैं, लिहाजा उनको यूरोपियन के साथ कर दिया। और वो यूरोपियन लोग को जापानीज कहाँ ले गए आज तक मैं नहीं जान पाया, और मैं चाहता हूँ कि उन पर क्या बीती कभी कोई तो मुझे बताए। आज 50 वर्ष से ऊपर हो गए।
0: और आप लोगों के साथ क्या?
1: हम लोगों को बिठाल रखा दिन भर, उसके बाद शाम को उन्होंने कहा आप लोग हिंदुस्तानी हैं, हम जापानियों के भाई हैं, हम आपको छोड़ देंगे और आपसे भाईचारा रखेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो ये आपने हमारी तलवार देखी है, हम तलवार का इस्तेमाल करते हैं, गर्दन काट देते हैं।
0: अच्छा, तो उसके बाद आप लोग वहाँ
1: तो हम लोग अपने अपने घर भाग गए। अच्छा। खुशी के मारे जल्दी में, दिन भर बिना खाए पिए, आप सोच लीजिए कि न कोई भोजन था न कोई, एक बार बाहर जाने को हाजत के लिए भी हम लोगों को अवकाश नहीं मिला।
0: अच्छा, उसके बाद फिर
1: जब हम लोग घर पहुंच गए तो उसके बाद जापान ने अपना राज शुरू किया, और थोड़े दिनों में जब हमारे राजबिहारी बोस जी की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन चुकी थी, उसी के आधार पर अंडमान में भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सर्वसम्मति से हम लोगों ने डॉक्टर दीवान सिंह को चुना, सारे भारतवासियों ने। डॉक्टर दीवान सिंह बहुत ही बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो कई पोस्टें होल्ड करते थे, और बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि उनको जापानियों ने 1944 की जनवरी को बहुत बेरहमी से मार डाला।
0: ये क्यों?
1: ये आप उनके ऊपर एक बहुत मोटी पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम है टाइटन ऑफ अंडमान्स, उनके बेटे ने लिखी है, 1000 पेज की किताब है, उसको हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उसका विमोचन किया था। अब कभी आप अगर पुस्तक पढ़ें तो उसमें कम से कम नहीं तो 100 पेज से अधिक में आप मेरा उसमें हवाला पाएंगे।
0: अच्छा, उसके बाद ये INA आज़ाद हिंद फौज तो मैं आप
1: हाँ तो ये हुआ, जब हमारी लीग बन गई तो मैंने डॉक्टर दीवान सिंह से कहा कि हम लोग अपनी INA बनानी चाहिए और हम लोग भी लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा बनाओ। तो हम डॉक्टर दीवान सिंह के साथ मिलकर हम लोगों ने 200 नए रिक्रूट की हमने INA बनाई थी, और मैं चूँकि मेरे तो कोई परिवार था नहीं, मेरा कोई संगी साथी भी नहीं था, तो मैं उस INA में बनाने में जुट करके काम करता था। जापानियों ने एक जरूर हमारे साथ किया था डॉक्टर दीवान सिंह वजह से, मुझे वहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षक कर दिया था, तो शिक्षक के रूप में रोटी के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे, और बाकी समय में हम लोग डॉक्टर दीवान सिंह के अंडर में INA और लीग अपने दोनों काम करते थे। वो INA 2 महीने चलती रही, 2 महीने के बाद जब हम लोग जापानियों से कहा कि हमको कुछ हथियार दीजिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो हम लोगों ने जब देखा न कोई हमको हथियार मिल रहे हैं और न हमको कोई और लड़ाई की चीज़ें मिल रही हैं, तो डॉक्टर दीवान सिंह ने वो INA बर्खास्त कर दी। वो INA बर्खास्त क्या करना था, मुझको इतना दुख हुआ कि एक दिन जब लीग की बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैंने ये कह दिया कि यहाँ की पुलिस तो कोई रक्षक की जगह भक्षक ही है, और मालूम पड़ता है कि हमारे शासकों का भी इरादा कुछ नेक नहीं है, वो हमको हथियार लेने को दे ही नहीं रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि दूसरे दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, हाथों में हथकड़ी कमर में रस्सा बांध करके मुझे ले जाया गया, और सीधे स्कूल से ले जा करके उन्होंने मिस्टर लेफ्टिनेंट कमांडर हिराकावा, जो जापानी प्रशासक थे जिनके हाथ में सारा अंडमान का कार्यभार था, उनके सामने पेश किया गया, और वहाँ मेरा 9 बजे रात को मेरे ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। वो मुकदमा 12 बजे तक चला, और 12 बजे बाद वहाँ एक दोभाषी आए थे मिस्टर शाह, उन्होंने मुझे बताया कि आपको मृत्युदंड दिया जाता है सरेआम लोगों के सामने, आपके हाथ से आपकी कब्र खुदवाई जाएगी और प्रताड़ित करके वहाँ लटका के पैर बैठाया जाएगा, और एक बार में आपके गर्दन और धड़ अलग कर दिया जाएगा। जापानियों ने यही दंड एक मेजर बर्ड को दिया था। मेजर बर्ड एक अंग्रेज थे, बड़े सज्जन नेक आदमी थे, वो सप्लाई ऑफिसर थे, और वो गवर्नर जो

0: थे हमारे अंग्रेज गवर्नर सी एफ वाटरफॉल, उनके सेक्रेटरी भी थे। उनको अकारण ही जापानियों ने ये दंड दिया था, उनके पहले हाथ पैर तोड़े, उनसे कब्र खुदवाई, उनके पैर लटका के बिठाल दिया और फिर एक वार में उनकी सर और धर अलग करके दांत से दोनों को गड्ढे में डाल दिया और बुलाकर पब्लिक को दिखाया सबके सामने कि ये पनिशमेंट होता है ताकि लोगों के मन के अंदर दहशत घुस जाए। और उन्होंने सोचा एक अंग्रेज तो हमने कर ही दिया, अब एक हिंदुस्तानी को भी करते हैं, हिंदुस्तानी भी बिल्कुल डर जाएंगे। और वो मैं उनको मिल गया, कुछ किस्मत या बदकिस्मत से तो मुझे ये दंड सुनाया गया।
1: तो वो दंड जो आपको सुनाया गया तो उसका आगे क्या हुआ?
0: उसी दंड में उसी रात को 1 बजे मुझे ले जा करके अंडमान के एक सेल के अंदर बंद कर दिया गया,
1: ये सेलुलर जेल,
0: सेलुलर जेल के अंदर। और उस समय जो लोग अंडमान गए हैं वो जानते होंगे, एक वहां पर प्रताप नाथ नाग जी थे, 2 भाई थे, सुरेंद्र नाथ नाग और प्रताप नाथ नाग। प्रताप नाथ नाग को जापानियों ने अपना जेलर बनाया था। वो 2 बजे आकर के सेल के अंदर आकर मेरे पास बैठ कर रोने लगे। हम तो दोनों चुपचाप बैठे रहे, क्या करते, वो रोते रहे। उसी के 10 मिनट में ही एक जापानी संतरी आकर संगीन की नोक पे उनको उठा करके जेल से बाहर कर दिया और मैं वहां बंद रहा। बहुत दिन बंद रहने के बाद एक दिन डॉक्टर दीवान सिंह आए और उन्होंने, हम तो नहीं जानते थे कि क्या बात है, सेल के अंदर मेरे हथकड़ियाँ नहीं लगती थी, सेल से बाहर निकलते ही हथकड़ियाँ और रस्सी बांध करके ले जाते थे, रस्सी बांध के दरवाजे तक लाए, गेट तक। तो वहाँ मैंने देखा डॉक्टर दीवान सिंह थे और उनके साथ कुछ जापानी अफसर थे। तब डॉक्टर दीवान सिंह ने चुपके से कहा और इसके बाद फिर मैं जैसे बंद कर दिया गया। उसके बाद 3-4 दिन और गुजर गए। एक दिन शाम को फिर उन्होंने मेरे हथकड़ी लगाई, रस्सी बांधा और सड़क पर घसीटते ले चले। अब लोगों को विश्वास हो गया कि आज के दिन ज़रूर मेरी गर्दन काटी जाएगी। तो मुझे याद है आज भी एबर्डीन बाज़ार जो वहाँ गए, उन्होंने देखा होगा दोनों तरफ खड़े लोग जो थे वो बेचारे कुछ रो रहे थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, लेकिन बजाय मुझे मारने के काफ़ी दूर चला करके ले गए और एक 2 मंजिली बिल्डिंग के सामने वहाँ खड़ा कर दिया। वहाँ से एक जापानी सज्जन सफ़ेद पोशाक में उतरे और उन्होंने अपनी जापानी भाषा में कुछ डांट टूट कर क्या कहा और मेरी हथकड़ी खोल दी गई और मुझे रस्सी मेरी खोल दी गई और मुझसे उन्होंने कहा, देखिए हिज एक्सेलेंसी जो गवर्नर हैं कैप्टन होजुमी एगुची, जापानीज नेवी के, नेवी का कैप्टन ब्रिगेडियर के बराबर होता है, उन्होंने आपको क्षमा दान दिया है और आप देशभक्त हैं इसलिए वो आपकी कदर करते हैं, अब आप अपने घर जा सकते हैं।
2: अभी आप स्वतंत्रता सेनानी श्री रघुवंश लाल अवस्थी से की गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थी कुसुम जुत्शी। इस भेंट वार्ता का आज पहला भाग प्रसारित किया गया, कल इसी प्रोग्राम में दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। सुनिएगा प्रोग्राम कल रात 8:15 बजे, स्वतंत्रता संग्राम के वे दिन।

हमारे संग्रहालय से अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रीतम अरिजीत सिंह की आवाज से, संगीत कौशल मुनीर के, बोल प्रीतम का, फिल्म का नाम 83।

ادب با ادب هوشیار هوشیار

श्रोताओं, आज हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें अपने तिरंगे और देश का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें ईमानदार, दयालु, मेहनती और एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाना है। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

0: फन ऑफ फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़।

परी आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेश खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रोताओं, कुछ आवाजें समय के साथ पुरानी नहीं होती, कुछ चेहरे उम्र के साथ धुंधले नहीं पड़ते और कुछ कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते, वो अपने समय की आत्मा को पर्दे पर उतार देते हैं। आज जब तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, जब हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ही भावना है, मेरा देश मेरा भारत, तो आज के इस पावन दिन हम याद कर रहे हैं उस कलाकार को जिसने भारतीय सिनेमा के पर्दे पर भारत को सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि भारत को जिया। जी हां, वो भारत जो खेतों में पसीना बहाता है, वो भारत जो सीमा पर सीना तान कर खड़ा है, वो भारत जो अपने घर से दूर जाकर भी अपने देश को दिलों में बसाए रखता है, और वो भारत जो कहता है देश केवल नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, ये देश तो करोड़ों धड़कनों का नाम है। जी हां, इसी भारत को अपनी फिल्मों का नायक बनाने वाले, इसी भारत की मिट्टी को अपनी कहानियों का चरित्र बनाने वाले और देशभक्ति को मनोरंजन नहीं एक जिम्मेदारी मानने वाले महान कलाकार हरे कृष्ण गोस्वामी यानी मनोज कुमार यानी भारत कुमार।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर, उस नजर को

श्रोताओं, मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के वो महान कलाकार जिन्होंने हमें सिखाया कि देश प्रेम करने के लिए सीमा पर जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक कैमरा, एक कलम, एक संवाद और एक गीत भी पूरे देश के दिल में देशभक्ति जगा सकता है। जी हाँ, और मनोज कुमार की देशभक्ति की सिनेमाई यात्रा की बात हो और शहीद का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। आपने अभी सुना 1965 की फिल्म शहीद का वो गाना, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का किरदार निभाया था। यही वो दौर था जब मनोज कुमार की छवि एक सामान्य फिल्मी नायक से आगे बढ़कर राष्ट्रभक्ति के प्रतीक की ओर जाने लगी। शहीद में भगत सिंह की भूमिका ने उनके भीतर कलाकार को एक नई दिशा दी और इस फिल्म का गीत मानो उस दौर की क्रांतिकारी चेतना को सीधे हिंदुस्तान के दिल तक ले जाता है। इस गाने को आपने सुना और इसके बाद अगर उनकी सिनेमाई यात्रा की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से प्रेरित फिल्मों में ही काम किया। बहुत सी रोमांटिक फिल्में थी जिनमें उन्होंने काम किया, उनके नाम भी हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के सफर में। लेकिन जरा सोच के देखिए, एक अभिनेता की पहचान उसके अपने नाम से बड़ी कैसे हो जाती है। मनोज कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को ऑप्टाबाद में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया। एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी आंखों से विभाजन देखा था।

जिनका दर्द देखा था। शायद यही कारण था कि बाद के वर्षों में जब उन्होंने भारत को पर्दे पर प्रस्तुत किया तो वो भारत सिर्फ एक कल्पना नहीं था, उसमें उनकी अपनी स्मृतियां थीं, अपना विस्थापन था, अपना दर्द था और अपने देश के लिए एक गहरा लगाव था। फिर आया वर्ष 1967। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से जय जवान जय किसान की भावना पर फिल्म बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा और इसी प्रेरणा से जन्मी थी फिल्म उपकार। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये किसान जवान दोनों को भारत की आत्मा बनाने वाली एक सिनेमाई पुकार थी और यहीं से मनोज कुमार का नाम एक नए नाम से जुड़ गया और वो नाम था भारत कुमार। जी हां, सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी उपकार को उनकी राष्ट्रवादी छवि के निर्णायक पड़ाव के रूप में दर्ज किया गया है। तो क्यों ना सुन लिया जाए वो गाना जिसमें मिट्टी की खुशबू है, किसान का गर्व है और भारत माता के चरणों में समर्पण है।

मनोज कुमार की देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक तक सीमित नहीं थी। उनके लिए देशभक्ति का मतलब था अपनी भाषा से प्रेम, अपनी संस्कृति पर गर्व, अपने संस्कारों को समझना और दुनिया के सामने अपने भारतीय होने को सम्मान के साथ स्वीकार करना। 1970 में आई पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार ने इस फिल्म में निर्देशन भी किया और अभिनय भी। कहानी भारत और पश्चिमी दुनिया के टकराव के बीच भारतीय पहचान के सवाल को सामने लाती है और इसी फिल्म में आया वो गीत जो आज भी देशभक्ति के गीतों की सूची में एक अलग स्थान रखता है। ये गीत कहता है कि भारत की पहचान केवल उसकी सीमाएं नहीं, उसकी संस्कृति और उसकी जीवन दृष्टि भी है। तो आइए आजादी के इस उत्सव में भारत की विविधता, उसकी संस्कृति और उसकी आत्मा को आत्मसात करें।

मनोज कुमार को सिर्फ देशभक्ति फिल्मों का अभिनेता कह देना शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने रोमांटिक नायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बदन, पत्थर के सनम, नीलकमल, ऐसी न जाने कितनी फिल्में थी जिनमें बिल्कुल से अलग दिखाई देते हैं मनोज कुमार। लेकिन फिर उन्होंने अपने सिनेमा की दिशा बदली और उन्होंने कैमरे को सिर्फ मनोरंजन दिखाने का माध्यम नहीं बनाया, उन्होंने कैमरे को समाज

का आईना बनाया। रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म आई जिसमें बेरोजगारी और सामाजिक संघर्ष आया। क्रांति में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह की कहानी आई और बार बार एक सवाल सामने आया कि ये देश किसका है। जवाब था उस किसान का, उस मजदूर का, उस जवान का, उस आम आदमी का जो अपने हिस्से का भारत हर दिन बनाता है। मनोज कुमार के सिनेमा की यही सबसे बड़ी खासियत थी कि उसका नायक केवल लड़ता नहीं था, वो सोचता भी था। और इन्हीं सबके बीच फिल्म आई क्रांति, एक ऐसी फिल्म जिसमें इतिहास, बलिदान, विद्रोह और देशभक्ति एक साथ दिखाई दिए।

मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और पर्दे पर गूंजती आजादी की पुकार, इस फिल्म का ये गीत अपने भीतर एक अलग किस्म की ऊर्जा रखता है।

मनोज कुमार साहब की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि उन्होंने देशभक्ति को सिर्फ बंदूक और सीमा तक सीमित नहीं किया। उनकी फिल्मों में देशभक्ति का एक दूसरा चेहरा भी था, रोटी कपड़ा और मकान, साथ ही रोजगार और सम्मान और आम आदमी की जिंदगी। 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान इसी सोच का उदाहरण है। फिल्म के शीर्षक में ही देश के आम आदमी की बुनियादी जरूरतें छिपी थी। मनोज कुमार का सिनेमा कह रहा था कि अगर देश मजबूत बनाना है तो सिर्फ सीमाओं से ही काम नहीं चलेगा। सीमाएं तो मजबूत होनी ही चाहिए, लेकिन देश का आम आदमी भी मजबूत होना चाहिए। उसके घर में चूल्हा जलना चाहिए, उसके बच्चों की आंखों में भविष्य का सपना होना चाहिए और उसके माथे पर सम्मान होना चाहिए। यही वजह है कि मनोज कुमार का देश प्रेम सिर्फ नारों का देश प्रेम नहीं था, वो जीवन से जुड़ा हुआ था। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में उन्हें पद्मश्री मिला और 2015 के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान में से एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें अभिनेता और निर्देशक दोनों रूपों में भारतीय सिनेमा के उन महत्वपूर्ण कलाकारों में गिना जाता है जिन्होंने देशभक्ति के विषयों को अपनी फिल्मों में प्रमुख स्थान दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुरस्कार किसी कलाकार की सबसे बड़ी विरासत नहीं होते, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दर्शकों के दिलों में बचा हुआ स्थान। और मनोज कुमार के हिस्से में वो स्थान हमेशा रहेगा, क्योंकि जब भी 15 अगस्त आएगा, जब भी 26 जनवरी आएगी, जब भी तिरंगा लहराएगा और जब भी कोई रेडियो पर कहेगा मेरे देश की धरती, तब कहीं ना कहीं मनोज कुमार का चेहरा हमारी स्मृतियों में जरूर उभरेगा। आज मनोज कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन कलाकार कभी पूरी तरह विदा नहीं होता। उनकी आवाज, उनके किरदार, उनकी कहानियां, उनके संवाद, उनके गीत सब उसके बाद भी लोगों के बीच चलते रहते हैं। मनोज कुमार भी चले गए, लेकिन उनका भारत आज भी हमारे बीच है। वो भारत जो खेत में हल चलाता है, वो भारत जो सीमा पर पहरा देता है, वो भारत जो स्कूल में पहली बार तिरंगा बनाता है, वो भारत जो किसी अनजान शहर में अपने घर की मिट्टी को याद करता है, और वो भारत जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद अपने देश को और बेहतर बनाने का सपना देखता है। शायद यही मनोज कुमार के सिनेमा का सबसे बड़ा संदेश था कि देश से प्रेम केवल शब्दों में नहीं अपने कर्मों में दिखाई देना चाहिए। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम उस कलाकार को सलाम करते हैं जिसने पर्दे पर भारत को एक चेहरा दिया, एक आवाज़ दी, एक भावना दी। भारत कुमार को सलाम, उनकी कला को सलाम, उनकी देशभक्ति को सलाम और उन तमाम ज्ञात अज्ञात वीरों को सलाम जिनके बलिदान से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। तिरंगा केवल आसमान में नहीं लहराना चाहिए, तिरंगा हमारे चरित्र में भी लहराना चाहिए। आइए आजादी को सिर्फ मनाए नहीं, आजादी की जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि देश हमसे है और हम देश से। इसी भावना के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अतुल यादव आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एक ही कलाकार, जो केंद्रित था मनोज कुमार पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.3 MHz पर, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का। जी हाँ श्रोताओं, कुछ दिन कैलेंडर पर आते हैं और कुछ दिल में उतर जाते हैं। 15 अगस्त भी एक ऐसा ही दिन है, एक ऐसा दिन जब तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों पर नहीं, हमारे घरों की छतों पर दिखाई देता है। जब देशभक्ति की सिर्फ एक भावना नहीं रहती, बल्कि हमारी आवाज़, हमारे गीत, हमारी यादों और हमारी आंखों की चमक बन जाती है। आज़ादी की कहानी सिर्फ इतिहास के किताबों में नहीं लिखी गई, वो लिखी गई किसी सैनिक के खून से, किसी माँ की आंखों के आंसुओं से, किसी क्रांतिकारी के बलिदान से और उन करोड़ों भारतीयों के सपनों से जिन्होंने एक आज़ाद भारत की कल्पना की थी। और जब इन भावनाओं को सुर और संगीत मिलते हैं तो बनता है फिल्म संगीत। आज के इस खास मौके पर हम बात करेंगे सिर्फ देशभक्ति गीतों की। हम महसूस करेंगे उन गीतों को जो कभी माँ के रूप में भारत, कभी मिट्टी के रूप में भारत, कभी सीमा पर खड़े जवान के रूप में भारत, और कभी मैदान में जीत के लिए लड़ते एक खिलाड़ी के रूप में भारत। क्योंकि भारत सिर्फ एक भावना नहीं, भारत एक एहसास है। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रंग जाते हैं, उस ऐसे रंग में जो आज़ादी के इस जश्न को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना जाता है। जी हाँ, और शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें एक बेटी का अपने वतन से बेमतहा प्यार है।

एक वतन जिसे दूर जाकर भी दिल दूर नहीं होता, एक मिट्टी जिसे छोड़कर जाने वाला इंसान बार बार उसी मिट्टी को याद करता है। फिल्म राजी का यह गीत देशभक्ति को शोर में नहीं, एक बहुत ही शांत और गहरे एहसास में बदल देता है। तो आइए अपने वतन के नाम एक खूबसूरत सलाम करते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम जिस मिट्टी पर रोज चलते हैं, कभी कभी उसकी कीमत हमें तब समझ में आती है जब कोई उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। सीमा पर खड़ा जवान जब घर से निकलता है तो उसके पास भी हमारी तरह सपने होते हैं, उसका भी परिवार होता है, उसकी भी माँ होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, लेकिन जब देश पुकारता है तो उसके लिए सबसे ऊपर होता है भारत। और इसी भावना को एक गीत ने इतनी गहराई से आवाज दी कि वो देशभक्ति गीतों की नई पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण गीत बन

0: सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये सिर्फ मिट्टी की बात नहीं है, ये उस मिट्टी की बात है जिसमें किसी जवान की कहानी मिल जाती है। ये उस माँ की बात है जिसका बेटा वापस नहीं आता, लेकिन देश के इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है।

कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए लड़ी जाती हैं और कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आज़ाद होकर जी सकें। लेकिन देश की कहानी सिर्फ सीमा पर नहीं लिखी जाती, कभी कभी देश की शान एक क्रिकेट के मैदान में भी लहराती है, जब करोड़ों लोगों की उम्मीद 11 खिलाड़ियों के कंधों पर होती है, जब पूरा देश एक साथ एक ही सपना देख रहा होता है और जब हार के डर से बड़ा जीत का विश्वास हो जाता है, तब खेल भी देशभक्ति का एक खूबसूरत रूप बन जाता है। फिल्म 83 का यह गीत उसी उम्मीद की कहानी है जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। जी हां, एक झंडा, एक टीम, एक सपना और पूरा देश। सुनते हैं लहरा दो, ये सॉन्ग जो कि एक अलग ही स्वरूप में देशभक्ति की भावना से लबरेज किया जाता है।

देशभक्ति का मतलब हमेशा अकेले बढ़ना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। एक की ताकत दूसरे की कमजोरी बन जाए और एक की जीत पूरे समूह की जीत बन जाए। यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भी है। अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग परंपराएं, फिर भी हम साथ हैं। और जब साथ चलने की बात आती है तो लक्ष्य का ये गीत आज भी उतना ही असरदार लगता है। जी हाँ श्रोताओं, कई बार हम जब ये सोचते हैं कि शायद फला काम करना हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब कोई हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है तो वही काम हमें आसान लगने लगता है।

तो श्रोताओं, प्रोग्राम का सफ़र हमने तय किया बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे अच्छे गानों के साथ। और अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ पहुँचे हैं हम, जहाँ के सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि जोश का भी पूरा तड़का लगाएंगे, क्योंकि आज़ादी का जश्न सिर्फ आंखों में आंसू लाने का नाम नहीं है। आज़ादी का जश्न है सीना चौड़ा करने का, मुट्ठी बांधने का, अपने देश पर गर्व करने का और ये कहने का कि हाँ, हम भारतीय हैं। एक ऐसा देश जहां क्रिकेट का मैदान हो, हॉकी का मैदान हो, ओलंपिक का मंच हो या जिंदगी की कोई भी चुनौती हो, जब पूरा देश एक साथ खड़ा होता है तो जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, जीत पूरे भारत की होती है। और इसी जोश के साथ अब वो गीत जिसे सुनते ही हर दिल कहता है चक दे इंडिया।

जीत की हुंकार। फिल्में बदलती रहीं, समय बदलता रहा, संगीत बदलता रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो था भारत के लिए प्यार। आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं तो एक पल के लिए उन चेहरों को याद कीजिए जिन्होंने हमें ये दिन दिया, वो चेहरे जिनकी तस्वीरें शायद हमने कभी नहीं देखी। जी हाँ, वो नाम जिन्हें इतिहास की किताबों में शायद बहुत छोटी सी जगह मिली, लेकिन जिनके त्याग की वजह से हमारी आज़ादी की कहानी इतनी बड़ी बन सकी। और आज हम आज़ादी सिर्फ एक दिन के रूप में नहीं है, बल्कि यूं लगता है जैसे कि ये हमारी जिंदगी हो। लेकिन आज की आज़ादी हमसे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि हम इस आज़ादी के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने देश को थोड़ा और बेहतर बना रहे हैं? क्या हम अपने आसपास थोड़ी ईमानदारी, थोड़ी इंसानियत, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं? क्योंकि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा हाथ में लेने का नाम नहीं है। देशभक्ति है जब कोई भूखा हो तो उसके लिए रोटी बन जाना, जब कोई कमजोर हो तो उसके साथ खड़े हो जाना, जब देश की संपत्ति को नुकसान हो तो उसे अपना समझकर बचाना, जब राष्ट्रगान बजे तो सम्मान से खड़े हो जाना, और सबसे आगे बढ़कर अपने हिस्से का भारत ईमानदारी से बनाना। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भारत देना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इस पावन अवसर पर एक संकल्प लेते हैं, नफरत से नहीं, न्याय से भारत को मजबूत करेंगे, बढ़कर नहीं, मिलकर भारत को मजबूत करेंगे, सिर्फ शिकायत करके नहीं, अपने हिस्से का काम करके भारत को मजबूत करेंगे। और जब अगली बार तिरंगा आसमान में लहराए तो सिर्फ आंखें ऊपर न उठें, हमारा सिर भी गर्व से ऊंचा हो, क्योंकि ये तिरंगा हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है, और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा भारत और मजबूत हो, और समृद्ध हो, और सुरक्षित हो, और सबसे बड़ी बात, और इंसानियत से भरा हो। मैं अतुल यादव आपसे लेता हूं विदा, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

तो ये थे आज़ादी के कुछ रंग, कभी वतन के लिए प्यार, कभी मिट्टी के लिए सम्मान, कभी बलिदान, कभी उम्मीद, कभी साथ चलने का जज्बा और कभी

इसी के साथ फिल्म संगीत प्रोग्राम खत्म होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई।

0: आई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: Aaj jab hum desh ke log Vande Mataram ke 150 varsh mana rahe hain, to isse bada uttam avsar kya ho sakta hai? Pichle dino देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भलीभांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश को की जनता के नाम संदेश हम लखनऊ से रिले करेंगे रात 8 बजे। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:30 बजे चित्रपट

दिन में 1 बजकर 15 मिनट पर ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट होगा, जिसमें आज डॉक्टर निहारिका तिवारी से नेहा गुप्ता की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायक नायिकाएं। इसके अलावा महिलाएं आनंद लेंगी शैल कुमारी के गाय लोकगीतों का। 2:30 बजे भी लोकगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे कल्पनाथ और साथी, जगदीश यादव और साथी, और संगमलाल यादव और साथी। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से शाम 5 बजे। कलाकार होंगी अनीता नाथ। युवा साथियों के अपने कार्यक्रम युवाड़ी में आज का आकर्षण होगी कर्नल अब्रार अहमद से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। विषय होगा विरासत की आजादी, युवाओं की जिम्मेदारी। इसके अलावा आज की शाम आपके नाम, जो केंद्रित होगी अभिनेता सचिन पर। समय युवाणी कार्यक्रम का 5:15।

शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाइयों के अपने कार्यक्रम पंचायत घर में परिवार कल्याण की बातें होंगी। साथ ही आनंद लेंगे अरविंद कुमार सिंह और साथियों के गाए लोकगीतों का। सात बजकर 31 मिनट पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। 7:45 पर आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम, जिसमें आज अजय भालचंद खेर की वार्ता स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की भूमिका। 8:15 बजे फिल्म संगीत और 8:30 बजे सबरस कार्यक्रम होगा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, कुमारी रजनी सरोज पुत्री श्री अनंत राम सरोज, उम्र 16 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग के हुआ, चेहरा गोल और इकहरा शरीर है। ये 10 मई 2026 को 9:30 बजे के आसपास ग्राम टिकरिया अशोक थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 9984645307। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9984645307। अगली सूचना इस प्रकार है, ममता पुत्री श्री लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा, उम्र 25 वर्ष, इकहरा बदन, चेहरा लंबा, कद 5 फीट, रंगे हुआ है। ये 16 मई 2026 को सवेरे 4 बजे के आसपास ग्राम मकरा मनभावना थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। श्री लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा पुत्र रामफेर, निवासी मकरा मनभावना थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़। और इस वक्त की जो आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है, केशरी देवी, उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, शरीर पतला, चेहरा अंडाकार, रंग सांवला है। ये 6 मार्च 2026 को ग्राम असुड़ी थाना पणिबुधिया से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। तिलक राम बुधिया राइन, जनपद प्रतापगढ़, थाना पट्टी। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सिद्धार्थ मिश्र का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ मिश्र का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। विषय खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज स्वतंत्रता दिवस है तो जाहिर सी बात है कि आकाशवाणी भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में सराबोर है। आजादी का जश्न हम सभी आपके साथ मिलकर मना रहे हैं। भारत सिर्फ एक नाम नहीं, भारत एक एहसास है। कहीं सुबह की पहली किरण के साथ खुलती हुई किसी गांव की खिड़की भारत में है, कहीं खेतों में लहराती फसल भारत में है, कहीं मंदिर की घंटियों में भारत है, कहीं मस्जिद की अजान में भारत है, कहीं गुरुद्वारे के शब्द में भारत है, तो कहीं चर्च की प्रार्थना में भारत है, और कहीं किसी माँ की आंखों में अपने बच्चे के बेहतर भविष्य का सपना भी भारत है।

आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन। वो दिन जब पूरा देश अपने अतीत को याद करता है, अपने वर्तमान पर गर्व करता है और भविष्य का सपना देखता है। और शायद इसीलिए हिंदी फिल्मों ने भी भारत को सिर्फ पर्दे पर नहीं दिखाया, बल्कि लोगों के दिलों में उतारा। कभी गीत बना ये देश, कभी माँ बना है, कभी मिट्टी बना ये देश, कभी उम्मीद बना, और कभी उस इंसान का घर जो दुनिया में किसी भी कोने में चला जाए लेकिन उसका दिल कहता रहे मेरा देश मेरा है। तो आइए आजादी के इस खास दिन फिल्मी संगीत के जरिए चलते हैं भारत की एक ऐसी यात्रा पर जहां हर गीत हिंदुस्तान का एक अलग रंग दिखाएगा, कभी भावुक, कभी शांत, कभी गौरवान्वित और कभी पूरी तरह से जोशीला। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम और आज का यह कार्यक्रम खास तौर से आजादी के रंग में रचा और बसा है। तो शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसमें भारत के लिए सीधे प्रेम दिल से निकलता है। जी हाँ श्रोताओं, किसी देश से प्यार करने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी बातें जरूरी नहीं होती। कभी कभी बस इतना कहना ही काफी होता है कि भारत हमें जान से प्यारा है। जी हाँ, एआर रहमान के संगीत से सजा ये गीत आज भी भारत के प्रति उस शांत, गहरे और सच्चे प्रेम को आवाज देता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने वतन के नाम।

भारत की खूबसूरती सिर्फ ये नहीं कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, भारत की खूबसूरती ये है कि इतने अलग अलग लोग फिर भी एक साथ रहते हैं। भाषाएं अलग, बोलियां अलग, खाने अलग, कपड़े अलग, रिवाज अलग, लेकिन जब बात आती है इस मिट्टी की तो दिल बस एक ही आवाज़ में कहता है कि मेरा भारत। और इसी भारत की रंग बिरंगी तस्वीर इस खूबसूरत गीत में दिखाई देती है। जी हाँ श्रोताओं,

गीत सिर्फ देश की खूबसूरती नहीं बताता, यह हमें याद दिलाता है कि भारत की पहचान उसकी विविधता में है। तो सुनते हैं भारत की मिट्टी, उसकी संस्कृति और उसके रंगों को सलाम करता है यह खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है देशभक्ति का सबसे शांत रूप क्या हो सकता है? शायद अपने घर से दूर रहकर अपने घर को याद करना, अपनी मिट्टी से दूर रहकर उस मिट्टी की खुशबू को महसूस करना। दुनिया आपको कितना भी आगे लेके चली जाए, दिल के किसी कोने में एक रास्ता हमेशा अपने देश की तरफ जाता ही रहेगा। फिल्म स्वदेश का ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये गीत इसी एहसास की कहानी है। यहां देशभक्ति नारे नहीं लगाती, बस धीरे से कहती है, वापस चले आओ अपने लोगों के पास, अपनी मिट्टी के पास, अपने देश के पास।

किसी देश को महान बनाने में किसी व्यक्ति विशेष का या किसी समूह का या किसी समुदाय का व्यक्तिगत रूप से योगदान नहीं होता, बल्कि किसी देश को महान बनाते हैं उस देश के करोड़ों सामान्य लोग। वो शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाता है, वो डॉक्टर जो किसी अनजान मरीज का इलाज करता है, वो किसान जो अन्न उगाता है, वो इंजीनियर जो कुछ नया बनाता है, वो साइंटिस्ट जो देश को आगे ले जाता है, और वो जवान जो सीमा पर खड़ा होकर हम सबको सुरक्षित रखता है। यानी भारत हम सबका है, और इसी भावना को एक नए दौर का गीत बहुत ही खूबसूरती से सामने लेकर आता है।

देश को दूर से देखना और देश को दिल में रखना दो अलग बातें हैं। ये गीत उस दूसरी भावना को बयान करता है, अपने देश के लिए एक गहरी मोहब्बत। तो सुनिए ये गाना।

कलम के आखिरी हिस्से में हम आ पहुंचे हैं और यहां पर हम उस जगह पर हैं जहां पर विदा लेने का वक्त भी आ चुका है, लेकिन हम उस भावना की तरफ भी बढ़ चुके हैं जो शायद हर भारतीय के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है। जी हाँ, एक माँ जिसके लिए उसका बच्चा पूरी दुनिया है और एक देश जिसके लिए करोड़ों लोग उसके बच्चे हैं। हम अक्सर कहते हैं भारत माता, क्यों? क्योंकि इस देश ने हमें सिर्फ जमीन नहीं दी, हमें पहचान दी है, भाषा दी है, संस्कृति दी है, परंपरा दी है और सबसे बड़ी बात एक घर दिया है। जी हाँ, अब सुनिए उस भावना का गीत जिसे सुनते ही दिल अपने आप कह उठता है, माँ तुझे सलाम।

पांच गीत, भारत के पांच रंग, एक देश लेकिन उसे महसूस करने के हजारों तरीके। किसी के लिए भारत उसका गांव है, किसी के लिए उसका शहर, किसी के लिए सीमा पर खड़ा जवान, किसी के लिए अपने स्कूल का पहला तिरंगा, किसी के लिए माँ के हाथ का खाना और किसी के लिए वो मिट्टी जहां उसके पुरखे सोए हैं। यही तो भारत है, एक ऐसा भारत जिसे किसी एक भाषा में नहीं बांधा जा सकता, किसी एक धर्म में नहीं बांधा जा सकता, किसी एक प्रदेश में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि भारत विविधताओं से मिलकर बनी एक ऐसी धुन है जिसका संगीत पूरा देश है। आजादी के 80वें वर्ष में हमारे सामने सिर्फ अतीत को याद करने की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे सामने एक और जिम्मेदारी है, आने वाले भारत को बेहतर बनाना।

जी हाँ श्रोताओ, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और पढ़ें और आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि गांव और शहर के बीच की दूरियां कम हो। हम चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया में और मजबूत हो। और ये तभी होगा जब हम ये समझेंगे कि देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती, देश को हम बनाते हैं। हमारी छोटी छोटी ईमानदार कोशिशें मिलकर भारत बनाती हैं। हम सड़क पर नियम बनाते हैं तो भारत बनता है। हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो भारत बनता है। हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो भारत बनता है। हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो भारत बनता है। और जब हम एक दूसरे की विविधता का सम्मान करते हैं तब भारत और खूबसूरत बनता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर दिन अपने भीतर एक छोटा सा भारत बचाकर रखिए। वो भारत जो प्यार करना जानता है, वो भारत जो सम्मान करना जानता है, वो भारत जो मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ना जानता है, और वो भारत जो दुनिया से कह सके हाँ हम अलग हैं लेकिन हम साथ हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा भारत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

फिल्म संगीत के जरिए भारत को महसूस करने की छोटी सी संगीत यात्रा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन भारत की कहानी, भारत का संगीत और भारत से हमारा रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी

मुने आज 80वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉइसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 आप लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
1: वज़ीर आला ने यौम आज़ादी के मौके पर लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर परचम कुशाई की तकरीब से भी खिताब किया। उन्होंने हर शहरी से इस बात को तस्लीम करने की अपील की कि अगर हमें इस मुल्क की आज़ादी को तवील मुद्दत में बरकरार रखना है तो इसके लिए सिर्फ़ एक फ़र्द, किसी एक बिरादरी या ज़ात को नहीं, बल्कि भारत के तमाम 140 करोड़ लोगों को इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुतालिका शोबों में इज्तमाई तौर पर हर एक का हिस्सा डालने की ज़रूरत होगी। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर में आज 80वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत लखनऊ में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब विधान भवन में मुनक्किद हुई। सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों समेत मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की तकरीबात भी मुनक्किद की गईं। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। परचम कुशाई की तकरीब ऑल इंडिया रेडियो के सेंटर डायरेक्टर जनाब आरवी सिंह और सुमोना एस पांडे ने अंजाम दी। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में भी परचम कुशाई और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल 80वें यौम आज़ादी की माकबल शब पर कौम से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें भारत के लोगों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और भारत को बेहतरीन मुल्क बनाने के जज्बे के साथ काम करना चाहिए। आज़ादी का यही मतलब है। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय के जज्बे के साथ हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि तरक्की के फवायद हर शख्स तक पहुँचें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्य स्मृति महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का बदला हुआ अयोध्या धाम हमें त्रेता युग की याद दिलाता है। चढ़ावा मामले पर जनाब योगी ने कहा कि SIT की तहकीकात जारी है और हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। मरकज़ी वज़ारत दाखला के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर ने 2027 की मर्दमशुमारी के लिए घरेलू शेड्यूल के सवालनामे का नोटिफिकेशन कर दिया है। इसमें वालिदैन की तफसीलात, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट्स की कुल तादाद, काम की जगह तक आने जाने की तफसील, मजहब और ज़ात समेत 40 सवालात शामिल हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनकट।

0: गुंजा, अरे ए गुंजा, हम कहा तो से राम राम।
1: राम राम जमुना बहनी।
0: अपन पलघट कार्यक्रम सुने बैठे
1: सब श्रोता बहनी हरन का
0: राम राम।
1: राम राम।
0: अरे गुंजा, हम देखा था कि आज तू जोन बाटे तो ही देखा था, लागा था कि आज 15 अगस्त हवे।
1: देखा भी नहीं कुल अपन जो देश के आज उत्सव मनावत बाटे 15 अगस्त।
0: बिल्कुल,
1: तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ना बहनी। कुल अपने घरे से जब लड़का गदेला तैयार किया अपने पनघटेश बहनी हरन से मिले लगी।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो हम कहे कि सबसे पहले अपनी बहनी हरन के स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जब आज हम गुंजा अपने घरे से चले, पहले तो सवेरे जोन में लड़कियां बहुत परेशान थी जोन बा की अम्मा हमें तैयार करे, हमें तैयार करे, हमें जोन बा झंडा खरीद दे और

0: हाथे में देखा पहने वाला हो,
1: हाँ बहनी सही कहो,
0: टोपी में जोन ठंडा का पूरा वो बनी रहा था,
2: कुल तिरंगा पूरा शरीर में
0: लगा रहा था। तो उनके सबके पहनाए उड़ाए कि कैसो कैसो जोन बाटे, जब आवे लगे गुंजा तो रास्ता में जोन बा कुल लड़कियां झंडा ले ले रैली निकलत रही और लड़कियां लाइन से जोन बाटे चलत रहे की हाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय। सच्ची कहते है गुंजा, इतना अच्छा लगत रहा कि ऐसा अपन बचपन याद आएगी। वह
2: बोला तू कहा तू 15 अगस्त के हमका भी तू हरियाली लगती है, कुल हरा हरा बहनी। कुछ खास बात?
0: खास बात बहुत, अब देखा जौन बटे सावन का महीना चलता ही बैठे,
2: वो तो है बहनी।
0: अब देखा आज हरियाली तीज भी है तो भाई हरा कसना दिखाई पड़े
2: बिल्कुल।
0: तो देखा गुंजा जब 15 अगस्त का बात चलता है तो अब कसना बहनी हरण से चला यही विषय पे बात कही कह लें जाए।
2: बिल्कुल बहनी।
0: हाँ तो देखा गुंजा ये जौन 15 अगस्त हवे ये भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब वर्षों की गुलामी और अनगिनत संघर्षों के बाद हमारा देश स्वतंत्र भवा रहा।
2: अच्छा।
0: और वर्ष 1947 में इसी पावन दिन भारत अंग्रेजी शासन से आजादी प्राप्त किए रहा। यही लिए 15 अगस्त हमरे सबके लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं गुंजा बल्कि वीरता त्याग संघर्ष और देश प्रेम का अमर गाथा है।
2: बिल्कुल जमुना बहनी, काहे सी की देखा स्वतंत्रता के पीछे ना जाने के कितने वीरों के अपन जीवन देश के नाम कर दिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग से लेके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम अब साहस और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस के बदौलत आजादी की कहानी की बलिदानी लिखी गई है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: उनके त्याग के कारण ही आज हम स्वतंत्रता में हवा ले सकते हैं।
0: हाँ स्वतंत्र होए के।
2: हाँ सांस ले सकते बहनी और जाना तो
0: और अपने के सपने के जौन बस
2: साकार कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल गुंजा। और देखा ये 15 अगस्त की सुबह जब आकाश में हमार तिरंगा सांस से लहरा था ना,
2: हाँ
0: तो हर भारतीय के हृदय गर्व से उभर उठा था।
2: बिल्कुल।
0: राष्ट्रगान का गूंज, देशभक्ति का गीत और भारत माता की जय के जय घोष से पूरा वातावरण देश प्रेम से सराबोर हो जाता है। विद्यालयों, कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े आयोजन जौन बा किए जाते हैं, है ना?
2: एकदम सही कहो बहनी। मुला जमुना बहनी,
0: हाँ
2: सच्ची देशभक्ति केवल तिरंगा फहरावे या देशभक्ति के गीत गावे तक सीमित ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: देशभक्ति तब सच्ची होवे जब हम अपने कर्तव्यों के ईमानदारी से निभाओ।
0: बहुत सही कहो। और जाना थू गुंजा, एक दूसरे का सम्मान, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, और पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और शिक्षा, स्वच्छता और सेवा के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना ही सच्ची देश सेवा है।
2: बिल्कुल। जाना थू तू इतनी नीक नीक बात कहो तू। ई 15 अगस्त पर हम उन अमर शहीदों के नमन करी जिनके बलिदान से हम स्वतंत्रता मिली है। हम संकल्प ले कि अपने देश के प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, शिक्षित, शिक्षा, समृद्धि और विकसित भारत बनावे में अपन योगदान दे।
0: बिल्कुल। और आजादी देख गुंजा हमें विरासत में मिली है।
2: बिल्कुल बहनी।
0: तो अब एके सुरक्षित रखना जौन बा हमारे सबके
2: मूल कर्तव्य है।
0: मूल कर्तव्य हमारे सबके जिम्मेदारी है कि जौने हम सब आज जौन बा इतना स्वतंत्र उम्मीद जौन बा जौन सांस ले रहा बाटी केवल अपने वीरों की
2: बलिदानों के कारण है।
0: तो देखा ये तो बात होगी लेकिन आज 15 अगस्त के दिन एक अभी बात है, आज है हरियाली तीज।
2: बिल्कुल बहनी।
0: और हरियाली तीज तो होके और हमें देख के लगते बैठे।
2: देखा बहनी ये हरियाली तीज जो है ईसावन के पावन महीना में आवत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कसना ही हो पे थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए।
2: हाँ?
0: हाँ? देखो गुंजा, हरियाली तीज केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, आस्था, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की मधुरता का सुंदर उत्सव है।
2: अच्छा।
0: सावन की हरियाली, रिमझिम फुहारे, झूलों का मधुर पेंग और हाथों में सजी मेहंदी, हरियाली तीज आते ही वातावरण में एक अलग ही उमंग और खुशियों को बाहर लेके छाई जाता है।
2: अच्छा बहनी। और जानो सुहागिन बहनी लोगन के हरियाली तीज का पर्व विशेष भावनाओं से जुड़ा होता है।

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यह दिन बहनी लोग 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन कामना करत हैं। हरे रंग के वस्त्र चूड़िया सावन की हरियाली की तरह जीवन में प्रेम उल्लास और नई उमंग के संदेश देत हैं।
0: बिल्कुल गुंजा, और हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती
1: अच्छा
0: और भगवान शिव के पवित्र प्रेम और अटूट समर्पण से माना जाता है। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या हमें ये संदेश देता है गुंजा कि रिश्तों की खूबसूरती केवल साथ रहे में नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, समर्पण और एक दूसरे की भावना के समझे में
1: चाहिए। बिल्कुल बहनी। और जाना तू यह पर सुहागिन के जीवन में प्रेम का मिठास और रिश्तों में विश्वास की मजबूती लेके आवत है। पति पत्नी के बीच स्नेह बना रहा है, घर आंगन में सुख समृद्धि के वास होते है और परिवार हमेशा खुशियों से महकत रहते
0: बहनी। बिल्कुल बहनी। और देखा जब आज तीज हरियाली तीज है तो सभी सुहागिन बहनी हरन के प्रेम सौभाग्य और अखंड सुहाग की मंगल कामनाओं सहित हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखा गुंजा आज 15 तारीख हो और परसों देखा का हो
1: नागपंचमी।
0: नागपंचमी है ना।
1: देखा बहनी ये जो मौसम है सावन से शुरू हो जाता है, कुल 30 त्योहार के मौसम शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल। तो देखा गुंजा नागपंचमी सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण और श्रद्धा से जुड़ा पर्व है।
1: अच्छा बहनी।
0: और सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के ये मनावा जाए वाला यह पर्व नाग देवता की पूजा, भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का सुंदर संदेश देता है।
1: और देखा बहनी नागपंचमी के दिन श्रद्धालु नाग देवता का पूजन करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, सुरक्षा और मंगल का कामना करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग सुशोभित होते है और भगवान विष्णु के शेषनाग की शैया पर विराजमान होते है। धार्मिक परंपरा में नागों के विशेष महत्व के दर्शावत है।
0: बिल्कुल सही कहा। और धार्मिक महत्व गुंजा ये है कि नाग पंचमी हमें श्रद्धा और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश देता है। और मान्यता यह है कि नाग देवता का पूजा करे से परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहता है और जीवन में आवे वाली सभी बाधाएं दूर होती। ये दिन भगवान शिव का पूजा और जलाभिषेक करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है।
1: और देखा उसके साथ साथ बहनी सावन का महीना स्वयं भगवान शिव जी के आराधना और प्रकृति की हरियाली से जुड़ा
0: जी,
1: है।
0: जी, जी, जी।
1: ऐसे में नागपंचमी का पर्व ई बात का याद दिलावत है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध बहुत ही गहरा है।
0: बहुत ही गहरा है। और नागपंचमी का एक पक्ष यहू है गुंजा बहनी कि ई हमें जीव जंतुओं के प्रति दया और सह अस्तित्व का भावना सिखावत है।
1: अच्छा।
0: सांप हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेतों में चूहा तथा अन्य जौन जीव होते हैं छोटे मोटे उनकी संख्या के नियंत्रित करे में उनका जौन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है।
1: और साथ ही साथ देखा बहनी नागपंचमी हमें सिखावत है कि संसार में कौनो भी जीव व्यर्थ नहीं है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: प्रकृति के हर प्राणी का अपन अपन महत्व है और सभी जीव मिलके पृथ्वी के संतुलन का बनाए रखते हैं।
0: तो हम सभी प्रकृति के सम्मान करी, जीवों से प्रेम करी,
1: बिल्कुल
0: आस्था के करुणा से जोड़ी और धरती के सुरक्षित रखी।
1: बिल्कुल। काहे के मतलब है कि बहनी अगर हम अपने धरती पे प्रकृति की चीजें से अगर हमका विरासत से कुछ भी मिलाता है तो आपसी प्रेम सद्भावना बनाए के रखा है।
0: बिल्कुल। तो देखा बातचीत हो गई और बातचीत होते रही।
1: बिल्कुल बहनी।
0: तो हम सोचा थे कि कसना जौन बाटे संगीता राय बहनी से खे कजरी सुन लिया जाए।
1: चला सुन ली जाए बहनी, हरे भी सुने।

0: जमुना बनी देखा कितनी नीक के गौ नहीं रही, घिर घिर आई न बदरिया।
1: हाँ, घिर घिर आवे सावन की बदरिया ना।
0: हाँ
1: देखा कजरी सावन में और कजरी ऐसा हो ही नहीं सका।
0: बिल्कुल
1: हाँ?

0: देखा कजरी सुना तो एकदम इतना मन मन खुश हो गया था गुंजा कि पूछा ना। तो देखा गुंजा अभी हम सब जोन बात करत रहे अभी 15 अगस्त के बारे में बात करत रहे ना
1: बिल्कुल।
0: तो आज देखा यही से संबंधित एक थे अपने कार्यक्रम में बातचीत है कि स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायक और नायिकाएं और जिमें जानकारी देत बाटी डॉक्टर निहारिका तिवारी और उनसे बात के हैं नेहा गुप्ता जी। तो चला सुन लिया जाए,
1: चला सुन ली जाए।
2: श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो रहे हैं और इस आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, इस देश को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। उन सारे नायकों को, नायिकाओं को, वीरांगनाओं को, वीरों को जब हम देखते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है ना कि अरे हमारी जो नायक नायिका, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारी रगों में भी उन्हीं का खून है। तो सिर्फ बात उनके लहू होने से नहीं होती, हम उन्हें महसूस करें और ये जाने कि आखिर क्या वजह रही होगी कि उन्होंने ये बात सोची होगी कि नहीं हमारे देश पर शासन जो है हमारे लोगों का होना चाहिए। कुछ तो ऐसा रहा होगा जो बात उनके दिमाग में ये घर कर गई होगी और उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो चलिए आज इसी बात को जानेंगे और उन भूले बिसरे नायकों पर भी बात करेंगे, नायिकाओं पर भी बात करेंगे जिन्होंने बिल्कुल शांत होकर योगदान दिया है। और जब हम उनको याद करते हैं, देखते हैं, जानते हैं तो फिर रोंगटे सिहर उठते हैं। तो खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निहारिका तिवारी। आपने भूले भिजरे नायकों पर किताब भी लिखी है, बहुत सारी जगहों पर आपकी किताब पढ़ाई जाती है। हम बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद।
2: निहारिका जी, जरा याद करें जब मुगल सल्तनत जब बिल्कुल पतन पर था और अंग्रेज 15वीं-16वीं शताब्दी में आए थे और शायद एक कोने से उन्होंने शुरू किया था और पूरे देश पर कब्जा सा जम गया और अंत में फिर लोगों को एहसास होता है कि ये क्या हो गया।
3: देखिए इस पर मैं ये कहना चाहूंगी नेहा जी कि हम जो भारतीय हैं
2: जी,
3: हमारी एक परंपरा रही है कि हम अतिथि को देव मानते हैं। तो
2: जी,
3: ये जो हमारी परंपरा रही इसी परंपरा हमारी जो महानता थी उसका दुरुपयोग किया अंग्रेजों ने और वो हमारे यहाँ कैसे आए, व्यापार करने के लिए आए
2: जी।
3: लेकिन वो व्यापार व्यापार नहीं रहा, मंशा कुछ और थी उनकी। मंशा थी कि हमें कैसे यहाँ पर शासन करना है, कैसे यहाँ हमें भारत को उपनिवेश बनाना है
2: जी,
3: क्योंकि पूरे दुनिया में उस समय वो वही काम कर रहे थे।
2: और हमें भनक तक नहीं लगी इस बात की?
3: हमें भनक इसलिए नहीं लगी क्योंकि हम इस तरह से सोचते नहीं थे, पहली बात है।
2: ओ हाँ,
3: क्योंकि हमारी जो सोच थी, हम तो वसुधैव कुटुम्बकम वाले हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। अब अगर कोई हमारे सामने जिस बात को कहता है और उसके मन में कुछ और है, जहन में कुछ और है, तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं जब हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं है
2: जी। तो जब ये बात हमारे वीरों को, हमारे जो लेखकों को और जिनके सीने में आग जलने लगी थी उनको पता चली, तो आखिर उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, क्या तरीके अपनाए थे इन्होंने?
3: देखिए हम स्वागत करते हैं लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम कमजोर हैं या अपने देश से हम प्यार नहीं करते हैं। और जब इसका एहसास हुआ तो ये हम जरूर कहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई
2: जी,
3: लेकिन उस क्रांति के पीछे भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा है
2: जी।
3: यदि हम इतिहास में जाकर इतिहास की किताबों को पढ़ें तो हम पाएंगे, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, कि अलग अलग जनजातीय समूहों ने विरोध किया, जिसमें नाम बिरसा मुंडा का आता है, महिलाओं ने विरोध किया
2: जी,
3: अन्य किसानों ने विरोध किया
2: जी।
3: तो ये विरोध के जो स्वर थे वो उठने लग गए थे और वो स्वर इसलिए उठने लग गए थे क्योंकि हमें उनका जो एक गुलामी वाला दृष्टिकोण था कि हमें इस देश के लोगों को गुलाम बनाना है, हमारी संस्कृति के बारे में हमें कहना है कि ये सपेरे और नगीनों का देश है, लेकिन हम उन्हें कैसे पता कि हम ऐसे हैं जो हम प्रकृति प्रेमी हैं और इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं।
2: आपने कहा कि बिरसा मुंडा जी विरोध कर रहे थे अपने लोगों के साथ, झारखंड की वो जगह थी और बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, सहजानंद सरस्वती थे, अवध रीजन की बात है, श्रद्धानंद सरस्वती जी भी थे और भी लोग, जिन्होंने योगदान दिया है और आप उनको गहरे तौर पर जानती हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे सुधीर श्रोता

0: उनके साथ उन सभी के नाम और उनके योगदान
1: जी
0: उसको चर्चा
1: बिल्कुल
0: करें।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: देखिए, जब हम इतिहास को लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं।
0: जी
1: लिखने वालों की भी अपनी सीमाएं होती हैं।
0: जी
1: लिखने वालों की अपनी पसंद होती है, हमारी आपकी भी कोई पसंद होगी। तो बहुत से नेता ऐसे होते हैं, नेतृत्व तो ऐसे होते हैं जिन्होंने भी त्याग बलिदान किया है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, प्रमुखता से दर्ज हो जाते हैं।
0: जी
1: लेकिन जैसे कि हम एक बिल्डिंग देखते हैं, बहुत सुंदर होती है, टाइल्स लगे होते हैं, लेकिन नींव भी होती है। नींव कमजोर होती तो ये बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं होती।
0: जी
1: अगर हम उन नींव की बात करें तो कुछ नाम, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है तो मैं बात करना चाहूंगी, जिसमें नाम आता है नागालैंड क्षेत्र की रानी गैडेल्यू का।
0: ये नॉर्थ ईस्ट की बात करें जो सेवन सिस्टर्स हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: रानी गैडेल्यू एक आध्यात्मिक और राजनीतिक, मैं कहूंगी कि बालिका थी। बालिका इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि जब उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया तो उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की आयु में रानी गैडेल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला।
0: उनको हम रानी क्या उस समय किसी प्रदेश या राज्य रजवाड़ी
1: नहीं,
0: जी
1: वो वैसी रानी नहीं थी जो हम जनरली इतिहास में पढ़ते आते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: उनको रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जहाँ से जुड़ी थी, जिस क्षेत्र से जुड़ी थी, वहां पर उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया।
0: वो तो लोगों ने प्यार से उन्हें रानी गैडेल्यू कहा।
1: हाँ
0: जी,
1: लोगों ने उन्हें कहा। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद उन्हें 14 सालों तक जेल में रहना पड़ा।
0: 13-14 की थी,
1: 13 की उम्र पर उन्होंने विरोध प्रारंभ किया और 14 वर्ष तक जेल में रही, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए
0: लगभग मतलब 28-29 साल वो का सफर था। हाँ, जो वो बाहर आई
1: और उसके बाद भी पूरा जीवन उन्होंने
0: देश को,
1: हाँ, देश लोगों को समर्पित, लोगों को समर्पित कर दिया। और मुझे लगता है कि हाल ही में हमने उनके ऊपर लिखना पढ़ना शुरू किया है।
0: जी
1: खासकर हमारी भारत सरकार ने भी एक मुहिम चला रखी है। अगर आप जाएंगे amritkal.nic.in पर तो आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे ऐसे बलिदान करने वाले वीर और वीरांगनाएं हैं जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, तो उन्हें देने का प्रयास सरकार ने प्रारंभ किया है और अब इन पर कार्य शुरू हुआ। यहीं पर मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगी, तिरोत सिंह का। वो भी खासी जनजाति से,
0: खासी जनजाति,
1: हाँ, गारो खासी जयंतिया,
0: गारो खासी जयंतिया।
1: जी, हाँ।
0: जी जी।
1: तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत, जिसके पास बहुत अच्छे लड़ने के हथियार थे, जिनका एक दूसरे से जुड़ने का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, उनसे गुरिल्ला युद्ध लड़ा तिरोत सिंह।
0: तिरोत सिंह,
1: हाँ, गुरिल्ला युद्ध लड़ा और वो भी अपनी तीर कमान से लड़े। वो तो आप सोचिए कि इस तरह से जिनको किसी भी चीज का ट्रेनिंग नहीं था, उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार नहीं थे, लेकिन एक चीज था, देश के लिए मर मिटने की चाहत और जज्बा।
0: डॉक्टर निहारिका, बात ये आती है कि लोग उस समय भी या अभी कहते हैं कि भाई जो महिलाएं रही हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत महती भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी उस समय वो स्थिति नहीं थी, और ऐसी स्थिति में जो महिलाओं ने किया तो क्या उनके पास वो विजन था कि नहीं वो लोगों को अवेक कर सकें, उनको प्रेरित कर सकें और एक दिशा दे सकें। तो जो रानी गैडेल्यू थी, वो जो नागालैंड मणिपुर वाला पूरा इलाका है, तो क्या अभी भी उनके स्टैचूज लगे हैं, लोग उन पर बात करना पसंद करते हैं, उनको जानते हैं, ऐसा है?
1: जी बिल्कुल जानते हैं। और हमारा जो प्रयास है, हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों का, सरकार का, खासकर आपका भी उसमें प्रयास काबिले तारीफ रहेगा क्योंकि आप वार्ता में शामिल कर रही हैं, तो उन पे अध्ययन प्रारंभ हुए हैं और अध्ययन के माध्यम से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरीके से नेतृत्व प्रदान किया। आज हर समय हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की।
0: जी
1: आज के जो बच्चे हैं या हम सभी हैं, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य क्या है, भारतीय परिवेश में कैसे हो सकता है, पाश्चात्य देशों से हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वो एक समय था जब कोई ऐसा साहित्य नहीं हुआ करता था जिसको पढ़ के लोग प्रेरणा लेते, वो प्रेरणा स्वयं की थी जो भीतर से आती थी। और यहीं पर मैं और नाम लेना चाहूंगी आपके समक्ष, जिसमें मातंगिनी हाजरा का नाम आता है, उदा देवी का नाम आता है।
0: अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा विस्तार से अगर बताएं उनका स्थान कहाँ रहा है और किस क्षेत्र में।
1: जी उदा देवी तो हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं।
0: जी
1: और हाल ही में आपने देखा कि उनके सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक छुट्टी भी देने का किया कि लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसी तरीके

0: जैसे आप देखेंगे कि महावीरी देवी थी, वो मुजफ्फरनगर से थी, झलकारी बाई बुंदेलखंड से, नाम आपने सुना होगा,
1: बहुत
0: और
1: बहुत
0: रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो उनकी दो सहेलियां थीं, तो उनका भी अध्ययन किया जा रहा है, हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इसी तरीके से सिक्किम में एक गांधी पोखरेल, जिन्होंने सिक्किम में स्वदेशी की मुहिम चलाई थी, हम सभी महात्मा गांधी को जानते हैं, पूरा विश्व उनके योगदान को मानता है, हम सभी मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ गांधी पोखरेल जिन्होंने स्वदेशी की मुहिम चलाई, तो ऐसे जो हमारे नायक हैं, नायिकाएं हैं, जिन्होंने देश के लिए बिना ये सोचे त्याग बलिदान किया कि उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। हम सभी चित्तगोंग केस को जानते हैं,
1: जी
0: लेकिन उससे जुड़ी हुई प्रीति लता और कल्पना जी,
1: हाँ
0: तो महिलाओं
1: हम
0: का योगदान बहुत रहा है नेहा जी इसमें।
1: जी जी इतिहास की किताबों में और कई बार क्लासरूम में और नुक्कड़ नाटक में
0: जी
1: कई बार इन नायक नायिकाओं का जिक्र होता है।
0: जी
1: निहारिका जी, बात ये आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है, हम 15 अगस्त मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे, हम श्रद्धा रखते हैं अपने वीरों के प्रति, वीरांगनाओं के प्रति, लेकिन गहरे तौर पर क्यों जानना हम सभी को बहुत ज़रूरी है उनके बारे में।
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं, नायिकाएं हैं, उनका नाम जान लेना, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना,
1: जी
0: या किसी तिथि विशेष पर जयंती मनाना
1: हाँ
0: अलग बात है, और उनके जो मूल्य थे जीवन के, उनको जीवन में उतारना और उसको उतार करके और देश के लिए फिर उसी तरीके से कार्य करना, ये जरा मुश्किल काम होता है। तो शुरुआत तो हमें यहीं से करनी पड़ेगी कि पहले हम जाने तो कि उन्होंने किया क्या है, और उसके लिए इन पर्वों की आवश्यकता है। इसमें मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके साथ साथ और आगे हमें जाने की ज़रूरत है। ज़रूरत कैसी है? आज के
1: जी
0: समय में हमारे समाज में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। एक समय था जब हम अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे और हमें पता था कि हमारा दुश्मन ये है, इनको देश से बाहर निकालना है,
1: जी
0: लेकिन आज हम जिन चीज़ों से लड़ रहे हैं वो क्या है? हमारे खुद के भीतर की कमजोरी पहला,
1: जी
0: कि
1: और वो
0: अंदर से हम
1: मूल्य
0: मूल्य हमारे जो कहीं ना कहीं क्षति हो रही है जिनमें,
1: जी
0: उनको समझने की आवश्यकता है। स्वार्थ की बढ़ती प्रमुखता, आप सोचिए जरा कि अगर इन लोगों ने ये सोचा होता कि हमें क्या फायदा होगा,
1: हाँ, वो इतने
0: आप
1: दिनों
0: सोचिए।
1: तक उन्होंने व्रत रखा, भूखे रहे
0: भूखे
1: और
0: रहे,
1: लहू दिया है इस देश को, परिवार की चिंता नहीं की।
0: परिवार की चिंता नहीं की, संपत्ति की चिंता नहीं की, पद की चिंता नहीं की, और
1: जी
0: उन्हें सिर्फ और सिर्फ देश की चिंता थी। तो यदि हम एक मुद्दा देखें कि भ्रष्टाचार, यदि प्रत्येक व्यक्ति ये समझ ले कि देश के लिए हमें कार्य करना है, तो शायद उन्हें विदेशी हुकूमत से लड़ना था, हमें अपने भीतर की लालच से लड़ना है,
1: जी
0: हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है, समाज में असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए हम जहां भी बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि हम एक छोटे से स्कूल में छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं, हम शिक्षक भी नहीं हैं, उससे भी छोटी भूमिका हमारे पास है, तो उसमें हमारी ईमानदारी कितनी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि
1: जी
0: इन सभी के बारे में जानना पढ़ना, सरकार को स्वयं प्रदर्शनियां लगानी चाहिए, शिक्षा
1: जी
0: के माध्यम से कराना चाहिए,
1: जी
0: और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं जिसमें बच्चे बैठ करके उस पर मंत्रणा करें, चर्चा करें।
1: बिल्कुल, शायद जब हम चर्चा करते होंगे, उनको जानते होंगे, उनके गुणों को देखते होंगे, तो उसका असर भी महसूस होता
0: बिल्कुल
1: होगा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बच्चों पर, जो बच्चे अब
0: बिल्कुल
1: पढ़ रहे हैं और वो आगे चलकर इस समाज और देश का निर्माण करेंगे। अच्छा, एक बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है डॉक्टर निहारिका, कि हमारा देश जो 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय तो शायद ये राज्य जो हैं उनका रूप भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब हम देखते हैं तो दुर्गा भाभी थी, वो बंगाल और पूरा पंजाब वाला इलाका था उनका, रानी गैदेलियू थी जो नॉर्थ ईस्ट वाला
0: नॉर्थ
1: इलाका था,
0: ईस्ट
1: उधा सिंह जी हैं, ये भाषाएं एक नहीं थी, खान पान एक नहीं था, परिधान एक जैसा नहीं था, फिर भी कैसे ये लोग एक हुए और उन्होंने एक आग लगा दी, या मैं कहूँगी कि सनसनी ऐसी कि अंग्रेजों का जो तख्त था वो हिल गया।
0: नेहा जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, और मुझे लगता है कि आप इससे सहमत होंगी,
1: जी
0: कि

0: विशेष प्रेम के लिए भाषा का एक होना आवश्यक नहीं है, भावनाओं का एक होना आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारी आपकी भावनाएं जुड़ी हैं तो भाषा तो सांकेतिक भी होगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य एक था उस समय, हमारी भावना एक थी कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है, हमें अपने लोगों से शासित होना है, हमें किसी विदेशी ताकत से शासित नहीं होना है, और हम कम खाएंगे, हम खेती करके आगे बढ़ेंगे, हम चरखा चला करके आगे बढ़ेंगे, हम मशीन नहीं लाएंगे अभी, लेकिन सबसे पहले हम अपने आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। और आत्मा की आवाज़ की जब हम बात करते हैं तो हम सभी मनुष्य हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारी मनुष्यता, जो मनुष्य होने के नाते हमें बेहतर बनाता है वो क्या है, वो है हमारे अंदर त्याग की भावना।
1: जी,
0: और वो त्याग की भावना जब थी उन लोगों के बीच, तभी वो अपने अपने क्षेत्र में इस आग को जलाए रखे, और जिसकी वजह से आज हम लोग इतने स्वतंत्र होकर आज वार्ता कर पा रहे हैं। नेहा जी,
1: नेहा जी, एक और बात, जब विश्व पटल पर तमाम देशों को देखती हूँ जो उसी समय आज़ाद हो रहे थे, 1950 का वो दशक था, 60 का और 40 वाला दशक था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, अपने देश को जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी खास बात रही जिस वजह से हमारा देश बहुत मजबूती के साथ अपने संप्रभुत्व को महसूस करता रहा है, तो वो खास बात क्या रही है जब बाकी के देश थोड़े लड़खड़ाए भी
0: आजाद होने के बाद खड़े नहीं हो पाए? आप पड़ोसी देश को देख लीजिए, उनकी
1: जी,
0: क्या हालत है
1: जी।
0: मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में सबसे जो अच्छी बात रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और वर्तमान समय में माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक की अगर हम बात करें, तो राजनीतिक मतभेद रहा है राजनीतिक दलों के बीच में, लेकिन देश को लेकर के कोई भेद नहीं रहा है। और ये नेतृत्व जो हमें मिलती रही है
1: जी,
0: अलग अलग दलों से निकले हुए नेताओं के माध्यम से, उन्होंने देश को प्रथम रखा। हो सकता है मैं एक राजनीतिक दल को पसंद करूं, हो सकता है आप दूसरे को नापसंद करें
1: जी,
0: लेकिन मैंने देखा कि ये एक चीज जो पूरे समाज को जोड़ करके रखी है, नेतृत्व तो वहां पर ठीक नहीं चल पाया
1: जी,
0: और जिसकी वजह से आज क्या स्थिति है ये हम सभी देख रहे हैं।
1: अच्छा, वो बात जो आपने उस समय कही कि जब 1857 की क्रांति हुई, वो एक जो भावना थी कि अलग अलग रंग थे, वेशभूषाएं थी, भाषाएं थी, लेकिन भावना एक थी, और आज भी वो बात उसी तरह से जिंदा है।
0: जी बिल्कुल,
1: और ये जो बात, वो भाव जिंदा है, तो शायद हमारा देश
0: बिल्कुल
1: जिंदा रहेगा।
0: आप अभी देखिए, हाल ही में मुझे याद आ रहा है पुलवामा का केस था शायद, यदि मुझे ठीक से याद है तो, उस समय सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा हम एक साथ होकर लेंगे।
1: हाँ।
0: जब देश की बात आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं, और समाज में भी आप देखेंगी तो ये हमारी हकीकत है कि हम जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बटे हुए हैं, ये हकीकत है। लेकिन उस हकीकत के ऊपर भी उठ करके एक और बड़ी हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि इस विविधता में भी एक एकता है, वो एकता है जो हम सभी को भारत का नागरिक बनाती है।
1: ऐसी कोई घटना जो आपके हृदय के बहुत करीब रही है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, जिसको आप जब पढ़ती हैं, देखती हैं, समझती हैं, तो आप और गहरे तौर पर जुड़ जाती हैं कि नहीं, स्वतंत्रता के मायने समझना बहुत ज़रूरी है, और इसकी अलख को, इसकी रोशनी को, इस बटन को आगे की पीढ़ी तक भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ देखिए, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं संक्षेप में कहना चाहूँगी कि जैसे हम एक विकासशील देश हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी होती है, और तब मुझे याद आती हैं रानी लक्ष्मीबाई मुझे याद आती हैं, जिनके पास वाकई अंग्रेजों की तुलना में संसाधन कम थे, सैनिक कम थे, लेकिन अगर आपको मैं संक्षेप में कहूँगी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
1: खूब लड़ी मर्दानी वो तो
0: झांसी वाली
1: रानी थी।
0: बहुत सारे ऐसे हैं, मैं किसका नाम लूं।
1: बहुत अच्छा लगा है डॉक्टर निहारिका आपसे बात करके, और ये जो कारवां भूले बिसरे नायकों पर हमने आज शुरू किया था, और लग रहा है कि अभी और जानना है आपसे, लेकिन समय भी कहता है कि हमें इस बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद
1: कि आप स्टूडियो में आई,
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: गुंजा,
1: हाँ बहनी,
2: देख डॉक्टर निहारिका तिवारी और नेहा गुप्ता जी कितना मैंने नेक से बातचीत की है ना, कितना मैंने फरियाद की बताई।
1: बिल्कुल,
2: तो अब चला यही बात पे, तो है गंगा जमुना का फिल्म का ये गाना सुना हुआ थी लता मंगेशकर जी की आवाज में, तो वो सुना बहनी।

0: हाँ गुंजा, देखा गौनाई सुन लिया गया
1: मुला, देखा कितनी नीक की गौनाई रही बहनी। आप तू बताओ रसोईया से काल आए बाटू।
0: हम ले आए हैं आज अरबी के पत्ते के पकौड़े। तो सुना कैसे हम देखा सामान का लगा था काम।
1: हाँ बहनी बतावा।
0: तो देखा जैसे 8 से 10 अरबी का मैंने पत्ता ले लिया।
1: हाँ।
0: 1 कप बेसन, 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा,
1: अच्छा
0: 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग, नमक स्वादानुसार जैसे लोग खाते हैं, और थोड़ा सा नींबू का रस, पानी और तले के लिए तेल। तो सबसे पहले देखा अरबी के पत्ते के अच्छी तरह से धो के ओकर पानी सुखा ले, और मोटी नस ओकर जोन रहा था मोटा डंडा हल्का सा काट ले। फिर चावल और बेसन का आटा और जितना मसाला तुम्हें बता रहा
1: हाँ।
0: और नींबू का रस और नमक मिला के पानी का जोन बा गाढ़ा घोल जोन बा तैयार कर ले। अब एक पत्ते पर बेसन का मसाला अच्छी तरह से
1: लगाए,
0: बाद ओकरे ऊपर दूसरा पत्ता कह के फिर ऐसे लेप लगाओ, ऐसे कह के जोन बा 4-5 पत्ता का परत बना ले। अब पत्ते के कस के रोल करा और ओके जोन बाटे पानी कढ़ाई में रख दो, ओकर ऊपर कोनो जोन बा जाली वाला बर्तन रख के ओकर ऊपर जोन बा रख के ओके रोल के 20 से 25 मिनट तक पकावा,
1: ढक के खूब अच्छे से भपाए ले बनी।
0: हाँ, एकरे बाद ठंडा होए पर गुंजा रोल के गोल गोल टुकड़ा में काट ले। अब इन्हें गरम तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा हुए तक ओके तली ले,
1: काहे से स्वाद के देखा बनी धीमा जैसे पकी तो कुल अंदर तक,
0: और स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डाल के गरम गरम परोसा। हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ ही पकौड़ा खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगत है, खुद का और परिवार के खिया हुआ देखा। लेकिन एकरे साथे साथे हम कहत रहे

0: कि कसना बहनी अरन के आप संदेश भी सुना
1: बिल्कुल
0: लीजिए।
1: बहनी,
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी के खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
0: देखा सबके, हम सबके इंतजार रहे, घड़ी देखा इशारा करा था, तो चलो बहनी हरन से विदा लेन जाए।
1: राम राम, राम, राम बहनी हरे।

0: Entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi, taxi drivers of Bharat Taxi, urban sanitation workers under Swachh Bharat Mission, and youth innovators under National Innovation Programs. With Anand and Dipendh, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment. He noted that the nation is moving forward with great zeal and new resolutions.
2: Azadi ke baad 15 August, Lal Kile par pehli baar Vande Mataram goonj raha hai. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly 4-fold and digital transactions 100 times.
2: Har saal ausatan 15 guna zyada tezi se humne nal se jal connection diye. Har saal ausatan 6 guni zyada raftaar se logon ko gas connection diye. Har saal 4 guni raftaar se गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said, government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying the modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Mr. Modi added that agreements are being signed with several countries and nations around the world are increasingly placing their trust in India. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation around the world has turned towards managing and safeguarding its own interests, but unfortunately, during this period of crisis, some nations have played the game of weaponizing resources to flaunt their dominance, be it petrol, diesel and fertilizers.
2: Duniya apne paas jo kuch bhi hai उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपन

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के

0: क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुन्दर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर

0: जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास

0: फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया की उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

आवाज जो देश को जोड़ती है। जी हाँ, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत। लोकगीत कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए कल्पनाथ और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। लीजिए अब सुनिए जगदीश यादव और साथियों के स्वर में ये खेमटा।
1: रानी रोवे नयन सुहा बहाई

0: और इस खेमटा के बाद लीजिए सुनिए संगमलाल यादव और साथियों के स्वर में ये निर्गुण।
1: पालात पिंजरे के सुगनावा

संगमलाल यादव और साथियों के गाइस चौलर के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं, ये सभा समाप्त होती है। हमारे कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स के साथ साथ प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है धरती के गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं अनिता नाथ। इनके स्वर में कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस देवी गीत के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं धरती के गीत कार्यक्रम और हमारी कलाकार हैं अनिता नाथ। देवी गीत के बाद इनके स्वर में आइए सुनते हैं ये झूमर।

श्रोताओं, इस वक्त आप धरती के गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमारी कलाकार हैं अनीता नाथ। झूमर के बाद प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में अब प्रस्तुत है ये पूर्वी।

इस पूर्वी के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम में अनीता नाथ द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके अलावा न्यूज

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:15 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
5: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए यूपी 112 की अच्छी सेवाएं।
4: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
6: यूपी 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल यूपी 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों आज का दिन ना सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है बल्कि उस संघर्ष त्याग और संकल्प की याद है जिसने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया।
1: जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की और आप सुन रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त यानी अभिषेक।
0: और मैं हूँ आपके दोस्त ज्योति। दोस्तों 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की। लेकिन आज़ादी केवल एक तारीख नहीं बल्कि लाखों देशवासियों के सपनों और बलिदानों की विरासत है और साथ ही भारत का एक टुकड़ा इससे अलग होकर पाकिस्तान के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया।
1: साथियों ये सब इतना आसान भी नहीं था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने तरीके से संघर्ष को मजबूत किया और अपने जीवन का बलिदान भी दिया।
0: और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ कुछ महान नेताओं की कहानी नहीं है। इनमें किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और आम नागरिक हर वर्ग के लोगों ने अपनी अलग भूमिका निभाई थी।
1: तो साथियों इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सिर्फ आज़ादी का उत्सव ना मनाएं बल्कि उसे मजबूत करने का संकल्प भी लें और ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां हर युवा सपने देख सके, उन्हें पूरा करने के अवसर पा सके और अपने देश की प्रगति में योगदान भी दे सके।
0: क्योंकि आज़ादी हमें विरासत में मिली है लेकिन इसे सुरक्षित और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है।

0: दोस्तों आइए सुनते हैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खास बातचीत विरासत की आजादी युवाओं की जिम्मेदारी कर्नल अबरार अहमद से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जो हमारे दिलो दिमाग में एक एनर्जी भर देता है, ऊर्जा भर देता है। हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं, ये जो आजादी हमको मिली ये कितनी मुश्किलों के बाद मिली, इसके पीछे कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, कितने लोगों ने अपने परिवार को पीछे छोड़ करके देश को आगे रखा कि नहीं पहले देश की आजादी जरूरी है। आज हम बात करेंगे युवाओं से, अपने दोस्तों से। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि एक तरह से कहा जाए कि वो हमारी मजबूरी भी है आज के दौर को देखते हुए। हम किस तरह से अपने देश का, अपने देश से जुड़ी हुई भावनाओं का, अपने देश के प्रतीकों का सम्मान कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। आज का विषय है विरासत की आजादी और युवाओं की जिम्मेदारी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल अबरार अहमद, जो कि लंबे समय तक भारतीय सेना के साथ जुड़े रहे हैं और एक फौजी कभी भी रिटायर नहीं होता। कर्नल अबरार अहमद, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ये जो विषय हमने लिया है विरासत की आजादी और युवाओं की जिम्मेदारी, क्या यह विषय ठीक है?
2: आजकल के वातावरण में जो माहौल चल रहा है, चाहे देश में हो, विश्व में हो, मेरे लिहाज से तो विषय बिल्कुल सही है आज के दिनों को देख के।
1: आजादी क्या है, ये केवल हमें एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मिली है या एक ऐसी विरासत है जिसको प्रिजर्व करना, जिसकी रक्षा करना वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको क्या लगता है?
2: एब्सोल्युटली, मेरे विचार से आजादी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य विरासत है। इसे प्राप्त करने के लिए असंख्य लोगों ने त्याग बलिदान दिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, खास करके आजकल के युवाओं की, कि हम इसकी रक्षा केवल हमारी तरह सीमाओं पर ही ना करें बल्कि अपने लोकतांत्रिक मूल्य, संविधान, सामाजिक एकता और देश की प्रगति के माध्यम से भी करें।
1: मगर युवा तो रील बना रहा है।
2: अब अगर युवा रील बना रहा है तो उसको समझाना, उस तक ये जिम्मेदारियों को उसका एहसास दिलाना, ये जिम्मेदारी समाज की होती है।
1: स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जो 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल इस उम्र के थे। ये वो उम्र होती है जब ठीक तरह से हम अपनी सोच भी विकसित नहीं कर पाते, हमको ये तक नहीं पता होता कि हमारी हॉबी क्या है। ऐसे समय में कुछ एक ऐसे युवा फांसी पर चढ़ गए और

0: ऑफ द बॉक्स जाकर के उन्होंने अपने देश के लिए काम किया, परिवार को पीछे रख करके। आपको क्या लगता है कि ऐसे युवाओं से हम, हमारे आजकल के जो युवा हैं, जो दोस्त हैं हमारे, युवा साथी हैं, किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं, क्या उनको लेनी चाहिए?
1: मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, प्रेरणा तो लेनी चाहिए, लेकिन आज के जो युवा हैं उनके आगे जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी भिन्न हैं। अब जैसे कि आजकल का समाज देखिए, आप आजकल का वातावरण देखिए, द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, स्पीड ऑफ लाइफ देखिए, इसमें जो युवा हैं उनको ये मौका नहीं मिलता, ये समय नहीं मिलता वो इस चीज़ का एहसास कर सकें।
0: आपको क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो बलिदान है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, उसको पर्याप्त रूप से समझती है?
1: देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है और जो मैंने आजकल मीडिया के माध्यम से, चाहे रिटन और टेले हो, जो देखा है, जो लोगों से बातचीत की है, एहसास तो है उनको, इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अब ये भावना उनके अंदर जागृत होनी चाहिए ताकि शिक्षा, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, खेल, विज्ञान, इन सब के माध्यम से जो युवा हैं वो इस आज़ादी के धरोहर को संभाल सकें और उनसे प्रेरित हो सके।
0: हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें कौन सी परंपराएं या कौन से मूल्य जो आप पाते हैं कि आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं और प्रासंगिक हैं?
1: जी एब्सोल्युटली, जो सबसे ऑब्वियस चीज है वो है बलिदान, त्याग, सैक्रिफाइस। वो आज के युवा को सर्वोच्च रखना ही पड़ेगा, जो कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल एम्बिशन से ऊपर रहे। उसके अलावा अनुशासन, डिसिप्लिन, विच इज वेरी मैंडेटरी। उसके अलावा करेज, और करेज के साथ साथ एकता, एकता का स्रोत उन्हें इम्बाइब करना ही पड़ेगा।
0: कोई क्यों बलिदान दे? बलिदान एक स्वेच्छा का विषय है, उसके लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, कोई क्यों बलिदान दे?
1: देखिए, जहां तक बलिदान का तात्पर्य है, वो जब आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने 21 साल, 19 साल, 20 साल, 23 साल की उम्र में बलिदान दिया, जिन्होंने मर्सी पिटिशंस या प्लीज कहीं नहीं दिए, तो अगर जब आप वो इम्बाइब करेंगे तो नेचुरली,
0: क्या बलिदान का मतलब केवल जान दे देना ही है?
1: बलिदान के बहुत पहलू होते हैं, अपने आप को डिप्राइव करना, अपनी वेल्थ शेयर करना, कम्युनिटी में भाग लेना।
0: आज का जो दौर है, हमारे हाथ में एक डिवाइस है, उसको कहते हैं मोबाइल। सोशल मीडिया के इस दौर में युवाओं के पास आंदोलन खड़ा करने और उसको आगे बढ़ाने और उससे बहुत सारी बदलाव करने की भी क्षमता है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारी भी लेकर के आता है युवाओं के लिए?
1: जी, मैं इसका तो बहुत कायल हूँ, और ये जिम्मेदारी युवाओं की नहीं, पूरे समाज की है कि आप सोशल मीडिया पोस्ट को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझें। आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको वेट कर सकें, अच्छा और बुरा का उसमें परख कर सकें। वो आएगा शिक्षा और ज्ञान से, उसके बाद फॉरवर्ड वही करें, आगे वही बढ़ाएं, शेयर वही करें जो आपके हिसाब से सही हो,
0: और ऐसा करके आप अफवाहों को भी फैलने से रोक सकते
1: Absolutely.
0: हैं। लेकिन यहाँ पर एक, जिस मॉरेलिटी की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक ऐसा समय था जब जो लिखता था उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था कहीं पर छपने के लिए, जो बोलता था उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था बोलने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म भी दिया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई युवा इतने समय के बाद, एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, अपने आप को रोकेगा वहां पर कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है?
1: नहीं, आपसे मैं एक तरह से सहमत हूँ, क्योंकि एक टूल है और वो टूल हर इंसान को आराम से मुहैया हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, जो युवाओं में आनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से युवाओं में है, इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्रेशन। शायद वो इस तरीके से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, विच इज गुड एज पर आर स्टैंडर्ड्स, या जो एक एवरेज स्टैंडर्ड्स में सही हो। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि भाई उसके पास एक टूल है, वो अपने आप को व्यक्त करे, ऑब्वियसली व्यक्त करे, उसका सही और बुरा तो उसकी शिक्षा से ही कंट्रोल होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो जो शिक्षित युवा है, जिसके अंदर त्याग की भावना है, जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑब्वियसली सही चीज आगे भेजे।
0: क्या जो हमारे देश का संविधान है, जो लोकतांत्रिक मूल है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उनकी जानकारी युवाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना वो जागरूक अपने अधिकारों के बारे में होते हैं?
1: देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दोनों हैं। तो इंसान अमूमन आजकल क्या करता है, मे बी आजकल का तो सोशल एनवायरनमेंट है, तो इंसान जो फंडामेंटल आपकी राइट्स होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल भूल जाता है। सो जिम्मेदारी जो है वो पहले मूल रूप से ऊपर होनी चाहिए, राइट्स तो अपने आप से मिल ही जाएंगे।
0: फौज ऐसा क्या सिखा देती है जो एक फौजी को इवन रिटायरमेंट के बाद भी सिविलियंस, जिनको हम सिविलियंस

0: कहते हैं, आम आदमी कहते हैं, उनसे अलग रखती है, अलग करती है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो फौज के लोग होते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, वो एक तरह से कंपेरेटिवली व्यवस्थित रहते हैं, थोड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो ये क्या डिसिप्लिन है या कुछ और है?
1: देखिए, एज एन इंस्टीट्यूशन फौज एक बहुत बड़ी और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है। आप जब इंटेक लेते हैं फौज में, या तो 17 साल, 18 साल, या 20 साल, 21 साल, या 22 साल का बच्चा जाता है, वही बच्चा जो आज पढ़ाई भी कर रहा है, वही बच्चा जो समाज में भी एजिटेशन भी कर रहा है, अपनी आवाज़ें भी रख रहा है, तो वो पूरी तरीके से समाज में गढ़ित, यानी ही टोटली, जिसे कहा जाए कि उस पर समाज की छाप होती है। लेकिन जैसे ही वो फौज में जाता है, कोई भी आर्म फोर्स में जाता है, वहाँ का जो एक रहने का तरीका, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो उसे बदल देता है। उसमें वही त्याग की भावना आ जाती है, उसमें वही डिसिप्लिन आता है, उसमें वही एजुकेशन, शिक्षा आती है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में। तो वो 30 साल की नौकरी, 32 साल की नौकरी करता है, उसमें एक जिंदगी जीता है, वो एक प्रोफेशन नहीं है, वो एक लाइफ है साहब। तो वो लाइफ जीता है, और वही लाइफ 30 साल जीने के बाद जब वो सिविल एनवायरनमेंट में आता है, तो वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुकी होती है, उसे वो छोड़ नहीं सकता। तो दिस इज द रीजन, ये मूल कारण है।
0: क्या परिवार के बाहर वहाँ एक दूसरा परिवार बन जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप त्योहारों तक पर अपने घर नहीं आ पाते हैं, और मेरे कजिन तो ये भी कहते हैं कि मैं जब भी घर से वापस जाता हूँ, बुरा तो लगता है, घर परिवार से दूर जाते हैं, साथ में खाने की चीजें लेकर के जाते हैं, लेकिन वो शाम तक टिक नहीं पाती, शायद ही वो कंज्यूम कर पाते हैं, उनसे ज्यादा उनके साथी टूट पड़ते हैं एक तरह से। ऐसा भी होता है, एक परिवार जैसा माहौल बन जाता है।
1: देखिए, फौजी का परिवार, चाहे वो कोई भी हो, किसी रैंक में हो, उसका परिवार उसकी नौकरी की जिंदगी तक, जब तक कि वो रिटायर नहीं होता,
0: जी
1: वो वही यूनिट, वही ऑर्गेनाइजेशन रहता है। त्योहार की बात अब अगर कहें, तो कहीं कहीं हमारे यहाँ इन्फेंट्री में, अगर आप
0: जी
1: इन्फेंट्री को समझते हो, तो इन्फेंट्री की यूनिट्स होती हैं, बड़ी प्योर यूनिट्स होती हैं कहीं
0: जी
1: कहीं।
0: जी
1: जैसे एक कंपनी होती है जिसमें हिंदुस्तानी मुस्लिम्स होते हैं,
0: जी
1: उसका CO सदार हो जाता है, या कोई और हो जाता है, तो उस CO को उनके साथ नमाज अदा करनी होती है।
0: क्या बात है
1: सिमिलरली,
0: जी
1: जब आप कमांड करते हैं, जैसे मैंने गुरखा रेजिमेंट कमांड की,
0: जी
1: तो वहाँ पे जब भी दुर्गा पूजा होती थी, तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्यौहार है नेपालियों के लिए, गुरखास के लिए, तो वहाँ पे 10 दिन का व्रत रखना होता है CO को,
0: सबको
1: एब्सोल्युटली, CO को और सूबेदार मेजर को। तो CO 10 दिन का व्रत रखता है, आरती उतारता है, बलिदान भी वही करता है 10वें दिन। तो आप जैसे सही कह रहे हैं, परिवार वही है, त्योहार वही है, तो बाहर का लेना देना कुछ नहीं होता। हाँ, नेचुरली आप छुट्टी आते हैं तो अपना जो आपका जेनेटिक परिवार है और समाज है, उसके साथ भी अपना त्योहार मना लेते हैं।
0: फिर से आते हैं यूथ पर। क्या जो राष्ट्र निर्माण का काम है वो केवल वोटिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं, और भी तरीके हैं यूथ के पास अपने सर्व करने के, नेशन को?
1: देखिए, हम फिर जाएंगे अपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत पे, कि ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब आज का युवा सबसे पहली चीज़ ये समझे कि उसे खुद पहले ढंग से शिक्षित होना है, एंड देन द एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस, यानी त्याग उसके पास होना चाहिए, कि वो
0: जी
1: अपना समय, अपना पैसा, अपना वक्त समाज में लगा सके। अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, तो हफ्ते में आप डिप्राइव्ड बच्चों को पढ़ा सकते हैं,
0: जी
1: किसी ओल्ड एज होम में जा सकते हैं। अनलेस एंड अंटिल ये कम्युनिटी डेवलपमेंट करेगा युवा, तब तक वो चेंजेस जिसकी हम
0: जी
1: लोग बात कर रहे हैं, जिम्मेदारियां, वो आना
0: जी
1: मुश्किल होगा।
0: सिविक सेंस कितना जरूरी है, सिविक सेंस या नागरिक बोध जिसको हम कहते हैं। एक समय ऐसा था जब हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, गुलामी का जो दौर था। आज हम कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कुछ भी तोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो सिविक सेंस है ये कहाँ से आता है और क्यों जरूरी है?
1: अच्छा, मेरा ये सख्त मानना है, मेरा एक इंट्रैक्शन हुआ था डॉक्टर कलाम साहब से, एक छोटा सा किस्सा है। वो कहते थे कि यू शुड इन्वेस्ट इन द न्यू जनरेशन, और वो जब बच्चियों को या बच्चों को बिठाते थे सामने, तो उनसे शपथ लेते थे कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। सो मेरा ये सख्त मानना है कि ये मेहनत हमारे को अपने घर पे, हमारे को छोटे बच्चों से शुरू करनी पड़ेगी। वो बच्चे जिनको माँ बाप सिखाते हैं कि भाई कचरा यहाँ ना फेंको, थूको यहाँ ना करो, दैट
0: जी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने घर से, अपने सड़कों पे, अपने स्ट्रीट में और अपने मोहल्ले में ले जानी पड़ेगी। हम लोग बाहर जाते हैं, सिंगापुर जाइए आप या किसी भी और देश में जाइए, आपको
0: जी
1: सिविक सेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज बट दैट इज फियर, यानी वो डर से आता है कि आप कुछ कचरा फेंकेंगे तो प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। थोड़ा
0: क्या
1: सा
0: सिविक सेंस के लिए डर जरूरी है?
1: नहीं, मैंने कहा इसकी सीख उनको उनके बड़ों से मिलनी चाहिए। दी ओल्डर जनरेशन जो है, वो एक एग्जाम्पल है उनके लिए, वो सिखाए यंगर जनरेशन को, तो नेचुरली वो उनके कैरेक्टर

0: सेक्टर में शामिल हो जाए।
1: ये भी राष्ट्र सेवा का ही एक हिस्सा है।
0: Absolutely.
1: भारत जो है एक बड़ा अलग सा देश है, यहाँ पर एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति नहीं है, एक खान पान नहीं है। ऐसे में हम देखते हैं कि कई युवा कहीं दूसरे हिस्से में जाकर के देश की नौकरी कर रहे हैं या किसी भी कारण से गए हैं। ऐसे में इतनी विविधता वाले देश में कैसे एक तरह से, जैसे आपने फौज में कहा कि CO जो होता था वो नमाज पढ़ता था, दुर्गा पूजा में कोई भी हो वो 10 दिन व्रत रखता था, ये जो एक समावेशी भावना है ये कैसे डेवलप की जाती है? जैसे इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था कि फौज ऐसा क्या सिखा देती है, ये आम आदमी में कैसे आए, युवाओं में कैसे आए खासकर?
0: देखिए, शुरुआत तो एजुकेशन और संस्कार से ही होगी
1: जी।
0: आप शिक्षित होंगे,
1: घर से शुरू होगा।
0: एब्सोल्युटली सर, एक सोसाइटी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है
1: जी
0: वो घर है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अलग भाषा, खान पान, कल्चर, हमारे देश की खसूसियात ही यही है सर।
1: बिल्कुल,
0: इससे डाइवर्स कंट्री पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से तो नहीं है। मैंने अमेरिका में कोर्स किया है, कांगो में नौकरी की है, अफ्रीका में, बट मैंने ये डाइवर्सिटी साहब नहीं देखी। आप एवरी 6 किलोमीटर्स, आप उससे बेहतर जानते होंगे, आपका डायलेक्ट चेंज हो जाता है लैंग्वेज का।
1: बिल्कुल,
0: आपका खान पान में फ़र्क आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: वो वही तो चीज़ है और उसको प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा, पर्सनल सक्सेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इसकी बात आती है तो इसके बीच में कैसे कोई युवा, कोई हमारा साथी एक संतुलन बनाए, एक बैलेंस बनाए और तरजीह किसको दे?
0: एब्सोल्युटली सर, पर्सनल एम्बिशन को तो किसी भी तरीके से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्सनल एम्बिशंस ही हैं जो विज्ञान के फील्ड में रिसर्च पे ले जाते हैं। पर्सनल एम्बिशंस हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आखिरकार देश को फायदा आता है। लेकिन अगेन, उसी युवा, उसी मिडिल एज आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी देखे, देखे कि मेरा पड़ोसी, मेरे दाएं और बाएं वाला कहाँ पे है, कैसे है।
1: अगर फिर से सिविक सेंस पर आते हैं, एक प्रश्न आता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है, किसी व्यक्ति ने कहीं पर थूक दिया, आप उसको मना करेंगे कि भाई ऐसा मत करो, इससे गंदगी फैलती है, ये अच्छी बात नहीं है। उधर से पलट करके जवाब आता है कि सड़क तुम्हारी है क्या? ऐसे में क्या करे कोई?
0: आपने देखिए, किसी को रोकने के डर से, फौज में एक चीज होती है, कहते हैं रोकिए और टोकिए। आप उसे एक पोलाइट लैंग्वेज में ही रोकते हैं, पोलाइट लैंग्वेज में ही टोकते हैं। टोकने से आप समझ रहे होंगे, मान लीजिए मैंने कोई गलत काम किया तो दूसरे जो मेरा सीनियर है या मेरा सबॉर्डिनेट भी है वो मुझे पॉइंट आउट करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी तो साथ हम सबको निभानी ही पड़ेगी। वहां से जवाब जैसा आ रहा है, अब वो तो सोसाइटी का हिस्सा है भाई। हर आदमी बराबर नहीं होता, हर आदमी मेरे ख्याल से खुश नहीं है उस वक्त जब आप उससे बात कर रहे हैं, उसकी अपनी कोई परेशानियां होंगी।
1: आज का दौर जो है वो एक तरह से डिजिटल दौर है, ऐसे में जो राष्ट्रभक्ति है, जो राष्ट्र प्रेम है, आपको क्या लगता है इसकी परिभाषा कुछ बदल रही है क्या?
0: अब ये बड़ा
1: इसमें मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा।
0: हाँ।
1: जो अभी हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, क्या इसी बीच में हमारा राष्ट्र प्रेम अचानक से उफान मारता है, जाग जाता है, झंडे हम लपेट करके चलते हैं, लेकिन समस्या तब होती है, कोफ्त तब होती है जब वही झंडे, वही जो नेशनल एम्बलम्स के तरह तरह के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, वो 16 अगस्त और 27 जनवरी को सड़कों पर बिखरे मिलते हैं।
0: मैं आपसे इस बात पे थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ। जो हमारा नेशन है, हमारा देश है, ये बात नहीं है कि लोग बाकी दिन उसको भूल जाते हैं। हमारे देश के बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, आप सब हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं, अगर वो काम हम सच्चाई से कर रहे हैं तो वो एब्सोल्युटली फाइनली नेशन बिल्डिंग में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो राष्ट्र भावना है। जो गलतियां हमसे हो जाती है उसे कंज्यूमरिज्म का हिस्सा है कि चीज़ें इतनी बिक जाती हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है।
1: कई सारे युवा ये भी कहते हैं कि नेशनल एम्बलम्स के मामले में, उनके सम्मान के मामले में भारत कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा है क्या?
0: नहीं, आप अगर बाकी ममालिक जाएंगे, अगर आप बाकी देशों में जाएंगे तो वहाँ पे लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमारे देश में ऐसा मुझे तो नहीं प्रतीत होता।
1: वो एक बहुत पुराना सा शेर है ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। क्या भाषणों से इतर जा करके हम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने बलिदान दे दिया, उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या?
0: मैं इसका एक बहुत सख्त एडवोकेट हूँ। मैं आजकल कोशिश करता हूँ, देखिए जो मार्टियर्स जिन्हें आप शहीद कहते हैं, चाहे स्वतंत्रता हो, प्री इंडिपेंडेंस हो,

0: या उसके बाद के लोग हों, तो मैं ये कोशिश करता हूँ जो हमारे वॉर वेटरन्स हैं उनमें से जो शहीद हैं या उनके फैमिली हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, ये स्टेप हम लोग को उठाना, उनको रिकग्नाइज करना, उनको भूल न जाना, ये मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटी छोटी सी भेंट होगी,
1: क्या बात है।
0: और कुछ नहीं।
1: एक बड़ा अलग सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, समय हमारे पास बहुत कम है, लगभग खत्म होने को है। मान लीजिए कोई स्वतंत्रता सेनानी आज जीवित होते या उनको संबोधित करने का मौका मिलता युवाओं को, मान लीजिए भगत सिंह आ जाते, तो आपको क्या लगता है वो क्या कहते आज के युवाओं से? सबसे पहली बात
0: सबसे पहले तो अगर भगत सिंह जी आ जाते तो बहुत बड़ी बात होती
1: जी।
0: मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। इनफैक्ट एक बड़े बहुत बड़े आइडियल है मेरे लिए, तो वो अ मैन
1: बिल्कुल
0: ऑफ 23, 22, देश के लिए फांसी पे चढ़ जाना, मुंह पे शिकन्ना आना। खैर, आते तो वो यही कहते कि भाई आज़ादी तो हमने आपको दिला दी, अब जिम्मेदारी आपकी है, और जिम्मेदारी के लिए सबसे पहली चीज़ त्याग और डिसिप्लिन है। सेक्रीफाइस तो आपको देना पड़ेगी, और डिसिप्लिन के तौर पे, ये नहीं कि आज मैंने किया फिर भूल गए, ये लगातार करना ही पड़ेगा आपको, तभी देश खुशहाल होगा, तभी देश बचेगा।
1: आप कर्नल अब्रार अहमद अगली पीढ़ी को कैसी आजादी सौंपना चाहेंगे?
0: मैंने फिर कहा, आज के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, त्याग जरूरी है हमारे लिए, डिसिप्लिन जरूरी है हमारे लिए, और मैं ये चाहता हूँ ये आज़ादी मेरी, दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, दो
1: जी
0: सीओज, एक नमाज पढ़ता है और एक व्रत रखता है, ऐसी
1: जी
0: आज़ादी देना चाहूँगा।
1: क्या बात है कर्नल अब्रार अहमद, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, और जो भी युवा साथी आपके हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि उनको अच्छा लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा। और कैसे वो, जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो बलिदानी हैं, जो शहीद हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम कम से कम उनको याद रखें। अंत में चलते चलते आप हमारे माध्यम से हमारे युवा साथियों को कुछ संदेश देना चाहें या कुछ अपील करना चाहें स्वतंत्रता दिवस पर?
0: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को शिक्षित करें, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ें, लेकिन जो आपके दाएं बाएं पीछे और नीचे लोग हैं उन पर नज़र ज़रूर रखें, अपना समय दें, थोड़ा त्याग करें, लेकिन
1: जी
0: ये त्याग भी जो है रेगुलर करें, यानी एक डिसिप्लिन तरीके से।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, ये थे कर्नल अबरार अहमद जो सीधा संवाद कर रहे थे युवाओं से, हमसे, आपसे। और एक जिम्मेदारी हमको तय करनी पड़ेगी अपनी, खासकर युवाओं को। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई युवा ऐसा हो जो पूरी तरह से आज भी भगत सिंह जैसे शहीदों को भूला हो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी उस इब्तिदा की आशनाई अब भी बाकी है, जरा कमजर पर थोड़ी खुदाई अब भी बाकी है, ऐ आशिक मौत को भी जिंदगी एक बख्शने वाले, भगत तेरी रगों की सूखी स्याही अब भी बाकी है। तो हमारी रगों में कहीं ना कहीं आज भी वो खून दौड़ रहा है, हम भूले नहीं हैं। खैर, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए युववाणी, सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बातचीत विरासत की आज़ादी, युवाओं की जिम्मेदारी, कर्नल अबरार अहमद से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत।
3: और साथियों, इस बातचीत के साथ ही हम आपको देते चल रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन यह है कि इस स्वतंत्रता दिवस की सुनहरी संध्या पर हमारे शहर यानी प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में एयरफोर्स बैंड की ओर से शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक म्यूजिकल शो की होंगी शानदार परफॉर्मेंसेस। तो हमारे जो भी डियर लिसनर्स एयरफोर्स बैंड की प्रस्तुतियों को, हमारी सेना के शौर्य और राष्ट्रप्रेम की भावना को नज़दीक से महसूस करना चाहते हैं, तो शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ज़रूर पहुँचें।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: तो दोस्तों, आइए सुनते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर श्री पीयूष मोर्डिया से विशेष भेंटवार्ता।

0: दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर जो शख्सियत मौजूद हैं उनको हम सिर्फ इसलिए आपके साथ नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रयागराज की पुलिस के मुखिया हैं, बल्कि युवाओं को लेकर के उनकी सोच बहुत ही अलग है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की पुलिस के मुखिया और कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री पीयूष मौर्या जी के साथ। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी में। आज हम बात करेंगे आपसे युवाओं। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये है कि आपको ऐसा लगता है क्या, इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं विशेष रूप से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि युवाओं और पुलिस के बीच में संवाद की थोड़ी कमी है? अगर है तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं?
1: नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि पिछले दिनों में हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से और अलग अलग जो स्कूलों कॉलेजों में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे विभिन्न अवसरों पर बात की। ये जरूर है कि कई बार लोग इस संकोच से कि वर्दी पहने अधिकारी सामने बैठा है और आने में कुछ छोटे बटे हिचकिचा जाया करते हैं, परंतु पीछे मैंने देखा है कि हमारे आजकल के स्टूडेंट्स में बड़ा कॉन्फिडेंस है, अपनी बात बिल्कुल आकर कहते हैं और हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि उनके साथ संवाद होता रहे। जितने भी हमारे अधिकारी हैं वे कितने भी व्यस्त हों, स्कूल कॉलेज में के कार्यक्रम में यदि उन्हें बुलाया जाता है और बार बार बुलाया जाता है तो कभी ना नहीं करते हैं। वे जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, स्टूडेंट से अनुभव साझा करते हैं, उनके बारे में जानकारी करते हैं। तो मोटे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि सामान्य से थोड़ा सा हटकर ये संबंध होता है, क्योंकि वर्दी वालों से बिना वर्दी वाले लोग बात करते समय जब तक उनका पहला अनुभव इंटरेक्शन का ना हो जाए तब तक संकोच अनुभव किया करते हैं, परंतु एक बार जब वार्ता प्रारंभ हो जाती है तो उनके मन से यह हिचक भी टूट जाती है और अच्छा संवाद बन जाता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि कुछ लोग हिचकिचाते हैं, अपनी बात कहने में घबराते हैं या अपने सुझाव देने में जिनको किसी प्रकार की हिचकिचाहट होती है, वे कोई इस प्रकार का भाव मन में ना लाएं, बल्कि बेहिचक हमारे दफ्तरों में, हमारे थानों में, हमारे कार्यालयों में आएँ, जहाँ कहीं हमसे मिले, पब्लिक प्लेस पर यदि मुलाकात होती है वहाँ पर अपने मन की बात जरूर हमारे साथ साझा करें।
0: मैं हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ये प्रश्न पूछता हूँ, आज आप सामने हैं, मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आता है तो देशभक्ति उफान पर होती है, खासकर युवाओं में, लेकिन 15 अगस्त की शाम होते होते या 16 अगस्त या 27 जनवरी या 26 जनवरी की शाम होते होते हम देखते हैं कि कई सारे तिरंगे, कई सारे नेशनल एम्बलम्स के तरह तरह के प्रतीक सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। ये जो एक अंदर से आने वाली भावना है कि नहीं, ये हमारे प्रतीक हैं, इनके प्रति जो सम्मान आएगा ये कैसे आ सकता है? आप कैसे आप प्रेरित करेंगे युवाओं को कि इसके बारे में सोचें?
1: देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में स्कूलों में, कॉलेज में बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत परिपक्व हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनके महत्व को समझते हैं, परंतु ऐसे भी हैं जिनमें इतनी समझ संभवतः नहीं है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में हर समय ऐसी स्थिति बनी रह सकती है जब कुछ लोग नादानी में ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देते हों, ध्यान ना देते हों, जैसे झंडे को गिरा देते हों या गिरा देखने के बावजूद उसे उठाते ना हों। तो आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि भैया जो आवश्यक महत्व है उसे दिया जाना चाहिए, पर साथ ही ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ऐसा कुछ हो तो तूल ना दें, क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ लोग नादानी में, नासमझी में, अनजाने में ऐसा कर ही सकते हैं। उन लोगों ने जब तक कि उनकी दुर्भावना ना प्रतीत होती हो तब तक उन लोगों को प्रेरित करना ही हमारा भाव होना चाहिए कि वे भविष्य में ऐसी गलती ना करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
0: एक प्रश्न सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत तेज़ी से उछल करके आता है, आ रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में जब सूचना का एक स्रोत मोबाइल के रूप में आपके हाथ में है, आप कहीं पर भी कुछ भी, कोई भी सूचना क्षणों में पहुंचा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे में आप युवाओं की क्या भूमिका देखते हैं आज के परिदृश्य को देखते हुए?
1: यही कहना चाहूँगा कि वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तब चूंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था, अतः सोशल मीडिया के इस प्रकार के माध्यम भी मौजूद नहीं थे, इसलिए डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, हमारे लिए फोकस कर पाना आसान था पढ़ने पर, अपने करियर पर। पर तो आजकल के बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, परंतु ये डिस्ट्रैक्शन भी मौजूद हैं। संभवतः आज हम पढ़ रहे होते तो ये डिस्ट्रैक्शंस का नुकसान हमें भी होता, चूँकि आदत के रूप में हमारे जीवन में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने समय का सदुपयोग करें।

0: ये जान लें कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं है, किसी के पास 23 घंटे नहीं है। इन्हीं 24 घंटे के ढंग से इस्तेमाल करने वाले जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और कितना कुछ देश और समाज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दे जाते हैं। तो जो असीमित संभावनाएं प्रत्येक क्षण में हैं, उन संभावनाओं को साकार रूप देने के लिए जरूरी है कि अपना समय का दुरुपयोग ना हो। मोबाइल का इस्तेमाल बेशक करें उन कामों के लिए जो सकारात्मक हों, जिनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होती हो, आपकी जानकारी में वृद्धि होती हो, परंतु किसी भी अवस्था में ऐसा ना करें कि आप उससे अपना समय बर्बाद करते हो या इस प्रकार के साइट्स पर जाते हो जो किसी भी तरह से आपकी व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में कोई योगदान ना देती हो।
1: इसमें एक पहलू और है, क्या शेयर करें, कब शेयर करें, क्या ना शेयर करें, क्या जरूरी
0: है? देखिए, ये बड़ा व्यक्तिगत विषय है। मैं यही बता सकता हूँ कि मैं क्या शेयर कर सकता हूँ। आप जो कुछ शेयर करते हैं वो आपका प्रतिरूप होता है। जो आप शेयर करते हैं उसके आधार पर लोग ये समझते हैं कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आपका चरित्र कैसा है और आप किस प्रकार की भावना रखते हो। क्योंकि सोशल मीडिया सभी को उपलब्ध है तो अफवाहें फैलाने वाले भी उसका इस्तेमाल करते हैं, झूठ भी उससे फैलाते हैं, प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। ऐसे में ये मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि कुछ ही समय में सब लोगों भान हो जाता है कि अधिकृत प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से, हैंडल्स कौन कौन से, उन हैंडल्स के जरिए इन्फॉर्मेशन यदि मिलती है तो आपको ज़्यादा विश्वास उस पर होता है। फिर भी सोशल मीडिया से प्रसारित होने वाली हर खबर पर सीधे सीधे विश्वास ना करें, उसको जरूर डबल चेक करें अधिकृत हैंडल्स के माध्यम से, अधिकृत जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से।
1: आज के युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या आपका कोई सुझाव है? इस तरह की कोई स्कीम या कोई योजना पुलिस अपनी तरफ से चला रही है कि युवाओं को और अधिक जोड़ा जाए पुलिस के साथ?
0: ऐसी योजनाएं अन्य विभागों के तरह पुलिस भी लगातार चलाती रहती है। पुलिस से लोग जुड़ते भी हैं क्योंकि पुलिस एक विजिबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्दी की वजह से, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पुलिस किसी न किसी प्रकार का हिस्सा बनी रहती है। जैसे एक ज़माने में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक विज्ञापन होता था, बड़े बड़े बोर्ड आज से 20 साल पहले मैंने लगे देखे थे, जो कहते थे देर इज़ अ बिट ऑफ सेल इन एवरीबडीज लाइफ। क्योंकि हर आदमी जो जीवन में स्टील का इस्तेमाल करता था, चाहे बाल्टी हो घर में, चाहे गाड़ी में बैठता हो, स्कूटर चलाता हो, मोटरसाइकिल पर चलता हो, कोई उपकरण इस्तेमाल करता हो, सब में स्टील लगता था जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आता था। ऐसे ही आपको कहना चाहता हूँ, देर इज़ अ बिट ऑफ पुलिस इन एवरीबडीज लाइफ। चाहे आपका घटना ना घटती हो, चाहे आपको किसी के घटना के लिए पुलिस थाने ना जाना पड़ता हो, पर तब भी जब आप सड़क पर चलते हैं, यातायात जो संचालित होता है, आपके नौकरियां जब पाते हैं, आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन जब होता है, आपकी नौकरी जब मिलती है, हर चीज़ में आपके बारे में, आपके चरित्र प्रमाण पत्र देते समय, आपका वेरिफिकेशन कराते समय, और बाकी जब किसी आपराधिक कृत्य का शिकार बनते हैं तो पुलिस के पास आप जाते ही हैं। तो पुलिस किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन में, देश में समाहित है। हम चाहते हैं पुलिस अपना सकारात्मक कार्य इस प्रकार से करती रहे कि लोगों को पुलिस से मिलने के बाद एनर्जाइज महसूस करने लगे और जो पीड़ा या दिक्कत या परेशानी जिससे वो गुजर रहे हैं वो पुलिस से मिलने के बाद रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए।
1: अंत में जो युवा इस वक्त हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, इतनी सारी पढ़ाई और इतने ऊंचे पद पर आने के बाद आपको क्या लगता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है? और जो लोग दूर से देखते हैं, जो युवा यहाँ तक आने की सोचते हैं, शुरुआत कैसे करें, क्या ये इतना कठिन है क्या?
0: देखिए, हम सब बड़े सामान्य लोग हैं और कठिन नहीं है कुछ भी। स्कूलों कॉलेज में पढ़ते समय जिस दौर से आज हमारे सभी अन्य विद्यार्थी गुजर रहे हैं, उससे हम भी सब गुजरे हुए हैं। ऐसे ही स्कूलों में पढ़े, ऐसे ही कॉलेजों में पढ़े, ऐसे ही परीक्षाएं दी, हम संयोग से इस सेवा में आ गए। तो बताना चाहता हूँ कि इन परीक्षाओं से डरे ना, ये सब बहुत आसान है। जीवन में अपने उन 24 घंटों का ढंग से इस्तेमाल प्रत्येक दिन जो लोग कर लेते हैं, वो चाहे जो परीक्षाओं से पास कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि सबके पास में रिसोर्स बराबर है, उतना ही समय है, 10 घंटे सोते भी हैं उसमें से तो 14 घंटे बचते हैं, उसमें भी अपने बाकी सब काम करते हैं। तो मसला इस बात का नहीं है कि हमें से कोई व्यक्ति कुछ विशेष होता है, इस बात का है कि हम डिसिप्लिन होते हैं। जो भी ऐसा करे वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। और ये ना माने कि पुलिस या सिविल सर्विस में आना ही जीवन में सफलता का प्रतीक है, ये गलत फहमी कोई ना रखे। हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है।
1: मैं पूछ रहा था कि कई बार आज हम देखते हैं, मैं बात करता हूँ युवाओं से बुला करके, डॉक्टर से बात करता हूँ, तो डिप्रेशन अवसाद के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर किसी परीक्षार्थी को कोई सरकारी पद नहीं मिला, कोई बड़ा पद नहीं मिला, तो जीवन यहीं ख़त्म हो जाता है क्या?
0: ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी से लोगों निकल

करना चाहिए। हमारा जीवन, हम मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूँ, हम सबसे जुड़ा हुआ है। उसमें सफल होने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए किसी एक प्रकार की सेवा में होना जरूरी नहीं है। किसी भी सेवा में हो, आप पत्रकार हो, आप सरकारी सेवा में हो, आप दुकानदार हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, राजनेता हो, किसी भी सेवा में आप अपने कुछ बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स के अनुरूप काम करें यदि और अच्छा कार्य करें, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। और सुख की अनुभूति जो है वही हमारा ध्येय होना चाहिए। भेड़ चाल में ना फंसे कि दूसरा व्यक्ति कुछ चीज़ कर रहा है वैसा का वैसा ही करना चाहिए, इसकी आवश्यकता

0: जल्दी और अच्छा कार्य करें तो आपको सुख की अनुभूति होगी, और सुख की अनुभूति जो है वही हमारा ध्येय होना चाहिए। भेड़ चाल में ना फंसे कि दूसरा व्यक्ति कुछ चीज कर रहा है वैसा का वैसा ही करना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जिस विधा में पारंगत है उसी विधा में आगे बढ़े।
1: युवा साथियों के लिए तो मैं कुछ संदेश या कुछ अपील आपकी तरफ से।
0: मैं सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, अपना समय बर्बाद ना करें। जिस भी विधा में पारंगत होना चाहते हो या हैं उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र पे फोकस रहें, अपनी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ें। बहुत आसान है ये चीज़, जितनी इनमें से अधिकतर परीक्षाओं को मुश्किल हम मानते हैं उतनी मुश्किल ये है नहीं, पर ये बात समझ में बहुत देरी से आती है। उस डर की वजह से पढ़ते समय डर लगातार चूंकि मन में बना रहता है तो आसान चीज़ों में भी आदमी कभी कभी घबरा जाता है, घबराए ना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष नोड़िया जी, जो कि सीधा संवाद कर रहे थे युवाओं से, आपसे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। बहुत गहरी बातें बताई हैं सर ने, इसे अपने जीवन में आप उतारेंगे और उस तरह से एक्ट करेंगे जिस तरह से आप एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। धन्यवाद
2: दोस्तों, ये थी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर श्री पीयूष मोड़िया से विशेष भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे अभिनव प्रज्ञ पांडे। साथियों, इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का नाम नहीं होता, इतिहास उन युवाओं की कहानी भी है जिन्होंने अपने समय की कठिन परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय अपने आदर्शों के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। आज के हमारे प्रेरणापुंज में हम बात कर रहे हैं कैसे ही युवा क्रांतिकारी की, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अदम्य साहस के साथ दर्ज है, और उनका नाम है विनोय कृष्ण बसु।
3: विनोय कृष्ण बसु का जन्म 11 सितंबर 1908 को तत्कालीन बंगाल के ढाका जिले के रोही जिला गांव में हुआ था। वो ऐसे दौर में बड़े हुए जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश में स्वतंत्रता की भावना लगातार मजबूत हो रही थी।
2: उनके जीवन का सबसे चर्चित अध्याय जुड़ा है रॉयटर्स बिल्डिंग कोलकाता से, यानी 8 दिसंबर 1930 को विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने ब्रिटिश शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल एन एस सिम्पसन के विरुद्ध कार्रवाई की थी, और सिम्पसन जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए जाने जाते थे।
3: इसीलिए तीनों क्रांतिकारी ब्रिटिश अपराधियों के सामने साहस के साथ खड़े हुए। इसके बाद राइटर्स बिल्डिंग में मुठभेड़ हुई। अंततः जब गिरफ्तारी निश्चित लगने लगी, तीनों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने अपने तरीके से गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया। विनोय गंभीर रूप से घायल भी हुए।
2: विनोय को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो अपनी चोटों से उभर नहीं सके और 13 दिसंबर 1930 को उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी। श्रोताओं, महज 22 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में आज का युवा अपने करियर, अपने सपनों की बात करता है, अपने भविष्य की राह तलाश रहा होता है, उसी उम्र में विनोय बसु ने अपने देश के भविष्य के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया।
3: दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बात करते हैं। जून 1999, कारगिल की वो खौफनाक चोटियाँ, 16,000 फीट की ऊंचाई, माइनस डिग्री टेम्परेचर और चोटी पर बंकर बनाकर बैठा दुस्साहसी दुश्मन, नीचे से ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जाबाज सीधे दुश्मन की गोलियों का निशाना बन रहे थे।
2: यानी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विक्रम बत्रा की कहानी पर। उस मौत के साए में भी एक 24 साल के युवा की आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं था। एक ऐसा योद्धा जिसे दुश्मन ने कोड नेम दिया था शेर शाह, पालमपुर की वादियों से निकला वो शेर, नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: 0.5140, एक ऐसी चोटी जहां चढ़ना सीधे खुदकुशी करना जैसा था। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम 13 जैक राइफल्स को हुक्म मिला, चोटी खाली कराओ। विक्रम ने अपने साथियों के साथ आंखों में देखा और कहा, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर।
2: और ज्योति, ये सच बात है, विक्रम बत्रा बहादुरी से लड़े और उस चोटी को उन्होंने आजाद कराया और इतिहास में उन्होंने अपना परचम लहराया। तो दोस्तों, ये था आज का युवाणी का सफर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी अभिषेक को
3: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार।
4: युवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो

0: हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का अब से थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है। जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक 8 होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन ने FIH हॉकी विश्व

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं जो कि प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप है। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 8 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट ये आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, क्षमा कीजिए, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे आजादी के मौके पर विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय गान। सात बजकर 31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में अजय भालचंद्र खेर की वार्ता होगी। विषय होगा स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की भूमिका। 8 बजकर 15 मिनट पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी।

श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली हमारी शेष कार्यक्रमों की। और अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह से हैं। कल रात 10 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम।

सुबह 6:05 पर रोज की तरह भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रसारित किया जाएगा। विचार बिंदु में 6:30 पर गौरव ग्रंथों से इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे ऋग्वेद से पाठ। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम सुबह 6:35 पर प्रतिदिन प्रसारित होता है। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरिशंकर राय से अरविंद कुमार की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा इसे एक बार फिर सुन लीजिए, डॉक्टर हरिशंकर राय से अरविंद कुमार की बातचीत आप सुन सकते हैं सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर वैद्य सुभाष तिवारी की वार्ता होगी, बदलते मौसम में कैसा हो आहार विहार। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर नमिता यादव और शाम 7:45 पर अंकिता चतुर्वेदी के गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 आप सुन सकेंगे और फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा सुबह 7:10 पर। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा हेलो अनुरोध। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर, कलाकार होंगी आश्रय द्विवेदी। इसके अलावा दिन में 2:30 पर भी आप लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे, कलाकार होंगे छेदी लाल और उनके साथी। शाम 5 बाल गोपाल कार्यक्रम में बच्चे स्नेहलता श्रीवास्तव की कहानी सुनेंगे लालच के लट्टू। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता खुशी राज की वार्ता सुनेंगे, विषय होगा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारा गौरव। इसके अलावा युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा हेलो युवा।

शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में छेदीलाल यादव और साथी लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जयति सिंह की वार्ता होगी, कृषि के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर। रात 8 बजे आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में श्रोताओं के पत्रों और सोशल मीडिया से प्राप्त सुझावों और संदेशों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित होगा, चिट्ठी आई है। रात 8:30 पर आप सुनेंगे आज इतवारी कार्यक्रम, जिसमें नरेश मिश्र की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी मुंशी इतवारी लाल। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए खोई व्यक्तियों के संबंध में एक दो सूचनाएं। दिलचंद्र कुमार जनपद प्रतापगढ़ से हमें सूचित करती हैं कि इनके संबंधी सोनम कुमारी, जिनकी उम्र 17 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच, रंग के हुआ है। ये दिनांक 11 मार्च 2026 से प्रतापगढ़ से लापता हो गई हैं। इनके रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, चौराहे और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को सोनम कुमारी के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध हो, वे कृपया इस पते पर संपर्क स्थापित करें। पता नोट करें, दिलचंद कुमार, ग्राम रामपुर, जनपद प्रतापगढ़। एक अन्य सूचना, आनंदीलाल हमें सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी माया देवी, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, कद 4 फुट 6 इंच, ये दिनांक 15 जुलाई 2026 से थाना मंझनपुर से लापता हो गई हैं। इनके थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। इसके अलावा सैनी, महेवाघाट और कोखराज आदि क्षेत्रों के आसपास भी इन्हें पाया जा सकता है। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, आनंदीलाल, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी। इनका फोन नंबर है 9682449901, यानी 9682449901। अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं।

एक अन्य सूचना से आपको अवगत करा दी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनसंपर्क कार्यालय रक्षा मंत्रालय बमरौली से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी आज एयरफोर्स का जनसामान्य के सम्मुख संगीतमय बैंड प्रदर्शन और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन शाम 6 बजे से 8 बजे के मध्य स्थानीय चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सूचना समाप्त हुई। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संवेद स्वरों में देशभक्ति पूर्ण रचना।

श्रोताओं, हम मना रहे हैं आजादी का जश्न। देशभक्ति रचनाएं हमारे भीतर देशभक्ति के भावों का बीजारोपण करती हैं।

0: इयम्
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। कृत्स्ने हि देशे अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य महोल्लासेन आचरणम्। रक्तदुर्गे तावत् प्रधानमन्त्रिणा विहितं राष्ट्रध्वजारोहणम्। रक्तदुर्गे प्रथमतया जातं वन्दे मातरमिति राष्ट्रियगीतस्य सस्वर गानम्। प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां कृते निःशुल्क प्रातिभासिक प्रशिक्षणस्य अथ च आगामिवर्षे कोट्यधिक युवभ्यः एआई कौशल प्रदानस्य कृता उद्घोषणा। भारतं बहुभिः देशैस्सह सन्धिं विधाय महत्वपूर्ण खनिजक्षेत्रे विश्वासयुक्त वैश्विक सहयोगित्वेन समुदेतीति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। संसाधनानां अस्त्रीकरणे प्रधानमन्त्रिणा प्रकटिता चिन्ता, समाह्वानानां निवारणे भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः सामर्थ्यम् अमुना प्रशंसितम्। अपि च इण्डोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 17.7 तीव्रतायां भूकम्पेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। देशः अद्य स्वकीयम् अशीतितमं स्वतंत्रता दिवसं समाचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिकस्थलात् लालकिला इति रक्तदुर्गात् स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। तस्य आगमनावसरे प्रथमवारं लालकिला इत्यत्र वन्दे मातरमिति राष्ट्रियगीतं प्रस्तुतम्। राष्ट्रध्वजारोहणावसरे 21 आग्नेयास्त्रध्वनिभिः अभिनन्दनम् अभवत् भारतीय वायुसेनायाः 2 MI-17 उदग्रयानाभ्यां पुष्पवृष्टिश्च सञ्जाता। अस्य वर्षस्य एषः समारोहः युवशक्त्यै समर्पितः, यच्च 47.5 वर्षं यावत् विकसितभारतस्य निर्माणे तरुणभारतस्य योगदानम् आमानयति। रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी रक्तदुर्गे वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् ऐतिहासिकः क्षणः इत्यवर्णयत्। सः अवदत् यत् राष्ट्रं महता उत्साहेन नवसंकल्पैः च अग्रे सरति।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी न्यगादीत् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वकीयेन दृढसंकल्पेन समर्पणेन च राष्ट्रम् उन्नतशिखरे प्रापयितुं सर्वविधप्रयासान् कृतवन्तः। विविधेषु क्षेत्रेषु प्राप्ताः उपलब्धयः प्रकाशयन् सः अवदत् यत् 12 वर्षेषु रक्षोत्पादने प्रायः 4 खादी ग्रामोद्योग उत्पादने 5 इलेक्ट्रॉनिक निर्माणक्षेत्रे 7 आधुनिक रेल निर्माणक्षेत्रे 21 अथ च संचार दूरभाष निर्माणक्षेत्रे 33 वृद्धिः सञ्जाता। सः असूचयत् यत् अन्तर्जाल उपयोक्तॄणां संख्यायां 4 अथ च अंकीय वित्तीय विनिमयेषु च 100 वृद्धिः अभवत्।
2: हर साल औसतन 15 ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया।

0: हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: प्रधानमन्त्रिण निर्धन मध्यम वर्गीय कुटुम्बानां कृते विविध सार्वजनिक परीक्षाभ्यः निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षणस्य घोषणम् अकारि। सः अवदत् यत् शीर्ष अध्यापकानां निर्देशने उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षां सर्वसुलभां विधातुम् एतत् एकं क्रान्तिकारी पदक्षेपमस्ति, येन मध्यम वर्गीय कुटुम्बानां सहस्रकोटि रूप्यकाणां रक्षणं भविष्यति।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी एकस्मिन् वर्षे एककोटि युवभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशले प्रशिक्षणं प्रदास्यते, येन ते वैश्विक AI क्षेत्रे नेतृत्वं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। सः अवदत् यत् भारतेन व्ययः गुणवत्ता कौशलं चेत्येतेषु त्रिषु मुख्यस्तम्भेषु विशेषावधानं प्रदातव्यम्।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण खनिजेषु सर्वकारस्य विशेषावधानं प्रकाशयन् अवदत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिकी पूर्णतया महत्वपूर्ण खनिजानाम् उपरि आश्रिता विद्यते। भारतं च अस्मिन् क्षेत्रे स्वस्थानं सुरक्षितं सक्रियतया कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विश्वस्मिन् प्रत्येकं राष्ट्रं स्वकीयहितानां रक्षणाय प्रयतते, किन्तु दौर्भाग्येन अस्मिन् सङ्कटकाले कैश्चिद्भिः देशैः स्वप्रभुत्वप्रदर्शनार्थं संसाधनानाम् अस्त्रीकरणस्य कुत्सितं षड्यन्त्रं कृतम्।
0: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
1: प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः दलेभ्यः सविनयं निवेदितवान् यत् ते संसदि राज्य विधानसभासु च राजनैतिक कलहं परित्यज्य महिला आरक्षणस्य क्रियान्वयनाय सहयोगं कुर्युः।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य 80वें स्वातंत्र्य दिने राष्ट्रीय युद्ध स्मारके वीरान श्रद्धांजलिम अददात। राष्ट्रपति स्मारके पुष्पमालां समर्पयित्वा हुतात्म वीरान श्रद्धांजलिम अर्पितवती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, रक्षा सचिवः संजय सेठः, रक्षा सचिवः जनरल NS राजा सुब्रह्मण्यम, सेना प्रमुखः जनरल धीरज सेठः, नौसेनाध्यक्षः एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः, रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः च अस्मिन् अवसरे अत्र उपस्थिताः आसन्। इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 7.7 तीव्रतायां भूकंपेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। प्रचंड भूकंपस्य अनन्तरं उद्धारदलानि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रेषु गन्तुं प्रयतन्ते इति।

0: Ajá.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, आप हमारी कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए उनके कार्यक्रम पंचायत घर का।

पंचो राम राम सभी किसान भैया बहनिन के, जवान साथिन के, बुजुर्गन के, माता बहनिन के, ललन भैया के तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज भैया हर किसान, हर जवान, हर माता बहनी लोग उत्साह के साथ अपन 80वां स्वतंत्रता दिवस मनावत हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस आज 15 अगस्त हवे और भैया 1947 में ना ब्रिटिशन से जब से आज़ादी मिली बा लगातार भारत जौन बा विकास की ओर गति करता और किसान भैया लोग भी जब देश आज़ाद भरा ना तो बहुत कष्टमय जीवन रहा वो समय। खेती किसानी भी उतना तरीके से नहीं होत रही, देश अपन आत्मनिर्भर नहीं रहा, लेकिन किसानन के प्रयास से किसान इतना मेहनत करें और जो हरित क्रांति आए उकरे बाद से देश आत्मनिर्भर भ और इतना आज के समय इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा बा कि आत्मनिर्भर के अलावा भारत बहुत सारे अनाजन का निर्यात करत भैया दूसरे दूसरे देशन के देत। तो भैया आज जब हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनावत है भैया, हम अपन देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनावता, तो ये दिन प्रत्येक भारतीयन के लिए गौरव, देशभक्ति और आत्मचिंतन का अवसर हवे। भैया 15 अगस्त 1947 के जब अंग्रेजन से मुक्ति मिली रही ना तो देश में बहुत समस्या रही, लेकिन आज जौन समय बिता बा 79 साल के बाद 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनावत है ना, तो आज के समय देश यहाँ स्थिति में बा कि आज गौरव को क्षण बा, लेकिन ये गौरव का क्षण लियावे के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई जैसन लाखों स्वतंत्रता सेनानी अपन जीवन और सर्वस्व देश के लिए बलिदान करें भैया। तो आज के दिन इन सब स्वतंत्रता सेनानी के याद करे के दिन हवे, उनकरे संघर्ष के याद करे के दिन हवे, उन और ये सब एक ऐसा गाथा बने कि सब भारतीयन के, सब किसानन के उनके गौरव के रूप में याद करे चाहे, एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है भैया। और स्वतंत्रता केवल देखा भैया विदेशी शासन से मुक्ति का नाम ना हुए, एकर अर्थ हुए अपने अधिकारन के साथ साथ जिम्मेदारी का भी निर्वहन करब। देखा भैया हम सब के देश जौन बा न बहुत सारी विभिन्नता बा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्कृति बा, बहुत सारी भाषा बा, तो सबके एक में पिरोए के लिए ये देश जौन बा भारत हुए ना, इस सब ही कमारा कहा जाता है कि विविधता में एकता का सूत्र जौन बा ना वो भारत में जौन बा वो और कौनो देश में नहीं बा। सब एक साथ रहते हैं बढ़िया से, सब एक दूसरे का त्यौहार मनावत हैं, सब एक दूसरे के सांस्कृतिक परंपरा में साथ देते हैं भैया, और साथे साथे आज के दिन भी स्वतंत्रता दिवस सब मनावत हैं। देखो भैया भारत न अनेक क्षेत्र में 79 साल बाद उल्लेखनीय प्रगति करेगा, जैसे कृषि, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीकी में भी भैया मौसम वैज्ञानिक लोग ऐसा ऐसा ना भविष्यवाणी कह देते हैं आज के समय कि एकदम सटीक भविष्यवाणी, उसे क्या होता भैया अपने किसानन भाई के लिए भी भैया बहुत लाभ होता। किसान भाई लोग का जानकारी ले कर अपने खेती किसानी में ओकर निर्वहन करत हैं। और देखा भैया आज अपने पंचायती में आप लोगन के लोकगीत भी सुनाओ, एक देशगीत बा, लेकिन ओकरे पहले एक बातचीत बा इफ्को चेयरमैन दिलीप संघानी जी से, मैं दीपक राय भैया बातचीत करे हैं।

0: और उनसे जानकारी लेन इफको का उपलब्धि बा और इफको जौन खाद वगैरह बनाओ तो बारे में जानकारी लेन बातचीत करें तो आवे पहले ओके सुनवावा जाए फिर बात बात कही होए और फिर लोकगीत भी सुनवाओ।
1: श्रोताओं आज हमारे साथ इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी साहब हैं। आज आज़ादी के इस पावन अवसर पर इफको की फूलपुर यूनिट में आपका आकाशवाणी प्रयागराज भी हार्दिक स्वागत करता है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और उसके लिए हम आभारी। हम जानना चाहते हैं कि इफको का जो विजन है, जो पूरे देश में जो है सहकारिता और समृद्धि का जो विजन उसने पेश किया है, उसके लेके आगे की क्या योजनाएं हैं, किस तरह का कार्यप्रणाली है यहाँ की, जिससे बाकी जो संस्थान जो इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं, जो हमारे ग्रामीण संस्कृति जुड़ी हुई है, वो किस तरह से और आगे लाभान्वित होगी।
2: आज 80वां स्वतंत्र दिन पूरे भारत में मना रहा है। इफको भी राष्ट्र की एक बड़ी संस्था है। राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जो काम किया है, इनको सफल बनाने में एक इफको का भी एक नींव है। इफको पूरे देश में जो अन्न उत्पादन है, किसान है, उनकी सुरक्षा के लिए, मिट्टी की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करिए, तो इस अपील को लेके हमने इफको ने पूरा संत्र को काम पे लगाया और ऑल्टरनेटिव दिया नैनो यूरिया का, जिससे अपनी मिट्टी खराब नहीं होती है, वायु खराब नहीं होता है, ना स्वास्थ्य को विपरीत असर नहीं होती है। और नैनो यूरिया सिर्फ 225 रुपये में मिलता है, जबकि नैनो के सिवा जो फर्टिलाइजर यूरिया है बेग, सरकार को करीब 4000 पोर्टल होती है, वो किसानों को 270 में देते हैं, तो काफ़ी सब्सिडी देनी होती है। विदेश से जो आता है देश का धन बाहर जाता है, तो स्वदेशी अपने ही देश में जो सब्सिडी न देनी पड़े, जो विदेश से मंगवाना न पड़े, इसी से देश की आर्थिक सुविधा को सुरक्षित करने का भी काम इफको के माध्यम से हो रहा है। हम इनको और आगे बढ़ा के जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरल खेती के लिए प्रधानमंत्री अपेक्षा रख रहे, इसी दिशा में हमें नया संशोधन करके देश के किसानों को अपनी आय, जो आज क्रॉप हो रहा है, इनसे ज़्यादा क्रॉप हो, पानी का सदुपयोग हो और क्रॉप ज़्यादा हो, इनके लिए इफको नया नया प्रयोग करके संशोधन करके देश के किसानों के लिए काम कर रहा है। आगे अगले दिनों में भी इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे।
1: सर एक सवाल और मेरा कि आपने लगातार प्राइम मिनिस्टर के विजन की बात की कि हम जो है किसानों को जो है उनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, तो कुछ प्रमुख उत्पाद जो कि किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुरक्षित रख रहे हैं और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: माननीय प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75 साल के बाद नया सहकारी मंत्रालय बनाया और उन्हें सहकार से समृद्धि को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए मॉडल बायलॉज पूरे देश में दिया। आज कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो स्टेट का विषय, फिर भी उन्होंने ऐसा मॉडल बायलॉज बनाया जिसे देश में समान रूप से सभी को लाभान्वित किया। सरकार ने इनके लिए काफ़ी योजनाएं किए, योजनाएं के बारे में हम बताएंगे तो काफ़ी समझ जाएगा, लेकिन इसी माध्यम से ही ग्राम ग्राम में रहने वाले मजदूर और खेती से जुड़े हुए मजदूर सभी का आर्थिक उत्थान और सलामती हो, इस दिशा में सरकार से समृद्धि का काम जो हो रहा है, इनमें इफको का रोल काफ़ी रहेगा।
1: सर आखिरी में आप प्रयागराज आए हुए हैं और आपका संदेश जो है प्रयागराज की जनता के लिए, इफको परिवार के लिए और जो भी किसान हमारे इस प्रयागराज के क्षेत्र में इफको परिवार से लाभान्वित होते हैं, इफको की जो सहकारिता समिति से लाभान्वित होते हैं, उनके लिए कोई संदेश?
2: प्रयागराज भूमि में आना गौरव समझते हैं, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के हिंदू समाज। प्रयागराज में यदि महाप्रभु का दर्शन हो जाए, देव का देव महादेव की ये भूमि है, इस भूमि के पवित्र रखने के लिए किसी भी केमिकल या किसी भी का प्रदूषण न हो और कृषि एक ऋषि की तरह अपने देश में आगे बढ़े, इसी दिशा में सबका सहयोग मिले, सब इनका ख्याल रखे, वही मेरी प्रार्थना है।
1: धन्यवाद सर आकाशवाणी प्रयागराज से बात करने के लिए।
0: हाँ देखा हो किसान भैया, इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी जी से दीपक राय जी एकदम फरियाए फरियाए पूछे।

और इफको का उपलब्धि रही। उकरे अलावा सहकारिता मंत्रालय के बारे में बताएं कि उकर का योगदान रहा देश में किसानन के लिए लाभ पहुंचावे के लिए। उकरे अलावा किसानन के आत्मनिर्भर बनावे के लिए किसान के आर्थिक उत्थान कैसे भ, समृद्धि कैसे भ, और इफको का उपलब्धि रही देश के विकास में, और बढ़िया से बताएं। उकरे अलावा प्रयागराज के गौरव के बारे में भी बताएं कि केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रयागराज जौन का एक भूमि न, यहाँ का प्रयागराज की भूमि पूरे विश्व में एक गौरव के रूप में जाना जाता। तब भैया बहुत अच्छे से दिलीप संघानी जी बताएं इफको के बारे में, उकर उपलब्धि के बारे में। और बात आज चलत रही कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किसानन भाई लोग जौन इतना योगदान करे हैं देश के आज विकास में, लगातार प्रयास करत हैं। देखो भैया किसान जौन है न, उन्हीं से हर देश का केवल भारत ही भरे के नहीं पूरी देश का ऋण जुड़ी बा। और कहे से भैया अन्नदाता हैं, कितनों विकास हो जाए लेकिन अगर अन्न न रहे ना तो उसे कुछ न हो। तो किसानन के अच्छे से अपन खेती किसानी करो बहुत जरूरी बा भैया। और देखे जो नए नए वैज्ञानिक भैया लोग नई तकनीक खोजत हैं, निजात करत हैं ना, तो ओकर भी उपयोग कई अपने खेती किसानी में अगर इस्तेमाल करी तो उनकर खेती किसानी बढ़िया होए और लगातार करत भी हैं। अच्छा किसान भैया लोग सोचत हुए कि आज 15 अगस्त के दिन कोनो गीत गौनई तो सुनाए नहीं हो, तो देखो भैया एक श्याम शंकर जी का देश गीत बा, आज वो स्वतंत्रता दिवस के दिन हुए तो एक बढ़िया देश गीत बा, देशवा हमार हो, ये सुना जाए फिर बात बत कही होए।

भैया, देसवा हमार भैया फुलवा के दोना। का बढ़िया श्याम शंकर जी देश गीत सुनायन, एकदम मन जौन बा एकदम बेहवल हो गए। और आशा बा कि किसान भैया बहनी जे भी सुने हुए ही न देश गीत एकदम झूमत हुए ही। इतना सुंदर और मधुर आवाज़ में ये देश गीत रहा। और भैया देखें, किसानन के उपलब्धि के बारे में जौन बातचीत होत रही ना भैया, देखें देश के स्वतंत्रता आंदोलन में तो बहुत सारे लोग जौन बा अपन कुर्बानी दहन, अपन पूरा जीवन सर्वस्व जौन बा नेछावर केहन, लेकिन जौन किसान भाई लोग भी हैं ना, उनकर भी योगदान जौन बा केहू से छिपा नहीं बा। हाँ, ये हो सकता था कि बहुत अगुवाई लीडर नहीं रहन, नेता नहीं रहन, लेकिन उनकर योगदान जौन बा ना, शुरू से लय कर चाहे चंपारण में नील आंदोलन, किसान आंदोलन से लय कर ओकर अलावा जौन अवध प्रांत में भी जौन किसान महासभा रही, वो सब आंदोलन रहा। और स्वतंत्रता के पूरे आंदोलन में बहुत सारे किसान आंदोलन भ हैं, उनकर विशिष्ट योगदान बा। और पहले कह रहा भैया इतना उद्योग धंधा नहीं रहा, इतने और सब भी बिजनेस विजनेस नहीं रहा, तो ज़्यादातर पूरे देश के लोग न किसान ही रहें, तो और बिना सबके लोग इनके आए न स्वतंत्रता ही मिलब मुश्किल रहा। कुछ चुनिंदा लोगन के वजह से बस ये देश के स्वतंत्रता नहीं मिलन बा, ये किसानन के वजह से मिला बा भैया। तो आप सब लोग इतना महत्वपूर्ण काम करे हैं, देश के स्वतंत्र कराए हैं भैया, तो आपके भी खुद पे भी गौरव करे के आज दिन हवे। तो आज स्वतंत्रता दिवस के जौन 80वां स्वतंत्रता दिवस हवे, आज सब लोग भगवान करें सब समृद्धि होए, पूरे भारत का कल्याण होए, लगातार देश विकास करे विकसित होए, और किसान भाई लोग भी निरंतर प्रगति करें, अच्छी खेती करें, बढ़िया से खेती करें, समृद्ध होए, देश समृद्ध होए, सब कुछ समृद्ध होए। तो आज के पंचायती में भैया इतना ही, फिर अगले पंचायती फिर मुलाकात होए। तो आज तक के लिए भैया राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:50 होने को ही हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में, बस प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचों जय हिंद।
1: पुनीता बहनी।
0: हाँ कृष्णा भैया।
1: देखो अपनी खेती पाती में खर्च हरदम लगा रहा करा था, कबों कबों तो ऐसा खर्च लगा था कि हम पंचन के देखा ही पड़ा था कि वो खर्च की व्यवस्था हम पंच कहाँ से करी।
0: बिल्कुल भैया, जब हमारे सबके सामने इतनी की परेशानी आवत है ना कि भैया जो बीज कहाँ से लाई, खाद कहाँ से लाई, पानी अपने खेतवन में कितना लगाई, यह खातिर देखो समय समय पर साल में यहाँ 3 बाजी अपन सरकार जो है हमका सबका 2,000 रुपया दे थे, जिसे हम अपनी खेती पाती में यहाँ सारे काम जो है वो कर सके थे अच्छे से।
1: बिल्कुल, किसान सम्मान निधि के रूप में हम पंचन के मिला करत हो पैसा, और वह समय मिला था जब अपन जुताई होत रहा था, कटाई होत रहा था, मड़ाई होत रहा था,
0: जब खेती पाती में सबसे ज्यादा जरूरत होते।
1: बिल्कुल बहनी ये तो सही बात है।
0: और इसके अलावा भैया देखो, हम सब पंच भाई के यहाँ ये जानकारी जो नहीं होती है अपने आसपास अपने खेती पाती से संबंधित, उन्होंने के बहुत जरूरी होते हैं, तो भैया यह क्रम में सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: गन्ना किसानों के लिए अहम खबर। लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी ICAR, IISR और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के बीच गुणवत्तापूर्ण गन्ने के बीज के उत्पादन और उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। समझौते के तहत क्वालिटी शुगर केन के सीड प्रोडक्शन के लिए एडवांस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रोगमुक्त, शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ने का बीज उपलब्ध कराना है। इस पहल से किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों का गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, साथ ही लाल सड़न जैसी गन्ने की प्रमुख बीमारियों से फसल को बचाने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर और रोग मुक्त बीज मिलने से गन्ने की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। इससे चीनी की रिकवरी बेहतर होने और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यह समझौता गन्ना किसानों तक अच्छे बीज की पहुंच बढ़ाने, फसल की उत्पादकता सुधारने और गन्ने की खेती को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
1: अपुनीता बहनी।
0: हाँ
1: देखो, अपने बीच में अपने घरे दुआरे जोन बा जोन हराहा गोरु है ना, गैया है, भैंसी है, दूध दे वाले हैं, गाभिन है, तो उनकी हरा चारा साल भर कैसे मिले, हम पंच कौन प्रबंध करी, ऐसी कुछ पत कही आज अपने बीच में है।
0: बिल्कुल भैया, तो सुन लीन जाए आज की बातें। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन। और भैया वार्ताकार है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह।
1: आवाज सुना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं, वहाँ वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड मझरा लखीमपुर खीरी से डॉक्टर आर के सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। जहाँ पशुपालन से जुड़े हैं किसान भाई बहन, पूरे साल हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें।
4: नमस्कार, ये समसामयिक विषय है और मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर है। पहला, उत्तम नस्ल के दुधारू पशु एवं पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिकांश किसान हमारे देसी नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। इन पशुओं का जीवन निर्वाह सूखे चारे पर निर्भर रहता है। इन सूखे चारे से कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पशुओं को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, आवश्यक पोषक तत्व तो खनिज मिश्रण वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। प्रचुर मात्रा में हरा चारा एवं पौष्टिक चारे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और

पशुओं में उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए एवं विकारों को नियंत्रित रखने के लिए हरा चारा प्रतिदिन आहार में देना अति आवश्यक है और हरे चारे से कैरोटीन की पूर्ति होती है। दुधारू पशुओं में विटामिन ए हरे चारे से ही पहुंचता है और हरे चारे में पहुंचने के साथ साथ वो पशुओं के माध्यम से फिर मनुष्य के शरीर में भी विटामिन ए जो मिलता है वो दूध से वो इसी तरीके से आता है। मुख्य रूप से दलहनी चारों पशुओं की आवश्यकता प्रोटीन की करते हैं और दलहनी और अदहलिनी चारों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसलिए जब भी किसान भाइयों को प्राथमिक बात इस बात

0: तो क्या अभी भी गुंजाइश है?
1: अभी 15 दिन तक किसान भाई हमारे खरीफ चारे की बुआई कर सकते हैं। और खरीफ में उगाई जाने वाली जो चारा फसलें हैं उसमें मुख्य फसल है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मकचरी है, और दलहनी फसलों में लोबिया, ग्वार, ये मुख्य फसलें हैं।
0: तो इनकी कुछ खास प्रजातियां होंगी?
1: हाँ, खरीफ की मुख्य चारा की फसलें, उनकी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, लेकिन मुख्य प्रजातियों की हम बात करें तो जैसे एक कटाई वाली किस्में होती हैं उसमें पूसा चरी 6 है, पूसा चरी 9 है, हरियाणा चरी है, हरियाणा चरी 117 नंबर, हरियाणा चरी 260 नंबर, यूपी चरी, पंत चरी 23 नंबर, ये चरी हैं जो कि एक कटाई वाली हैं। और इनकी अगर हम बुआई करें तो इसमें 35 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमको को हरा चारा मिल
0: यानी
1: जाता है।
0: ढाई एकड़ में,
1: जी,
0: और एकड़ की बात करें तो लगभग 16 से 20 कुंतल।
1: 16 से 20 कुंटल प्रति एकड़ में।
0: और बहु कटाई वाली किस्म?
1: किसान भाइयों, अगर हम बहु कटाई वाली किस्मों की बात करें उसमें SSG 9 8 8, SSG 9 8 9, SSG 8 5 5, PC 23, PC 29, ये मुख्य रूप से हैं। और जो बहु कटाई वाली किस्में, इनमें भी लगभग इसको हम 3 बार खरीफ के सीजन में कटाई कर लेते हैं। इससे हमको लगभग 110 से 130 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, जहाँ हरे चारे के लिए मक्का लगाना चाहते हैं या बाजरा लगाना चाहते हैं या लोबिया लगाना चाहते हैं, तो इनकी प्रजातियाँ?
1: मक्का की अफ्रीकन टाल प्रजाति, विजय कंपोजिट प्रजाति, मोती कंपोजिट मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं। और मक्का तो लगभग साल में 2 से 3 बार की बुआई हो जाती है, और उपज जो है इससे 35 से 60 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में जो मुख्य प्रजातियां हैं उसमें जॉइंट बाजरा UUJ 4M, TNSC 1, FMH 3, और इनकी उपज लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति टन प्राप्त हो जाती है प्रति हेक्टेयर। और अगर लोबिया की बात करें तो लोबिया में 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक लोबिया होती है कि सब्जी वाली लोबिया होती है, और एक दूसरी लोबिया होती है जो कि चारे वाली। तो हमारे पशुपालक बंधुओं को चारे वाली की प्रजाति ही बोना चाहिए,
0: जैसे
1: जैसे एशियन जायंट है, EC 4216 है, बुंदेला लोबिया बहुत फेमस है, 2 बुंदेला लोबिया 2, बुंदेला लोबिया 1, और EC 4216, और UPC 287, ये मुख्य प्रजातियां हैं। और लोबिया की उपज में 2 चीज़ें होती हैं, इसमें तो फली भी कुछ किसान भाई हमारे चारे के साथ खिला देते हैं, और उपज इसमें 30 से 45 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो रहा खरीफ के चारे की बात। जहाँ रबी में चारा उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहाँ कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी कौन सी प्रजातियाँ?
1: किसान भाई, सीजन के हिसाब से और जगह के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से रबी की चारा फसलें जो मुख्य हैं उसमें जई है। जई की जो प्रजाति है कैंट है, OS 6, OS 7, UPO 94, 212, बुंदेला जई 822, 851, ये मुख्य रूप से जई की प्रजातियां हैं।
0: और बरसीम की?
1: और बरसीम की मुख्य रूप से मेस्कावी हो गई, बरदान हो गई, BL 1 हो गई, BL 10 हो गई, बुंदेला बरसीम 2 हो गई, और बुंदेला BL 22, JB 1, JB 2, JB 3, ये बरसीम की उन्नत नस्ल की अधिक उपज देने वाली हमारी चारा की फसलें हैं।
0: रबी हरे चारे में लूसर्न भी है?
1: रवि हरे चारे में लूसन बहुत क्षेत्रों में बोया जाता है, खास तौर से बुंदेलखंड रीजन में, और लूसन बहुत ही अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको कुछ क्षेत्रों में लूसन या रिजका या कहीं कहीं अल्फा अल्फा भी कहते हैं। अगर लूसन की बात करें तो लूसन की जो मुख्य प्रजाति है LUSN RL 88, चेतक 244, सिरसा टाइप 98, NDRI SELCAN 1, आनंद 3, NDRI SELECTION 1 और आनंद 3 RL 88, ये मुख्य रूप से हैं।
0: जहाँ जायद में सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं, वहाँ किसान भाई बहन हरा चारा उत्पादन करना
1: हाँ,
0: चाहेंगे?
1: किसान भाई, जहाँ पे, क्योंकि रवि खरीफ के साथ साथ जायद भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और इस समय अक्सर चारे की कमी हो जाती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे जापानी ज्वार, मक्का या लोबिया हम पर्याप्त मात्रा में लेके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: कुछ ऐसे बहुवर्षीय चारे जो पूरे साल किसान भाइयों बहनों के पशुओं के लिए आहार बने?
1: हाँ, पशुपालक भाइयों, देखिए, सफल पशुधन व्यवसाय के लिए वर्ष भर हरा चारा अत्यंत आवश्यक है। वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। ओवरलैपिंग का मतलब, किसान भाइयों, एक फसल के ऊपर दूसरी फसल की बुआई कर देना।

0: और अधिक चारे के लिए मिश्रित खेती करना, और तीसरा है खाद्यान्न फसलों के बीच स्थित जो रिक्त स्थान है, जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें अतिरिक्त चारा प्राप्त कर सकते हैं, और खाद्यान्न फसलों के बीच के खाली समय में, जैसे कि रवि की कटाई के बाद मई जून के महीने में हमारा, और खरीफ की बुआई से पूर्व 60-70 दिन का समय मिलता है, इसमें भी अगर हम मक्का प्लस लोबिया या चरी प्लस लोबिया या बाजरा प्लस लोबिया की मिलवा खेती कर लेते हैं तो लगभग 250 से 300 कुंतल हरा चारा प्राप्त हो सकता है।
1: अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे वर्ष भर हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 94155-77915, 94155-77915, 94155-77915।
1: डॉक्टर राकेश कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ कृष्णा भैया।
3: देखो बतकही तापन बहुत होगी, जानकारी भी होगी अपन, लेकिन आज है 15 अगस्त।
4: हाँ? वैसे जो देश प्रेम होते ना, हर आदमी के अंदर पूरा कूट कूट के भरा रहा थे, लेकिन जो आज के दिन आवत है यू दिन कुछ विशेष होते और ई अवसर पर अपने देश के प्रेम के रंग जो होते वो कुछ अलगे होते।
3: तो बहनी यह अवसर पे सुना जाए एक देशभक्ति गीत विवेकानंद व्यास के स्वर में।

0: कृष्णा भैया।
1: हाँ पुनीता बानी।
0: भैया देखो, जैसे हम सब जने अनाज उत्पादन करे थे, कुछ पंच भाई हमारे फूल उत्पादन करते हैं, बागवानी करते हैं, ये इतना कुछ पंच भैया लोग जो हैं वो सब्जी उत्पादन करते हैं और सब्जी उत्पादन कर करके अपन जो है जीवन यापन करते हैं।
1: तो बहनी, आज के किसान हैं रुद्रपाल सिंह भैया, जो सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक के पाल्हापुर गांव के रुद्रपाल सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, हमारे पास 12 एकड़ जमीन है।
2: सब्जियों का रकबा कितना है इस समय?
3: सब्जियों का रकबा 4 एकड़।
2: तो 4 एकड़ में आप मचान पर सब्जी की खेती के लिए भी जाने जाते हैं?
3: जी हाँ, हमने 2 एकड़ पे मचान की खेती की है।
2: इसकी बुआई कब की आपने?
3: हमने इसकी बुआई दिसंबर के मध्य में कर दी थी और उसको प्लास्टिक से ढक के,
2: यानी
3: लो टनल बना के किया है।
2: तो कौन कौन सी सब्जियां आपने उगाई?
3: इसमें करेला और तोरई दोनों मचान पे।
2: जमाव कब तक हुआ?
3: जमाव इसका 15 दिन में हो गया था।
2: हाँ, और लो टनल कब तक लगाते हैं?
3: लो टनल हम जनवरी 15 जनवरी तक लगाए, जैसे मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है फिर उसको हम हटा देते हैं। जब तापमान अच्छा हो जाता है तो हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं और फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है।
2: तो कोई खास वैरायटी की तरोई और करेला लगाए?
3: हाँ, हमने करेला 2 वैरायटी थी, एक अमनश्री और दूसरा रुसान।
2: मचान पर तरोई और करेला उत्पादन में आप ध्यान में रखते हैं?
3: देखिए, इसको हर हाल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लगा देना चाहिए। बीज लगाने से पहले उसको भिगो के और जर्मिनेट करने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें अंकुरण हो जाए।
2: जी।
3: दूसरा ये कि उसको तुरंत लो टनल बना के उसको ढक देना चाहिए, जिससे गर्मी रहे और पौधा तैयार हो जाए।
2: तो पहली फलत कब से चालू हुई?
3: पहली फलत मार्च में स्टार्ट हो गई थी, 4 मार्च को हमने तरोई निकाल दी थी।
2: और करेला?
3: करेला हमारा 14-15 मार्च को निकला है, तब से लगातार उत्पादन मिल रहा है।
2: इस समय क्या स्थिति है गर्मी में उत्पादन लेने के बाद करेला और तरोई में?
3: नहीं, इस समय उत्पादन तो हो रहा है लेकिन रेट्स बहुत अच्छे नहीं है। विगत वर्ष में हमने इसको समाप्त कर दिया था।
2: अच्छा।
3: लेकिन इस बार हमने ट्रायल किया है कि इसको रखा जाए,

0: अच्छा, पहले आप गर्मी खत्म होने के साथ ही बरसात के पहले ही इसको खत्म कर दें, लेकिन इस बार बरसात भी चलाएंगे
1: इसको हम बरसात भर चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये सितंबर तक चलेगा।
0: लगातार। आपको उत्पादन मिल रहा है, तुड़ाई हो रही है,
1: तोड़ाई हो रही है।
0: तो गर्मी में कैसा अनुभव रहा आपका तरोई और करेला का?
1: देखिए, इधर मई से इसके रेट्स काफी डाउन हुए। शुरू में अगर आप देखें तो रेट्स हमारे 8,000 रुपये कुंटल तक के रेट शुरुआत हुए थे, फिर मैं ये 600 रुपये कुंटल पे आ गया। जब इसका अभी तक का हमने एवरेजिंग किया है तो हमारे तरोई का एवरेज 20 रुपये कुछ पैसे है
0: किलो
1: किलो।
0: तो ठीक ही है।
1: जी,
0: और करेला में?
1: करेला का उत्पादन तरोई से कुछ कम है और इसका रेट 27 रुपये प्रति किलो। टोटल हमने निकाला कि कितना हमारा उत्पादन अब तक हुआ है और उसमें कितने रुपए आए, उसको हमने डिवाइड करके निकाला है तो उससे रेट निकला है।
0: मचान पर जब करेला और तरोई का उत्पादन आप कर रहे हैं तो उसका अंतरण क्या रखते हैं? क्या रिज पर बुआई करते हैं?
1: जी हाँ, इसकी बेड बनाते हैं, ड्रिप पे करते हैं
0: अच्छा,
1: और उसके बाद मल्चिंग करते हैं, बनाते हैं, उसमें बीज की बुआई करते
0: तो
1: हैं।
0: लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी?
1: पौध से पौध की दूरी 1.5 फिट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फिट।
0: और फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
1: ये सब बड़ा आसान है, हमारे पास ड्रिप सिस्टम है
0: हाँ,
1: और हम सारे साल्वुल फर्टिलाइजर देते हैं।
0: यानी जल विलेय उर्वरक
1: जी
0: फर्टिगेशन के माध्यम से
1: जी फर्टिगेशन माध्यम
0: पानी
1: से
0: और खुराक साथ साथ,
1: साथ साथ देते हैं।
0: तो इसका अंतरण क्या होता रहता है?
1: ये हम लगातार हर तीसरे दिन में एनपीके, फिर एनपीके के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका एक शेड्यूल बना रखे हैं। तो हमारा 2 दिन के गैप में हम लगातार इसको देते हैं,
0: और उसका असर फलत पर दिखता है?
1: बहुत अच्छा आता है।
0: कुछ रोग दोख और कीड़े मकोड़ों की भी समस्या आती होगी?
1: हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस समय ब्लाइट आती है,
0: जी,
1: तो उस समय हमको अच्छे फंगिसाइड की जरूरत होती है और अच्छा फंगिसाइड हमको स्प्रे करना पड़ता है। फल मक्खियाँ लगती हैं, इसमें फल मक्खियों का प्रबंधन करना पड़ता है।
0: तो क्या कुछ आईपीएम के उपाय भी अपना रहे हैं?
1: जी हाँ,
0: फल मक्खी ट्रैप लगाते हैं?
1: ट्रेप लगाते हैं, ट्रेप से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन हमको स्प्रे भी करना पड़ता है।
0: अगर नुकसान का स्तर अधिक होता होगा तब,
1: जी
0: ऐसी उम्मीद है। इस समय भी निकासी चालू है?
1: जी हाँ, इस समय निकासी चालू है। देखिए, जितना उत्पादन हो चुका है अब उतना उत्पादन तो नहीं होगा।
0: लेकिन अगर अभी तक के उत्पादन का आंकड़ा निकालें
1: जी
0: तो अब तक कितनी लागत गिरी, कितना तक उत्पादन लिए और आपका मुनाफा अब तक कितना हुआ?
1: देखिए, अब तक का हमारा जो तरोई का है वो 150 कुंटल क्रॉस किया है 1 एकड़ में
0: जी
1: और उसका रेट 20 रुपये के
0: जी
1: करीब में है,
0: हाँ,
1: और वहीं 125 कुंटल करेला किया है जिसका रेट 27 रुपये है,
0: तो लगभग करीब है,
1: करीब करीब है दोनों का,
0: तो लगभग 3 लाख तक पहुंचे।
1: 3-3 लाख पर एकड़ इसमें आया। और लागत हमारी
0: हाँ,
1: तरोई में थोड़ी कम है, करेले में ज़्यादा है।
0: लेकिन कुल लागत की बात करें तो कितनी लागत गिरती है साल में?
1: लागत 2 लाख रुपए दोनों में मिला के,
0: तो आपकी बचत हुई कितनी?
1: बचत हमारी दोनों फसल में 4 लाख रुपए की।
0: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हमारी यही सलाह है कि यदि सब्जी की खेती करनी है तो हमको बहुत ही अर्ली तैयारी करनी चाहिए।
0: या विलम्ब से?
1: विलम्ब से भी की जा सकती है लेकिन अर्ली के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या तो फिर लेट किया जाए, क्योंकि अब जो आएगी सब्जियां उनका रेट ठीक रहेगा।
0: और कौन कौन सी बारीकी रखें?
1: बीज का चयन ठीक करें, बीज का शोधन करें, कीड़े लग जाते हैं कभी कभी जड़ों में, उसका प्रबंधन करें, देखते रहें कि उसमें क्या बीमारी है और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
0: और रकबे में क्या कर रहे हैं आप 10 एकड़ में?
1: और हम धान 2 एकड़ में, गन्ना और सरसों, गेहूं, ये सब हमने किया है, और हमारा 2.5 एकड़ का एक मछली का तालाब भी है।
0: अच्छा, और
1: तो
0: कुछ
1: उसमें
0: औषधि खेती भी कर रहे हैं?
1: हाँ, 2 एकड़ में हमने औषधि की खेती की है, जल ब्रह्मी।
0: तो कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
1: जी ठीक है,
0: साल में कितनी बचत हो जाती है?
1: साल में 10 लाख रुपए के ऊपर ही बचत हो जाती है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 77-55-85-76-99।
0: और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
1: जब मैं खेती में आया तो उद्यान विभाग के संपर्क में आया और उनसे काफ़ी जानकारी की, सरकारी योजनाओं का हमने लाभ लिया, खास तौर पर जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है।

0: है वो बहुत ही खेती को आसान बनाती है, जिसमें सिंचाई हम जितनी चाहते उतनी दे सकते हैं, फर्टिगेशन जितना हम चाहते उतना कर सकते हैं, और अगर किसान भाई इसका लाभ लें तो उन्हें भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है।
1: रुद्रपाल सिंह भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: पुनीता बहनी।
6: हाँ कृष्णा भैया।
5: देखो अपन किसान बाणी कार्यक्रम कैसा लगा पंच भाई इनके, इकरे बारे में अगर वो अपन पाती लिखा चाहें और अपन सुझाव देवा चाहें तो पता बताए दिन जाए।
6: भैया हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
5: और कुछ पंच भैया ईमेल के माध्यम से अगर सुझाव दे चाहते हैं या सुझाव कुछ मांगा चाहते हैं तो वो पता है फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
6: यही के साथ भैया अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

प्रादेशिक समाचार एकांश लखनऊ की तरफ से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अगले 7-8 वर्षों में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, निरक्षरता और असमानता से पूर्ण मुक्ति भी है, जिसके कारण देश लगातार कमजोर हुआ है।
2: आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को यूथ पॉलिसी का तोहफा दिया। उन्होंने यूथ पॉलिसी

0: इसी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे भविष्य में युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ अधिकारी सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जवान इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए किसी एक समूह, जाति, संप्रदाय का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जनभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। कार्यक्रम में जनभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि अन्य मंत्रियों ने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लिया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक अश्मिता डे को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को आज अपने सरकारी आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों से संवाद भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 75 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वे मेरठ में कुख्यात अनिल दुजाना से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। हरियाली तीज का त्यौहार आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अयोध्या में सावन झूला मेला की शुरुआत आज से हो गई है। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: श्रावण शुक्ल तृतीया पर ऐतिहासिक मणि पर्वत स्थल से पखवारे पर चलने वाला सावन झूला मेला शुरू हुआ तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला के विग्रह को परिसर का भ्रमण कराया गया। इसी के साथ प्रमुख मंदिरों में सिया राम के चल विग्रह और स्वरूप रथों पर सुशोभित होकर मणि पर्वत स्थल पहुँचे। वैदिक रीति से पूजन के बाद विग्रहों को विशालकाय वृक्षों पर पड़े झूलों पर सुशोभित किया गया और फिर श्रद्धालुओं ने भगवान के विग्रहों को झूला झुलाकर और मधुर उपासना के गीत से भक्तिमय वातावरण सृजित कर दिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आप ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय भालचंद्र खेर की वार्ता, जिसका विषय है स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की भूमिका।
2: जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। आज हम अपने देश की अंग्रेजों से स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। वह स्वतंत्रता जो प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और जिसके लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सन 1916 में अहमदनगर अहिल्याबाई नगर महाराष्ट्र में एक जनसभा में घोषणा कर चुके थे, और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस आत्मविश्वास के पीछे थे लगन, धैर्य और जुझारूपन एक व्यक्ति विशेष के नहीं, भारत माता की करोड़ों संतानों के। क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्योंकि सभी आक्रांत थे, त्रस्त थे एक निरंकुश परकी सत्ता से जिसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को अंधाधुंध लूटना, अपने देश ग्रेट ब्रिटेन की सम्पन्नता बनाए रखने के लिए। जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा भी। लेकिन क्या आज़ादी मिलने का हमारा नहीं, उस समय की समूची जनता विशेषकर स्वातंत्र्य वीरों का सपना यूं ही पूरा हो गया? नहीं, उसके पीछे थे त्याग और बलिदान, स्वार्थ के, सर्वस्व के, और उसके साथ थे प्रेरणादायी संबल के। आज़ादी पाने के लिए उत्साह, उमंग, जोश और सक्रियता चाहिए। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, साधन भी चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम वह अंतर प्रेरणा जो कदम उठाने बढ़ाने का आधार बने, और यह अंतर प्रेरणा प्रदान की हमारे साहित्य और साहित्यकारों ने। विदेशी शासन की कमियां, विद्रूपता, क्रूरता और दुर्भावना बताकर तथा नौजवानों आम जन को संघर्ष का उद्देश्य प्राप्ति का रास्ता दिखाकर। किसी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है कि वह समाज को जैसा है वैसा ही दिखा देता है, लेकिन सच यह है कि साहित्य उससे कहीं आगे है। वह केवल यथार्थ वर्णन न करके उच्च आदर्शों, ध्येयों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर उन पर चलना भी सिखाता है अपनी आशावादी क्रियात्मक सोच के साथ। यही कारण है कि दुनिया में जहां भी बड़े बदलाव हुए हैं वे कहीं न कहीं, या यूं कहें कि वास्तव में किसी उच्च साहित्यिक सोच की ही परिणति रही है। यही बात हमारे स्वाधीनता संग्राम की सम्यक व्यवस्थित दिशा तय करने में हमारे साहित्य की भी रही है। कलम के सिपाहियों ने, जिनमें कई सक्रिय सेनानी भी रहे, आजादी के तलवार की धार को कुंद किया है। अपने पैने वारों से जन भावना को, मानस को उद्वेलित कर, प्रेरित कर उस महायज्ञ में आहुति देने के लिए जो सबका था, साझा था देश की आजादी। साहित्य के जाम्बवंतों ने देशभक्त हनुमानों को ललकारा था, का चुप सादी रहा बलवाना, और उनके सुप्त पौरुष की याद दिलाकर। स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की भूमिका दीर्घकालिक थी, सर्वतोमुखी थी, बहुआयामी थी। तभी तो वह लोगों का विश्वास जीत सका साथ चलने के लिए। जहां उसने लोगों में जन समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा की, वहीं बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा उन्हें संगठित भी किया। देशभक्ति की कविताओं व गीतों ने देश के प्रति सम्मान और प्रेम भाव पैदा किए, तो अपनी सभ्यता व संस्कृति के प्रति गौरव की भावना भी बढ़ाई। साहित्य ने आम जन के मानसिक बंधनों को तोड़कर उनमें एका पैदा किया और उसे एकमात्र सर्वोच्च ध्येय आजादी के लिए प्रयास करने की ओर मोड़ दिया। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, वैसे तो पत्रकारिता को लिटरेचर इन हरी, जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य कहते हैं, लेकिन भारत की स्वाधीनता के संदर्भ में साहित्य और पत्रकारिता में चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि कई साहित्यकार पत्रकार

थे, तभी तो एक बहुत बड़े वर्ग तक स्वाधीनता प्राप्ति की भावना पहुंच सकी। साहित्य की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की चर्चा में जो सर्वप्रथम नाम आता है वह है प्रसिद्ध पत्रकार हेरम मिश्र की पुस्तक संपूर्ण पत्रकारिता के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जिस समय तक अखिल भारतीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली संस्था कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय उनकी वाणी राष्ट्रवाणी बन गई थी। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंत तक भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा ने 1857 के गदर की दबी चिंगारी को फिर अंगार बनाने की ठोस पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने उसकी प्रतियां लेना बंद कर दिया था। यह मासिक से पाक्षिक से साप्ताहिक बनी। राष्ट्रीय संघर्ष के कारण यह सरकार की कोप भाजन बनी। उनकी हरिश्चंद्र मैगजीन के 1873 के प्रथम अंक में राष्ट्रीय साहस का परिचय देखें, जिसमें अंग्रेजों से एक प्रश्न है, आप इंग्लैंड के हो या हमारे? यदि आप हमारे हैं तो क्यों हमारे देश को इतना पीड़ित कर रहे हैं? यदि प्रजा में हैं तो उसे अजासी बलि क्यों देते हैं? यदि जन में हैं तो फांसी देकर क्यों मारते हैं? दूसरे अंक के कलराज की सभा शीर्षक व्यंग्यात्मक लेख में लिखा, कलयुग के दाहिनी ओर KCSI कलयुग का सगा भाई बड़ा अन्यायी चश्मा लगाए अंग्रेजी की खुशामत में जन्म गंवाए बैठा है। जब प्रकारांतर से भी कुछ आलोचना करना अपराध था, निवेदन के रूप में भी देशवासियों का दुख चित्रित करना विद्रोह था, भारतेंदु जी अपनी कचोट व्यक्त करते रहे, प्रभु जी ऐसे दिन कब आई हैं, भारत के धन भारत रही हैं, कबहू विदेश न जाइए। और जब उस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, तब साहस पूर्वक यह पहली प्रकाशित की, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से सब तन मन मूसे, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सकी साजन, नहीं अंग्रेज। अतः समाज के विचारों और साहित्य की संवाहिका पत्रकारिता पुस्तकी साहित्य की सधर्मी बनी। आगे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, आनंद मठ के गीत, वंदे मातरम, जिसे हमारी संसद राष्ट्रगान के समान ही महत्ता प्रदान कर राष्ट्रगीत घोषित कर चुकी है, राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख संबल बन गया। अपने मूल संदेश जननी की आराधना के माध्यम से मातृभूमि की स्तुति और वीरत्व का भाव पैदा करने वाला यह गीत देशभक्तों को फांसी का फंदा चूमने तक के लिए प्रेरित करता और कांग्रेस के सन 1896 से वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ इससे होता था। अगस्त 1905 को कोलकाता के ऐतिहासिक टाउन हॉल के मैदान पर इसका उद्घोष अखंड सांस्कृतिक पहचान का शाश्वत प्रतीक बन गया। कवि और पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रवादी चेतना से पूर्ण कविताओं के तीखे स्वर से जहां हमारे नविकों को देशभक्ति की भावना से भर दिया, वहीं उनके मन मंदिर से नए राष्ट्र का अंधकार भी दूर किया। प्रभा दैनिक के संपादक गांधी जी से जुड़े सक्रिय राजनीति के कारण कई बार जेल भी जाने वाले माखनलाल जी ने पुष्प की चाह कविता में लिखा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बन माली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत एवं राष्ट्रीयता के भावों से परिपूर्ण सोहनलाल द्विवेदी जी ने ओजपूर्ण गीतों में अपनी अभिव्यक्ति की, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते शूली को लेते चूम, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते शूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पर जाते हैं विष का धूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम, उन्हें प्रणाम। अपने युग के सबसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी लेखनी द्वारा नई शक्ति एवं बल का संचार करने वाली मुकुल काव्य संग्रह की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान ने झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग जैसी कविताओं के साथ ही अपनी अमर रचना झांसी की रानी के माध्यम से वीर क्रांतिकारियों स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भर दिया। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी।

नहीं थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी कलम से लिखवाया, हिमादि तुंग शिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, हिमादि तुंग शिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जहां मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों पूस की रात, रंगभूमि आदि में किसानों, शोषितों और आम जन के दर्द को दिखाया, वहीं राष्ट्रीयता के भाव को भी स्वर दिया। महाकवि निराला ने देश के युवाओं को उद्बोधन इस प्रकार किया, अमृत संतान शेरों की मान में आया है आज सियार, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, समर सरताज तुम हो महान, तुम सदा हो महान। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार के साथ ही क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सन 1942 में अररिया शहर में उन्होंने 10,000 की भीड़ का नेतृत्व कर हमारा तिरंगा फहराया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास के समय बूटों से कुचलकर मारा जाता था व सिगरेट से दागा जाता था। पंडित रामचंद्र नारायण तिवारी प्रदीप ने 1940 के दशक में ओजपूर्ण कविताओं व फिल्में गीतों के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के जुलूसों व सभाओं में जोश भर दिया था। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने जो बात H.W. कसिंघम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही थी कि सर्वोत्तम पत्रकारिता साहित्य है और सर्वोत्तम साहित्य पत्रकारिता है, वह हमारे स्वातंत्र संग्राम में सक्रिय योगदान देने वाले हिंदी पत्रकारिता के जनक, आज दैनिक के संपादक व नमक सत्याग्रह के पश्चात रणभेरी दैनिक से राष्ट्र सेवा करने वाले बाबूराव विष्णु पराड़कर जी पर अक्षरशः लागू होती है उनकी पत्रकारिता के प्रभाव से। वे राज बिहारी बोस तथा अरविंद घोष के संपर्क में आकर सक्रिय क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक भी बने, 3.5 वर्ष की नजरबंदी भी सही, लेकिन स्वातंत्र वीरों को अपने पत्रकारिता साहित्य से प्रेरित करते रहे। भारतीय जनमानस एवं संस्कृति के सशक्त प्रवक्ता बाबू मैथिली शरण गुप्त अपनी राष्ट्रीयता से भरी कविताओं के कारण कई बार जेल भी गए, लेकिन भारत भारती जैसी रचनाओं से विरत नहीं हुए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग तथा सुकवि पत्र के संपादन से बलिदानी शौर्य भरने का तुल्य कार्य किया। स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय क्रांतिकारी अग्रदूत, महान लेखक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भगवती चरण वोहरा के अत्यंत करीबी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे ने अपनी प्रसिद्ध रचना शेखर एक जीवनी जेल में लिखी थी। नमक सत्याग्रह पर PhD कर जर्मनी से लौटे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर कई बार जेल जाकर भयानक अमानवीय यातनाओं के बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहना विशेष रूप से स्तुत्य है। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक वीरों व साहित्यकारों ने भागीदारी की। दक्षिण में जो एक नाम इस श्रृंखला में सदा के लिए अमर हो चुका है, वह है राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक, आधुनिक तमिल काव्यधारा के अग्रदूत, महान कवि, काव्य में राष्ट्र प्रेम, जन्मभूमि के कण कण के प्रति अगाध ममत्व, श्रद्धा का मूल स्वर रखने वाले सुब्रमण्य भारती जी का। आपकी राष्ट्र भावना वाली कविताओं को अंग्रेजों द्वारा देशद्रोह माना जाने कारण आपको सेतुपति हाई स्कूल में अध्यापकी गंवानी पड़ी, लेकिन आपने समझौता नहीं किया। आपकी जनसंगम नामक संस्था ने हिंदी का हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। 1906 में देश के स्वदेशी आंदोलन में तमिलनाडु में उसके नायक श्री चिदम्बरम पिल्लई को राष्ट्रद्रोही बताकर 40 वर्ष का सश्रम कारावास दिए जाने पर, अपार अमानुषिक यंत्रणाएं दिए जाने पर भारती जी ने अपने विद्रोही तेवर, स्वदेशी गीत, जनभूमि जैसी स्वतंत्र कृतियों एवं स्वदेश मिलन जैसे समाचार पत्र में दिखाई दिए। ऐसे ही न जाने कितने साहित्य साधकों ने हमारी स्वाधीनता को वीरों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों के माध्यम से संभव बनाया। उन सभी को
श्रद्धा।

0: पूर्वक नमन।
1: स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की भूमिका। श्रोताओं, आज के हिंदी कार्यक्रम में अभी आपने इस विषय पर अजय भालचंद्र खेर की ये वार्ता सुनी। इसी के साथ अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त हो चला है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं दिव्या श्रीवास्तव। इनके स्वर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक दो भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए मीराबाई की ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और हमारी कलाकार हैं दिव्या श्रीवास्तव। मीराबाई की इस भक्ति रचना के बाद प्रोग्राम के आखिर में इनके स्वर में सुनिए अभिलाष दास का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप अभिलाष दास का लिखा ये भजन सुन रही थी दिव्या श्रीवास्तव के स्वर में। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी प्रयागराज का प्राइमरी चैनल मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है। अगला प्रसारण अब से थोड़ी देर में, बस थोड़ी प्रतीक्षा।

0: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।
1: नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित बहनों और भाइयों, देश के 80वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज का यह दिन उन लाखों वीरों के संकल्प को स्मरण कराने का दिन है जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर देश की

माओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी अमर वीर सपूतों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज जब भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश भी डबल इंजन सरकार के माध्यम से विरासत और विकास के साथ ही उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग तक, युवा शक्ति से स्टार्टअप तक, डिफेंस से डीप टेक तक प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज केवल बदला नहीं बल्कि भारत के बदलाव की गति भी तय कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रदेश को नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कानून व्यवस्था में व्यापक बदलाव के साथ आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश बीमारों से देश के ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्ष में अपने बजट को 3 गुना, GSDP 3 गुना और प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। वीमेन वर्कफोर्स की सहभागिता 3 गुना से अधिक हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय, वन डिवीजन वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में प्रदेश ने मजबूती के साथ कदम बढ़ाया है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश के पास 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्रस्ताव के माध्यम से 65 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। 4 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में 2.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 96 लाख MSME इकाइयां, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक जैसे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और STPI जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण करने के लक्ष्य की ओर यूपी बढ़ा है। CM अभ्युदय विद्यालय, PM श्री विद्यालय, CM कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट पिछले 9 वर्ष में 19% से घटकर 3% रह गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हुई है। अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। प्रदेश में आयुष्मान योजना से 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी आच्छादित हैं। विगत 9 वर्षों में 65 लाख से अधिक गरीबों को एक

0: पक्का आवास उपलब्ध कराया गया, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई, 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया हो या मुसर, थारू, चेरू, बुक्सा, सहरिया, कोल, इन सभी वंचित समुदायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक अब तक संपन्न किया है। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओस आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को गति मिली है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिला शक्ति की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस की भर्ती में अनिवार्य रूप से 20% महिला शक्ति का प्रवेश हुआ है। हमारा लक्ष्य आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने का है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% से अधिक हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक अन्नदाता किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को, उनके परिवार के सदस्यों और बटाईदारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 16 लाख किसानों को उनके निजी ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का सृजन किया गया है। हम ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां विरासत का संरक्षण भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता को गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान कराने के लिए युवाओं को नई यूथ पॉलिसी के साथ जोड़ने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपनों को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो, डबल इंजन सरकार की ये संकल्प दृष्टि है। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने हमें आज़ादी दी, अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्धि, सामर्थ्य और स्वाभिमान की नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यही स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और राष्ट्र के प्रति हमारा संकल्प है। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनिए संगीत स्वरों में देशभक्ति पूर्ण रचना।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर इस वक्त ट्यून किया है आकाशवाणी का प्राइमरी चैनल मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण आकाशवाणी के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।
1: प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण किया गया। नगर के विभिन्न स्थानों, चौराहों और इमारतों को तिरंगी झंडियों से सजाया गया। बच्चों ने अपने विद्यालयों में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में सम्मिलित होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूरा प्रयागराज देशभक्ति के गीतों से गुंजायमान रहा। नगर का मुख्य आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया, जहां मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज पीयूष मोडिया ने ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली।

0: उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी स्वतंत्रता के पीछे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां थीं। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।
1: आज 15 अगस्त के दिन मैं आप सभी को स्वतंत्रता के 80वें वर्षगांठ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जब 1947 में आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी स्वतंत्रता के पीछे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियाँ थीं। लोगों ने अपना घर, अपना परिवार, अपने स्वयं के सारे कार्य छोड़कर देश के लिए काम किया। हमारे क्रांतिकारियों ने पूरा जीवन प्रतिबद्धता के साथ देश ही के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसका परिणाम हुआ 1947 में 15 अगस्त के दिन हम सभी आज़ाद हुए। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से जो स्वतंत्रता हमने पाई, उस स्वतंत्रता के पाने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य उसी दिन से प्रारंभ हुआ। ये हमारे आपके जो परिवार के ही हमारे पुरखे थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे दादा परदादा, उनके पहले की पीढ़ियाँ थीं, उन सभी ने मिलकर इस देश को उस स्थान तक पहुँचाया जहाँ पर आज हम खड़े हैं। देश में अनेकों कार्य हुए, बांध बने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बने, IIT बने, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बने, कॉलेज बने, वैज्ञानिक पैदा हुए, वैज्ञानिकों ने इस देश को और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। परिणाम हुआ कि भारत अंतरिक्ष में भी पहुंच गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना काम किया, हमारे से पहले वाली पीढ़ियों ने अपना काम किया, हमसे जो अपेक्षा है वो कार्य हमें करना है। जब इतने लोगों ने इतना सहयोग देश को आगे बढ़ाने में दिया तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना है कि हमारा योगदान इस परिस्थिति में क्या है और क्या होना चाहिए।
0: उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हुए कहा कि हमें अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करना होगा।
1: ये हमारा, मेरा, आपका, यहाँ मौजूद प्रत्येक पुलिसकर्मी का सौभाग्य है कि हम ऐसे कार्य को करने का मौका मिला है जिसमें हम देश के प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी रूप में उसके जीवन को छू सकते हैं। हमारे हिस्से का जो काम है उसको तमाम लोग अनेकों तरीकों से करते हैं। हर कार्य को करने में असीमित संभावनाएं हैं। हमारे थानों में जो पीड़ित व्यक्ति आता है वो अपेक्षा करता है कि उसकी पीड़ा को सुना जाए, उसकी समस्या का समाधान किया जाए। हर वो कार्य जो हम कर सकते हैं पुलिस में रहते हुए समस्या के समाधान के लिए, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, उस कार्य को हम जरूर जरूर करें, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना काम किया, हमारा काम यहीं से शुरू हो सकता है। हम यदि हवाई जहाज बना नहीं सकते, रॉकेट उड़ा नहीं सकते, हमारा काम जो हमें सौंपा गया है, जो हमने अपनी मर्जी से पसंद किया है और जिस कार्य को हम कर रहे हैं, वो लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाना है, उनकी सेवा करना है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। हमारे पास आकर कोई शरीफ आदमी डरे ना, कोई बच्चा अपनी समस्या लेकर आए, कोई महिला जो किसी प्रकार की असहज परिस्थिति कहीं ना कहीं महसूस की हो, आकर हमें अपनी समस्या बताए, तो हमारा कार्य है कि हम उस समस्या को दूर करें, उसका निदान करें। हमारा सहयोग राष्ट्र निर्माण की तरफ जो है वो यही होगा, यही हो सकता है। मुझे दुष्यंत कुमार की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ उस समय स्कूल में पढ़ते समय थी और जहन में अभी भी अंकित हैं और मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि हमारे सारे कार्य के सार को अभिव्यक्त करती हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में ना सही तो आपके सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप सभी अपने अपने कर्तव्य का पूर्ण प्रतिबद्धता से पालन करेंगे, अपना भरपूर सहयोग राष्ट्र निर्माण में देंगे, अपने कार्य को अपेक्षा अनुरूप तरीके से अवश्य संपन्न कराएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।
0: इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह

0: समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण के पश्चात विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश हैं।
1: इस देश का तिरंगा आज अपनी आन बान और शान से नीले आसमान पर लहरा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये सदैव लहराता रहे। इसी तरह हमारी ऐसी मनोकामना है। इस झंडे का लहराना महज लहराना नहीं है, अपितु इस बात का संकेत है कि हम एक स्वाभिमानी देश हैं और स्वतंत्र देश हैं। और हमारी स्वतंत्रता वो है कि हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हम अपने आप में जीते हैं, अपने मूल्यों में, अपने कल्चर में। हमारा बहुत पुराना महाउपनिषद है जो कहता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यानी कि सारा विश्व ही हमारा बंधु है। विशाल हृदय के लोग समस्त विश्व को अपना परिवार समझते हैं। पूरा विश्व एक है और हम विश्व के हैं। हम वसुधैव कुटुम्बकम के अनुयायी हैं, परंतु ये भी सच है कि शांति भी युद्ध के भय के बिना नहीं मिलती।
0: अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपनी क्षमताओं को गति प्रदान करें।
1: शिक्षा का पहला क्राइटेरिया अच्छा आचरण होना चाहिए। ये आपके विश्वविद्यालय में पढ़ के अपने व्यक्तित्व को निखारने के दिन हैं। अपनी क्षमताओं को गति प्रदान कीजिए। हमको अपने मूल्यों और संस्कारों पर विशेष ध्यान देना है कि ये ना जाए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इसी ने देश को जकड़ रखा है। किसी विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी पूंजी उसके छात्र और छात्राएं हैं और उसके शिक्षक। आज आप हमारे सामने छात्र बनकर खड़े हैं, पर कल देश की बागडोर आपके हाथ में होगी। आपको अपने आप को ऐसा ढालना है कि आप जीवन में उन्नति करें और अपने माता पिता का जीवन सार्थक करें।
0: उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सूबेदारगंज स्थित उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि आज का दिन उन महान क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है जिनके बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली।
2: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त रेल कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई। आज का ये महत्वपूर्ण दिन वह शुभ अवसर भी है जब हम अपने पिछले कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के उच्च सोपान तक पहुंचने के अपने संकल्प को दोहराते हैं।
0: अपने उद्बोधन में उन्होंने रेलवे की उपलब्धियों की चर्चा की।
2: संरक्षा सदा सर्वोपरि का मोटो हमारे दैनिक कार्यों का मूल मंत्र है और इसके प्रति हमेशा से संजीदा रहे हैं। हम जोन के प्रमुख रेल मार्गों पर कवच प्रणाली लागू करने वाले रेलों में उत्तर मध्य रेलवे की अग्रणी रेलवे का दर्जा हासिल है। उत्तर मध्य रेलवे अपने सामाजिक दायित्वों के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरित ऊर्जा पहल की दिशा में एक कदम आगे और बढ़ाते हुए उत्तर मध्य रेलवे में 23.9 मेगावाट पीक क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं। इन संयंत्रों द्वारा अप्रैल से जून 26 के दौरान 6.95 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन भी किया गया है, जिसके फलस्वरूप 4.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राजस्व की बचत हुई है। सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इस सुधार प्रक्रिया में सतर्क प्रबंधन के साथ साथ तकनीकी साधनों का प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने मात्र 6 महीनों में डिजिटाइजेशन अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अंतर्गत करीब 2 करोड़ अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया गया है और लगभग 15,730 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया है। हमारे सुरक्षा कर्मी यात्रियों की सुरक्षा तथा रेल संपत्ति की संरक्षा के प्रति सदैव जगत रहे हैं। हमारे रेल सुरक्षा बल के जवानों द्वारा इस वर्ष ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत 650 से अधिक बच्चों को सुरक्षित बचाया गया एवं उनके परिजनों से मिलाया गया अथवा सुरक्षित रूप से NGO को सौंप दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम यह संकल्प लें कि एक टीम के रूप

0: में हम विपरीत परिस्थितियों एवं चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करेंगे और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।
1: इफ्को फूलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। परिसर में आयोजित रंगारंग समारोह में इफ्को के चेयरमैन दिलीप सिंघानी ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा,
2: 80वां भारत का स्वतंत्रता दिन के रूप में आज पूरे देश में मना रहा है। आज इफ्को फूलपुर यूनिट पे इसी उल्लास उमंग के साथ पूरा यूनिट और यूनिट के माध्यम से पूरे देश में जो उत्साह उल्लास से उनसे जुड़े हुए हैं, और इस दिन को मेरी ओर से और पूरे इफ्को यूनिट के सभी कर्मचारी बंधु बहनें और अधिकारी की ओर से पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज 15 अगस्त में हमारी स्वतंत्रता के दिन हमारी उपलब्धियाँ पूरे देश को अनुभूति है, लेकिन पूरे विश्व में आज का देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के जो विश्वास बैठा है वो हमारे लिए गौरवप्रद है। आज सिर्फ स्वतंत्रता दिन पे इफ्को फूलपुर यूनिट और देश के अन्य भाग में आए हुए इफ्को के यूनिट के द्वारा देश की समृद्धि, सलामती, स्वास्थ्यता, सुरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। आज सिर्फ भारत का तिरंगा लहराना से हम बैठेंगे नहीं, हम संकल्पबद्ध बनेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि का शब्द जब उपयोग होता है भारत में तो विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी सलामती के लिए इफ्को का नाम अग्रसर लेना आज की स्थिति की जो निर्माण परिस्थिति है वो बताता है।
1: अपने उद्बोधन में उन्होंने इफ्को की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा,
2: आज पूरे देश में जिस तरह से इफ्को काम कर रहा है, इफ्को ने मुनाफा उनका लक्ष्य नहीं रखा है, इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और माननीय प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि का जब नारा दिया वो नारा न रहे एक मंत्र बन जाए, इनके लिए उन्होंने सहकारिता का प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी। कोऑपरेटिव एक राज्य का विषय है, लेकिन पूरे देश में समानता के रूप से कोऑपरेटिव के माध्यम से सबको लाभान्वित कैसे किया जाए। भारत ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ, कृषि से जुड़े हुए, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय उद्योग से रोजगारी प्राप्त करने वाले देश में एक अग्रसर देश, तो ग्राम की समृद्धि नहीं होगी, गांव की सलामती नहीं होगी, गांव का संरक्षण नहीं होगा, तब देश को सलामत कैसे हम बोलेंगे। सिर्फ सलामत देश की सीमाओं से अपने सुरक्षा दल, अपने सैनिक करते हैं, लेकिन आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य की समृद्धि, सलामती वो कैसे आए। और इसीलिए इफ्को ने एक तय किया है, जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी, किसान बंधुओं आप यूरिया का उपयोग कम करिए, इनकी वजह से इफ्को के बोर्ड ने उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया। पूरे देश में हमारी संस्था सबसे अग्रसर काम कर रही है किसानी क्षेत्र में, काफी मेहनत के बाद इफ्को नैनो का संशोधन इफ्को ने किया, हमने प्रधानमंत्री को निमंत्रित दिया लोकार्पण के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट देखा और लोकार्पण के लिए उन्होंने सहमति दी, और गुजरात में आके उन्होंने पूरे देश को नैनो यूरिया का लोकार्पण किया, वो हमारे लिए एक गौरव का प्रसंग था।
1: इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला देर शाम

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की ओर से कोबरा प्रेक्षागृह न्यू कैंट में बैंड प्रस्तुति की गई, जिसमें डोगरा रेजिमेंट के आर्मी बैंड और फर्स्ट सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के पाइप बैंड ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।

फिर वहाँ जाना पड़ेगा ना, मतलब देखिए इंडेक्स वाला रास्ता।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। तकनीकी सहयोग अनिल कुमार, दाऊद सिद्दीकी और दिनेश कुमार यादव। सामग्री संकलन अभिनव प्रज्ञ पांडे, अभयकांत तिवारी और दीपक कुमार राय। वाचन व संपादन विनय श्रीवास्तव और प्रस्तुति प्रदीप कुमार मिश्र की थी।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक देशभक्तिपूर्ण रचना। रचनाकार हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।

आपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने सुनने वालों को याद दिला दी, आज रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय गान। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 10:45 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसके तहत आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन। रात 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत लें। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग कर

0: करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं

0: और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए

0: खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार

0: सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi

0: led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: Koi bhi rash tab mahaan banta hai jab apne sapnon apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne hamari soch ko vistar dete hain, hamare sankalp dhrad hone chahiye. Jab sankalp dhrad hota hai to kathinaiyon se aapdaon ke beech se raaste nikalne ka samarthya apne aap ubhar karke aata hai.
0: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
1: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
0: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया. और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं. हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया.
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
0: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On Naxalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from Naxalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
0: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो. और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट

0: Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. Heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Madhya Pradesh over the next 2 to 3 days. Similar weather conditions are likely to prevail over the northeastern region until the 21st of this month. In hockey, India defeated Wales 3-1 today in a Group D match of the FIH Hockey World Cup in Amstelveen, the Netherlands. For India, captain Harmanpreet Singh scored 2 goals, while Sanjay Rana scored 1. Sam Welch scored the lone goal for Wales. In men's cricket, India were 288 for 2 in their first innings at stumps on day 1 of the first test against hosts Sri Lanka at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and opted to bat first. Devdutt Padikkal remained unbeaten on 131, while Rishabh Pant was on 27 when stumps were drawn this evening. KL Rahul retired hurt at 77. Today's game was cut short to 73 overs due to 2 rain breaks. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia today interacted with My Bharat NSS volunteers during the Independence Day celebrations in New Delhi. Addressing the volunteers, Dr. Mandavia appreciated their contribution towards social service and encouraged them to actively participate in initiatives aimed at building a Vikasit Bharat. He emphasized that the energy, commitment and innovative ideas of young people are essential for achieving the vision of a developed and self-reliant India. Amrit Udyan will be open to the general public from tomorrow till the 15th of next month. Our correspondent reports that the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands, and in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम-ए-आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम-ए-आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौम-ए-आज़ादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीख

0: इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
1: पेश है लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे नामा निगार की यह रिपोर्ट।
2: आज यौम आज़ादी की तकरीबात के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मरतबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के मकाम पर भारतीय फजाइया के MI-17 तर्ज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए गए। फौज के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने कौमी गीत गाया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस साल लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया था। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की मिशनों ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरासत और इलाकाई नीज आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम कलीदी साझेदारी को उजागर किया, जबकि सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम ने हुनरमंदी के फरोग, डिजिटल शक्ल दिए जाने, पायदार निज़ाम और जदीद तर्ज की मैनुफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ते हुए ताउन की अहमियत उजागर की। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने भी 80वें यौम आज़ादी पर भारत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल के सदर आइजक हर्ट्ज़ोग ने अपना पैगाम हिंदी में भी शेयर करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने भी मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि लातविया की वजारत खारजा ने भारत के लगातार पेशरफ्त, इत्तेहाद और खुशहाली के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर इसराइल के सफीर, अर्जेंटीना के सफीर, श्रीलंका के हाई कमिश्नर, नीज नेपाल और फ्रांस के सिफारतखाने, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर और कनाडा के हाई कमीशन की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हुए हैं। इनमें भारत के विरसे और गुनागुनियत, इकतसादी सलाहियत और फरोग पाते हुए बामी ताल्लुकात को उजागर किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी। इनमें फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो शामिल हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह की मुबारकबाद के पैगाम के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के अवाम की बहबूद और बाहमी खुशहाली के लिए भारत और नेपाल के दरमियान कसीर रुखी और सदियों पुराने तहजीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर मिलकर काम करने के पाबंद हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोगे के पैगाम के लिए उनके शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ खसूसी और पायदार साझेदारी को बहुत कदर की निगाह से देखता है, जो लगातार मजबूत होती जा रही है। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी के पैगाम के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और स्लोवाकिया के दरमियान जामे साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और 2047 तक विकसित भारत की तामीर के अज़्म को उजागर किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मजमून में नायब सदर जमहूरिया के अंडमान और निकोबार जज़ायर के हालिया दौरे का तस्करा किया गया है। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हुआ जब भारत अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है और पूरे मुल्क में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली एक पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी पर 5,000 रुपए की नकद ग्रांट दे रहे हैं और इसके लिए लोगों के बैंक खाते की तफसीलात मांगी जा रही हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के हकायक का पता लगाने वाली यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। PIB ने कहा है कि वजीर आजम ने यौम आज़ादी पर इस तरह की किसी भी नकद ग्रांट की कोई तायद नहीं की है। उसने लोगों को खबरदार किया है कि इस तरह के पैगामात के जरिए अक्सर जाती या माली जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। PIB ने लोगों से जोर देकर कहा

0: है कि वो चौकस रहें और इस तरह के पैगाम पर भरोसा करने या उन्हें दूसरों तक पहुंचाने से पहले सरकारी वसीलों से इस तरह के दावों की तस्दीक कर लें। इंडोनेशिया के फ्लोरेस जजीरे के करीब आज 7.7 शिद्दत का जलजला आया है। इस वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। इस ज़बरदस्त जलजले के बाद कई झटके महसूस किए गए, जबकि राहत टीमों ने बुरी तरह मुतासर होने वाले इलाकों में पहुंचने की कोशिश जारी रखी। मुल्क के कई हिस्सों में कम से कम 1-1 मीटर सुनामी की लहरों की भी इत्तला है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्टेशन रोड पर वाकई आज एक इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद कई लोगों का दम घुटने लगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासिर लोगों को एक अस्पताल में ले जाया गया। बताया जाता है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। हुक्काम का कहना है कि आग बुझाने वाले महकमे ने आग पर काबू पा लिया है। ये वाकया बांद्रा के MK चेंबूर इलाके में पेश आया। भारत ने नीदरलैंड्स के आम्स्टेलवेन में FIH हॉकी आलमी कप के ग्रुप डी के एक मैच में वेल्स को 1-3 गोल से हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की तरफ से सैम वेल्श ने वाहिद गोल किया। गले में मेज़बान श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौमे आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वे एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौमे आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।
2: सभी सुनने वालों को संतोष श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है आजादी के 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम जय गान। श्रोताओं, आज है 15 अगस्त 2026। आजादी के 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम प्रवेश कर गए हैं 80वें वर्ष में। 1947 की आधी रात से लेकर आज के डिजिटल भारत का सफर हम तय कर चुके हैं। प्रोग्राम की शुरुआत उस गाने से जो हमें याद दिलाता है ये आजादी आसानी से नहीं मिली थी। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म लीडर का ये गाना आजादी के बाद का संकल्प गान बन गया। आइए याद करें उस दौर को इस गाने के जरिए।

श्रोताओं, आजादी के बाद से देश ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेकानेक उपलब्धियां हासिल की। हमें गर्व है अन्न उपजाने वाले अपने अन्नदाता पर, गर्व है उन वैज्ञानिकों पर जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया, और गर्व है उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने देश के लिए खेला और तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया।

हमें गर्व है सरहद पर मुस्तैदी से खड़े उन जवानों पर जिन्हें मोहब्बत है तो सिर्फ अपने वतन की मिट्टी से।

2019 में आई फिल्म केसरी, जो कि सिख रेजिमेंट के 21 जवानों की कहानी है। ये गाना हर फौजी के दिल की आवाज है।

श्रोताओं, आज का भारत युवा भारत है। यूपीआई, स्टार्टअप, चंद्रयान और एआई जैसी तकनीकों ने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनें।

भारत सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि अर्थनीति और कूटनीति में भी सशक्त है। 2018 में आई फिल्म राजी, एक लड़की ने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।

और श्रोताओं, भारत अब सिर्फ भारत ही नहीं रहा, विश्व का नेतृत्व करता बन रहा है हमारा प्यारा देश भारत। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का ऑस्कर विजेता गाना जो कह रहा है भारत जीत रहा है, भारत का चहुओर जयगान हो रहा है।

आकाशवाणी प्रयागराज की ओर से अपने सभी सुधी श्रोताओं को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, गर्व से कहिए, मैं भारतीय हूं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम जय गान। इसी के साथ अब अपने रेडियो साथी संतोष श्रीवास्तव को प्रोग्राम खत्म करने की आज्ञा दीजिए। वंदे मातरम।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म संगीत का हमारा विशेष कार्यक्रम जय गान। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, कल रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम।

थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रसारण के कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: medium wave charger 101.6 meter यानी 747 kHz पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी लखनऊ है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: पंद्रह अगस्त 2026 सुबह की पहली किरण ने जब धरती की देहरी पर दस्तक दी तो आकाश की ओर उठता हुआ तिरंगा जैसे मुस्कुरा पड़ा। तिरंगा जो स्वयं में समेटे है सदियों का इतिहास, उसकी केसरिया पट्टी पर बलिदानों की अग्नि जल रही है, सफेद पट्टी में शांति का सपना सांस लेता है और हरी पट्टी में भविष्य की उम्मीदें अंकुरित होती हैं। मध्य में घूमता अशोक चक्र समय का वो पहिया है जो रुकना नहीं जानता। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर भारतीय आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को प्रणाम कर रहा है, उन अमर बलिदानियों को नमन कर रहा है जिनकी कुर्बानी से देश आजाद हुआ। आजादी का यह जश्न पूरी भारतवर्ष में बड़े ही श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। विवरण के साथ हैं हमारी सहयोगी डॉक्टर शिवा राकेश।
2: लखनऊ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों पर 80वें स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया गया, इस बारे में विवरण उपलब्ध कराया हमारे सहयोगियों राघवेंद्र सिंह और ज्योति चंद्रा ने।
3: हर वर्ष की तरह इस बार भी RDSO मानक नगर में बड़ी भव्यता, गरिमा और राष्ट्रीय भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को मनाया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालयों द्वारा देश

0: प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गईं। इसी क्रम में मानक नगर विद्यालय की छात्राओं ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। इसी तरह विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इन बच्चों ने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। केंद्र पर इस पुनीत दिवस को कैसे मनाया गया, इसका ब्यौरा देने वाले हमारे सहयोगियों डॉक्टर सुशील कुमार राय और मनीष कुमार की रिपोर्ट को स्वर दे रही हैं वैशाली जौहरी।
2: आकाशवाणी लखनऊ के परिसर में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर केंद्राध्यक्ष श्री आर बी सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिरजू महाराज कथक संस्थान के कलाकारों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की गई। तत्पश्चात राष्ट्रगान का गायन हुआ। इस अवसर पर केंद्राध्यक्ष श्री आर बी सिंह द्वारा कहा गया,
3: इस तिरंगे राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए मेरी ओर से आप सभी को 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये राष्ट्रीय पर्व ही तो हैं जो हमारे जीवन में उल्लास लेकर आते हैं, जोश लेकर आते हैं और हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। आज हम उन सभी वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। हमारे आजादी के मतवालों ने जो सपने देखे थे उनके सपनों को हम साकार करें।
2: तत्पश्चात कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती सुमोना एस पांडे द्वारा स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई।
4: राष्ट्र ध्वज को नमन के साथ मैं सभी हमारे अधिकारियों, हमारे सभी साथियों का स्वागत करती हूं इस पावन अवसर पर और आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश का आज है हम मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो देश के शहीदों, वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया वो सिर्फ एक दिन का याद करने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज के दिन को इसी रूप में मनाते हैं, हम उनको नमन करते हैं। हमें सिर्फ उनकी बलिदानी को याद नहीं करना है, हमें इस आज़ादी को बनाए रखने में भी अपना योगदान देना है।
2: इसी क्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत गीत स्नेहिल श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: कार्यक्रम में अपने देशभक्ति लोक गीतों द्वारा अवधेश बालेश्वर और उनके साथियों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई।
1: धरती गावे सुबरण चिरई कहावे सुंदर देशवा हमार।
2: लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को पूरी प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ मनाया गया। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगियों प्रवीण कुमार और कुंवर बहादुर सिंह द्वारा दिया गया ये विवरण।
3: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा,
4: मेरे प्रिय साथियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी वीर शहीदों के परिजनों और भारत माता की सेवा में समर्पित प्रत्येक नागरिक को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब संपूर्ण राष्ट्र तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक है, तब हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम उन असंख्य ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने हमें केवल स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई।
2: जन भवन में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी ममता उपाध्याय।
5: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन भवन का ऐतिहासिक प्रांगण भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। प्रातः ठीक 9 बजे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का समारोह स्थल पर आगमन हुआ। स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के समूह गान से हुआ और पूरा प्रांगण वंदे मातरम गान से गुंजायमान हो उठा। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया और देश के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहरा उठा। इस अवसर पर पुलिस बैंड

द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विकसित भारत 2047 हेतु भारत को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। समारोह के समापन चरण में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने सुसज्जित परेड का निरीक्षण कर अभिवादन स्वीकार किया और समारोह का समापन हुआ पुलिस बैंड द्वारा बजाई गई धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ।

0: विधानसभा में मनाए गए 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए आयोजन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी देवाशीष और आसिफ इकबाल।
1: 15 अगस्त के इस पावन और प्रमुख दिवस पर स्वतंत्रता दिवस का त्योहार विधानसभा में भी मनाया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एवं आम जनता ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम के शुभारंभ पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम के गायन के साथ इसके 150 वर्ष पूर्ण होने को और भी गरिमामयी बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
2: पूरे प्रदेश वासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत माता के उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों के स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का यह दिन है, जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
3: भारत तेरे चरणों में इतिहास बड़ा मुस्काता है, तेरे गौरव का हर पन्ना वीरों की गाथा गाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी वीर बलिदानियों को नमन किया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगे के सम्मान में समारोह आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के विवरण के साथ ये है आकाशवाणी आगरा का डिस्पैच।
4: 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मोहब्बत के शहर आगरा नगर में भी सुबह से ही देशभक्ति के तराने फिजाओं में गूंज रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त कार्यालय आगरा में ध्वजारोहण किया। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने झंडारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
5: स्वतंत्रता दिवस पर मेरा इतना ही अनुरोध और इतनी ही प्रार्थना कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर उन भावों को जो कि हमें प्राप्त हुए, विरासत में प्राप्त हुए हैं, उनको जरूर जिए और अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हमेशा देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने कार्य के प्रति ये भाव रखें कि हमको अपनी संकीर्णता से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है।
4: पुलिस लाइन में झंडारोहण किया आगरा नगर के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने। तत्पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा,
6: हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज भारत गणराज्य अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पूरे देश में धूमधाम से मना रहा है। विगत एक सप्ताह से देश की गली गली, प्रत्येक नुक्कड़, प्रत्येक चौराहे पर तिरंगा यात्रा की धूम मची हुई है। यह अवसर हम सभी को उत्साहित करने वाला है ही साथ ही साथ गौरवान्वित करने वाला है।
4: जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण किया आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने। इसके पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा,
7: आज हमारा देश एक बहुत ही सशक्त देश के रूप में

0: विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस पूरी सफर में, इस जर्नी में बहुत सारे हमारे देश के वीर सपूतों ने, चाहे वो हमारे सेना के जवान हों, चाहे वो हमारे सुरक्षा बलों के जवान हों, और अन्य हमारे कई ऐसे वीरों ने इस देश के प्रिंसिपल्स को, इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए, इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर किया है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर सपूतों को भी बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
1: मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आगरा छावनी में ध्वजारोहण किया मंडलीय रेल प्रबंधक गगन गोयल ने। इसके पश्चात उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
2: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों एवं महापुरुषों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली एवं एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
3: आकाशवाणी आगरा के डिस्पैच के बाद अब सुनिए आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच।
4: आजादी के 80 साल, संघर्षों का एक लंबा सफर, अनगिनत कुर्बानियां और उन सपनों का भारत जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आंखों में देखा था, उन्हीं स्मृतियों और नए संकल्पों के साथ देश का ये राष्ट्रीय पर्व पूरे देश के भांति जनपद सोनभद्र में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर घर तिरंगा का संदेश यहाँ जन जन के गौरव और अखंडता के पहचान बनकर उभरा, विशेषकर युवाओं के मध्य। वंदे मातरम के गौरव गान और देशभक्ति के नारों के मध्य जनपद का मुख्य समारोह विशिष्ट तेरा स्टेडियम सोनभद्र में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश श्री संजीव कुमार गौड़ ने ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित गणमान्य को शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
5: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर युवा को रोजगार का अवसर मिल सके, किसान को सम्मान के साथ जीने के, हर नागरिक को सम्मान अधिकार प्राप्त हो सके। हमारा देश तभी मजबूत बनेगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निर्वहन करने का काम करेंगे।
4: स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र श्री चर्चित गौड़ ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
6: मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को और यहाँ पे जितने भी हमारे नागरिक हैं, सोनभद्र के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब जनपद सोनभद्र के वासी एकजुट होकर इस स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रीय हित में, लोक हित में, प्रदेश हित में और जनपद के हित में सब लोग हम लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे।
4: हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोगों ने राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस तरह ऊर्जांचल नगरी सोनभद्र में आजादी का जश्न भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ संपन्न हुआ।
3: ये था आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी मथुरा का डिस्पैच।
7: संपूर्ण देश के साथ जनपद मथुरा में भी 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रातः काल से ही विद्यालय के बच्चों के साथ उनके शिक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हाथों में तिरंगा लिए उत्साहपूर्वक भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ प्रभात फेरियां निकाली। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराकर उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई।
8: हर कार्य में तन मन से सहयोग करूंगा।
7: अपने उद्बोधन में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा,
8: जब भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को सूत्र वाक्य दिया था कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मातुः कदाचन, उस मिट्टी पर सेवा करना जहाँ के मिट्टी में जन्म लिए हुए ऐसे हम लोगों के आराध्य ने जब ये संदेश

0: किया था, तो हम कोई कारण नहीं है कि हम अपने जो पूर्वज हैं, हम लोगों के जो मार्गदर्शक रहे हैं, हम लोग जो संवाहक रहे हैं, उनकी बात हम भूले। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी पदेन जिम्मेदारी है कि अपने साथियों से मोटिवेट करते हुए और उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकालूं। इस दिशा में कई बार सुनाना भी पड़ता है और कई बार सुनना भी पड़ता है। मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी की बिना बताए अगर कोई पीड़ा है तो वो समझ ले।
1: जनपद मथुरा के प्रतिष्ठित संस्थान मथुरा रिफाइनरी में भी 80वां स्वाधीनता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सहस्त्राब्दी स्टेडियम में आयोजित समारोह में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक श्री मुकुल अग्रवाल ने कहा,
2: आज का दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह दिन है कृतज्ञता का, स्मरण का, आत्ममंथन का। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, यह हमें सहज रूप से नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों देशवासियों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान था। आजादी का मूल्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाया, जिन्हें यह पता भी नहीं था कि वे स्वतंत्र भारत के लिए, जिसके लिए वो अपना जीवन दे रहे हैं, वे उसे देख पाएंगे भी या नहीं। उन्होंने अपने आज का बलिदान हमारे कल के लिए किया, इसलिए आज हमारा सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हम उनकी उस कुर्बानी को न केवल याद करें बल्कि उसका सम्मान भी करें।
3: ये था आकाशवाणी मथुरा का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी अयोध्या का डिस्पैच।
4: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज रामनगरी अयोध्या देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, वंदे मातरम और देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण के पश्चात मंडलायुक्त श्री राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा,
5: मेरे हिसाब से हमारे पूरे इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है, जिसमें कि सारी बेड़ियों को तोड़ के हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत लोगों ने उसमें बलिदान दिया था और एक कल्पना की थी कि हम अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और एक विकसित देश की तरह डेवलप करेंगे। और हम देखेंगे कि सभी लोगों ने किसी ना किसी क्षमता में, देश के नागरिकों ने कहीं ना कहीं योगदान दिया और हम आज इस स्थान पे खड़े हैं कि आर्थिक स्थिति में हमारा देश 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया है।
4: रिजर्व पुलिस लाइंस अयोध्या में तिरंगे को सलामी देने के पश्चात एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस बल के जवानों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई और बहादुर जवानों को सम्मानित किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
6: इस स्मृति का स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का भारत सामाजिक क्षेत्र में नए प्रयासों से समग्र आर्थिक विकास के बल पर वर्ष 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझता हूं कि अमृतकाल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे।
4: स्थानीय जीआईसी प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती रजनी तिवारी ने युवाओं को नशे से बचने की शपथ दिलाई और अपने संबोधन में कहा,
7: यहाँ पे न जाने कितनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, यहाँ पे आज हमारे पूरे प्रदेश, हमारे देश में मजबूती के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए, हर चीज पे ध्यान देते हुए, तकनीकी के कारण हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हम सब लोग निश्चित तौर पे अगर संकल्प ले लें कि देश को विकसित बनाना है तो हम अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं।
3: ये था आकाशवाणी अयोध्या का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच।
8: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से बरेली का आसमान गूंज उठा। शहर के मुख्य चौकी चौराहे पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण किया, महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और साथ ही नगरवासियों का आह्वान किया।
9: सर्वप्रथम आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतवर्ष जिन संस्कारों के लिए जाना गया, जिन संस्कृति के लिए जाना गया, आज अभेद भारत जिसको मुगल भी नहीं झुका पाए, जिसको अंग्रेज भी नहीं झुका पाए, हमारे संस्कारों और संस्कृति को वो चाहकर भी

0: खत्म नहीं कर पाए। आज उस भरे हुए संस्कारों से ओतप्रोत ये भारतवर्ष है। दोस्तों आपको याद रखना है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारतवर्ष के युवाओं पर टिकी है कि भारतवर्ष का युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लगातार पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं। हम लगातार आर्थिक अर्थव्यवस्था में चौथे और पांचवें नंबर पर टिके रहते हैं। अब कोशिश हमारी हो रही है कि हम तीसरे नंबर पर आएं।
1: आजादी का ये जश्न कलेक्ट्रेट परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया। ध्वज फहराने के बाद जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव और उल्लास का दिन है। हम उन तमाम संत संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सभी लोग मिलकर उनकी यादों को सलाम करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज उन्हीं लोगों की वजह से हम सभी लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। हमें आज के दिन इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
3: ये था आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच।
4: बादलों की ओट में मुस्कुराता सूरज, सुबह की पहली किरण के साथ सड़कों पर गूंजते बच्चों के जोशीले नारे,
5: भारत माता की जय।
4: मानो प्रकृति भी आज तिरंगे के रंग में रंगकर स्वतंत्रता के इस पावन पर्व का स्वागत कर रही हो। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया रामपुर के जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी ने।
6: सर्वप्रथम आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और बधाई। 79 साल हमारी आजादी को हो गए हैं और उसके बाद आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा प्रदेश सरकार के और सरकार के निर्देश हैं, जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आप सभी से अपेक्षित है कि आप न सिर्फ आप स्वयं बल्कि अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, उन सभी को प्रेरित करें कि आज अपने घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे का महत्व यह है कि हम इसके माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं।
4: आज की सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, ये उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाने वाली सुबह थी जिसकी बदौलत हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। गांधी समाधि रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्प्रेरक उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख,
7: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय लिए गौरव की बात है। राष्ट्रधर्म सभी धर्मों में सर्वप्रिय है क्योंकि इसमें जनकल्याण की भावना नियत है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की भांति राष्ट्रहित को प्रमुखता दें एवं राष्ट्र की गरिमा, सम्मान, गौरव और संयोग रखने के हेतु सदा तत्पर रहें। राज्य सरकार प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए साफ नियत, सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है।
4: आज का दिन गर्व का दिन है, संकल्प का दिन है और मातृभूमि के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। भारत के विकास की नव ऊर्जा का संकल्प अपने मन में समेटे आइए मनाएं स्वतंत्रता का ये महापर्व।
3: ये था आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच।
8: स्वतंत्रता की अलख जगाने के साथ साथ आजाद भारत के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों की जन्म और कर्मस्थली रही वाराणसी ने स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ देशभक्ति, श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाई। भगवान भोलेनाथ को प्रिय पवित्र श्रावण मास में आजादी के पावन पर्व के अवसर पर आज हर ओर संस्कृति के चटक और भाव भरे रंगों का अप्रतिम समावेश देखते ही बनता था। मुख्य समारोह ऐतिहासिक वाराणसी कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जहां वाराणसी के जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा,
9: देखिए आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सबसे पहले सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, बनारस के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी युवा पीढ़ी के जो हमारे युवा साथी हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि इस आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोगों ने बहुत बलिदानियां दी हैं। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों को अपना अपना योगदान देना है।
8: वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने विशेष उपलब्धियों के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और देश की एकता और संविधान रक्षा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते

0: हुए पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने कहा,
1: इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। आज का दिन हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी बात की चिंता करे अपने जीवन को हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए निछावर कर दिया। जिस तरह का सपना उन्होंने एक स्वतंत्र भारत का देखा था, हमको उन सपनों को साकार करना है।
0: सर्वविद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशाल एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित भव्य स्वाधीनता दिवस समारोह में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा,
2: स्वाधीनता संग्राम केवल एक संग्राम नहीं था। स्वाधीनता संग्राम ने हमको बहुत सारी अक्षुण्ण चीजें प्रदान की हैं। सबसे पहली चीज जो हमको मिली है, एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान। आज के दिन हमको ये याद रखना चाहिए, कई बार हम अपनी भारतीयता को भूल जाते हैं और अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस भारतीयता को पीछे छोड़ देते हैं। आज का दिन है जब हम इसको पुनः स्मरण करते हैं कि नहीं, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं।
0: राष्ट्रीय उत्सव के उल्लास की अलौकिक छवि बाबा विश्वनाथ धाम में भी दिखी। इस अवसर पर बाबा का विशेष तिरंगा श्रृंगार किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूल और पत्तियों से की गई भगवान श्री विश्वनाथ और पवित्र धाम की साज सज्जा लोग अपलक निहारते रहे। शैक्षणिक संस्थानों में इस मौके पर खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच।
4: जनपद प्रयागराज में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर का मुख्य आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज पीयूष मोडिया ने परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
5: जब 1947 में आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी स्वतंत्रता के पीछे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां थी। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से जो स्वतंत्रता हमने पाई, उस स्वतंत्रता के पाने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य उसी दिन से प्रारंभ हुआ।
4: इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
6: इस देश का तिरंगा आज अपनी आन बान और शान से नीले आसमान पर लहरा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये सदैव लहराता रहे। इसी तरह हमारी ऐसी मनोकामना है। इस झंडे का लहराना महज लहराना नहीं है, अपितु इस बात का संकेत है कि हम एक स्वाभिमानी देश हैं और स्वतंत्र देश हैं, और हमारी स्वतंत्रता वो है कि हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया।
4: उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सुबेदारगंज स्थित मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा,
7: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त रेल कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
4: इफको फूलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। परिसर में आयोजित समारोह में इफको के चेयरमैन दिलीप सिंघानी ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
8: इस दिन को मेरी ओर से और पूरे इफको यूनिट के सभी कर्मचारी, बंधु, बहने और अधिकारी की ओर से पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज सिर्फ स्वतंत्र दिन पे इफको फूलपुर यूनिट और देश के अन्य भाग में आए हुए इफको के यूनिट के द्वारा देश की समृद्धि, सलामती, स्वास्थ्यता, सुरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध।
3: ये था आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच।
9: आज 15 अगस्त है, आजादी का पावन पर्व, गौरव का प्रतीक और हमारे सपनों का दिन। आज झांसी कलेक्ट्रेट सभागार से लेकर विभिन्न स्थानों पर तिरंगे की छांव में खड़ा पूरा झांसी शहर और गांव एवं झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से गूंजते आज़ादी के तराने।

0: आज पूरा देश उत्सव में डूबा है। आइए महसूस करें इस ऐतिहासिक सुबह की जीवंत ऊर्जा को। सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं झांसी महानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर जिलाधिकारी महोदय श्री गौरांग राठी जी ने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सूरज प्रसाद वालका इंटर कॉलेज झांसी की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया एवं सभागार में देशभक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। अब जिला कलेक्ट्रेट सभागार से जिलाधिकारी महोदय अपने उद्बोधन के साथ।
1: आज हम पूरे देश में धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की थीम है। इनफैक्ट इस बार इस थीम के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है वंदे मातरम के 150वां वर्ष, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और दूसरा है विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति की महत्ता।
0: श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं झांसी के उस ऐतिहासिक किले पर, जहां से 1857 में उद्घोष हुआ था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया और साथ ही शांति के प्रतीक सफेद कबूतर खुले आसमान में छोड़े गए। झांसी दुर्ग की प्राचीर से जिलाधिकारी महोदय अपने विचारों के साथ।
1: सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की इस शौर्य भूमि कर्म भूमि से, झांसी के इस ऐतिहासिक दुर्ग से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह किला केवल पत्थरों और प्राचीरों से बना स्मारक नहीं है, बल्कि भारत के साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संकल्प का प्रतीक है।
2: ये था आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी कानपुर का डिस्पैच।
3: दिवस पर्यंत आज अनेक आयोजन हुए। मुख्य समारोह प्रातः 8 बजे ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ, जहां कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। आज के महत्वपूर्ण अवसर की शुभकामनाएं देते हुए कहा,
4: विगत 79 वर्षों में देश ने अपना एक तंत्र तैयार किया है, जो डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और इसी के लिए हमारे बहुत सारे वीर सपूतों ने 1857 में भी और 1947 तक अपनी जान दी, तकलीफें झेली, जेल में रहे। इसका भारत में भारतीयों का शासन हो, जो अकाउंटेबिलिटी हो, जो जवाबदेही हो, हम अपने प्रतिनिधि चुन सकें, अपने देश को ऐसा संचालित कर सकें कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो भारत के मूल्य हैं, भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, उस सबको हम उस तरह से पोषित कर सके, संचालित कर सके, जैसा कि भारतीय चाहते हैं।
3: अगले पड़ाव में हम पहुंचे कानपुर पुलिस लाइन। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने अपने उद्बोधन में कहा,
5: आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये स्वतंत्रता दिवस हमें हमारे अनगिनत जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, अपने तप के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से ये आज़ादी हमें दी है, ये आज हमारा जिम्मेदारी बन जाता है कि इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, अक्षुण्य बना के रखें।
2: ये था आकाशवाणी कानपुर का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद का डिस्पैच।
6: श्रोताओं, अपने राष्ट्रीय पर्वों को हम सब सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला बिजनौर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम गीत के बाद माननीय जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस पावन अवसर पर जिलाधिकारी जसजीत कौर और अपर जिलाधिकारी FR श्री देवेंद्र पाल के द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस यादगार कार्यक्रम में जिलाधिकारी बिजनौर श्रीमती जसजीत कौर ने आजादी के अमर शहीदों के बलिदान को याद किया।
7: इंडिपेंडेंस डे है आज, और इतने 90 समय से 79 ईयर्स हो गए हमारी आजादी को, जिसमें हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, हमारे बच्चे, हम लोग हर बात पे कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ओपनली अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो ये बहुत आसानी से, ये जो हमें चॉइस का अधिकार मिला है, वो बहुत खुशियों से मिला है। बहुत लंबे समय तक आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चला है, बहुत लोग इसमें जुड़े, बहुत हर वर्ग के लोग जुड़े।
6: इस पावन अवसर पर बिजनौर जिले की

0: तहसील नजीबाबाद मुख्यालय में भी सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और नगर के सैकड़ों आम व खास व्यक्ति मौजूद रहे। सवेरे 8 बजे ही माननीय उप जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आप हैं उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह।
1: मैं नगर वासियों को, तहसील वासियों को और संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण देश के और संपूर्ण विश्व में भारतवंशी जहां भी फैले हैं सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे।
2: ये था आकाशवाणी नजीबाबाद का डिस्पैच। आकाशवाणी नजीबाबाद के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी गोरखपुर का डिस्पैच।
3: आज 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर गोरखपुर भी पूरी तरह देशभक्ति, उल्लास और राष्ट्रीय गौरव के रंग में रंगा नजर आया। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और श्री मीणा ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। ध्वजारोहण और शपथ के बाद जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
4: सबसे पहले तो आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये एक दिन है जिस दिन हम जितने भी हमारे जो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए या जो हम खुली हवा में सांस ले पाए उसके लिए अपनी जो आहुति दी है, अपना जो परिश्रम दिया है, उन सबको एक याद करने का दिन है।
3: अब रुख करते हैं सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम का। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री उदय बोरवड़कर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने पूर्वोत्तर रेलवे की उपलब्धियों, रेल परिचालन और यात्री सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।
5: स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इंगित करूंगा। बहराइच नेपालगंज रोड खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे पूर्ण रूप से बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गई है।
3: अब चलते हैं उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
6: आज जब हम इस प्रांगण में एकत्र होकर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं तो यह केवल एक स्थापित परंपरा का निर्वहन या औपचारिक उत्सव मात्र नहीं है। ये सूर्योदय उन अनाम, अमर, निष्काम क्रांतिवीरों के प्रति हमारी आत्मा की असीम कृतज्ञता प्रकट करने का क्षण है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने यौवन और अपनी अंतिम श्वासों की आहुति देकर हमें इस आजाद फिजा में सांस लेने का अवसर दिया।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये है आकाशवाणी अल्मोड़ा का डिस्पैच।
7: सावन के बरसते बादल और पर्वतों को ओढ़े कोहरे के बीच सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा ने 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहाँ जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह ने ध्वजारोहण किया। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप हैं जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह।
8: भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा ये 80th इंडिपेंडेंस डे है। 79 इयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को कंप्लीट हो गए हैं। ये दिन इसलिए जरूरी होता है कि हमें रियलाइज हो कि जो हम देश आज़ाद हुआ था इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला था और उसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्मोड़ा जनपद में हम स्वच्छता के लिए एक काम करेंगे। जो अधिकारी गण है वो अपने स्तर से काम करेंगे और जो सिटीजन है वो अपने स्तर से काम करेंगे, जो मीडिया है वो अपने स्तर से काम करेगी, जो हमारे लॉयर्स हैं वो अपने स्तर से काम करेंगे और हर क्षण हम ये कोशिश करेंगे हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रख सकें। यदि कोई कूड़ा फेंक रहा है तो उसको जाके प्यार से समझाए कि बंधु ये सही तरीका नहीं है, इसको या तो अभी अपनी जेब में रख लो और आगे अगर बगल में डस्टबिन है तो उसमें डाल दो। समय लगेगा लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर हम सब लोग पहल करेंगे तो एक एक करके हम लोग इस चीज को सुधार में ले आएंगे।
2: आकाशवाणी अल्मोड़ा के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच।
9: राष्ट्र ने आज अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया। देवभूमि उत्तराखंड में स्वाधीनता का ये उत्सव परंपरागत तरीके से उत्साह पूर्वक मनाया गया। लोक भवन उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया।

0: इस अवसर पर उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा,
1: अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आजादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है, उन पर हमको गर्व है।
0: स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
2: मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
0: पुलिस महिला बैंड की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।
3: ये था आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच।
4: श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रातः 7 बजे वृहद तौर पर प्रभात फेरियां स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई और इसके पश्चात प्रातः के 9 बजे विकास भवन परिसर पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। श्रोताओं, 15 अगस्त 2026 के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर पौड़ी में प्रातः 9:30 पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम प्रेक्षागृह संस्कृति भवन पौड़ी में आयोजित किए गए, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवा जीवित पत्नी तथा शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने अपने उद्बोधन में कहा,
5: स्वतंत्रता का 79 वर्ष यानी 80वां स्वतंत्रता दिवस का था। यह स्वतंत्रता हमें बड़े संघर्षों से मिली है। यह स्वतंत्रता हमारे लाखों लाख नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने अपने प्राणों को नछावर करके संघर्ष करके अपना घर बार व्यापार सब कुछ छोड़कर हम यह स्वतंत्रता में संघर्ष।
4: श्रोताओं, इस अवसर पर जनपद की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा,
6: जनरली जनता की सेवा से हमारे चाहे राजनीति में या फिर हमारे प्रशासनिक सेवा में या सरकारी विभाग के काफी अधिकारी उपस्थित है, तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो हमें बस बहुत संवेदनशीलता से उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना है।
3: ये था आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखेंगे, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे, स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और वीर शहीदों के बलिदान से परिचित कराएंगे। चलो उठो, संकल्प करें हम, भारत का सम्मान रहे जब तक नभ में सूर्य चमकता, तिरंगा ऊंचा शान रहे, अतीत हमारा दीप बने, भविष्य हमारा पथ बने, भारत फिर ऐसा भारत हो जिस पर हर युग को गर्व रहे। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। वाचन और संपादन सहयोग था सुरेंद्र राजेश्वरी का। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया।

लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कृत सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम

की सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात

0: गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा के प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान

कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।